मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026 5:57 होने को ही हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर

0: लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें पहले सुनिए देशवंदना समूह स्वर में। रचना है डॉक्टर नरेंद्र समाधिया की।

नंदिनी शरण के गाए इस भजन के बाद लीजिए अब सुनिए अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के स्वर में कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। धर्म ग्रंथों से पाठ में सुनिए बौद्ध ग्रंथ धम्मपद से पाठ।
1: भगवान बुद्ध से किसी ने 4 प्रश्न पूछे। पहला तो यह कि मनुष्य का श्रेष्ठ धन क्या है। दूसरा प्रश्न यह था किसके अभ्यास से सुख मिलता है। तीसरा प्रश्न था सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है। और चौथा प्रश्न था किस प्रकार का जीवन श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार वर्णन किया है। सद्दीधवित्तम पुरुष सेठम धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति सच्चम हवे साधुतरम रसानम पैया जीविम जीवित माहुसेठम। इस संसार में मनुष्य का श्रेष्ठ धन है उसकी श्रद्धा। धर्म के अभ्यास से सुख की प्राप्ति होती है। सब रसों में उत्तम रस है सत्य, और जो जीवन प्रज्ञामय है वही जीवन श्रेष्ठतम है। भगवान बुद्ध से एक बार 4 प्रश्न और पूछे गए। पहला प्रश्न था मनुष्य पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को किस प्रकार पार करता है। दूसरा प्रश्न था संसार रूपी सागर को किस प्रकार तैर कर पार किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न था किस प्रकार दुख का अंत हो सकता है। और चौथा प्रश्न था किस प्रकार मनुष्य शुद्ध होता है। उसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा। सद्धाय तरति योगम अपमादेन अन्नवम विरियेन दुःखम अच्येति पञ्याय परिशुद्धति। मनुष्य श्रद्धा के बल से पुनर्जन्म रूपी बाढ़ को पार कर जाता है, अप्रमाद से संसार सागर को पार कर लेता है, और वह पराक्रम से दुख का अंत कर लेता है, और प्रज्ञा के बल से विज्ञान के बल से वह परिशुद्ध होता है। भगवान बुद्ध से किसी ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य किस प्रकार प्रज्ञा प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न पूछा किस प्रकार धन प्राप्त करता है। और तीसरा प्रश्न था किस प्रकार मित्रों को प्राप्त करता है, किस प्रकार मित्रों की वृद्धि कर सकता है। चौथा प्रश्न था ऐसा क्या कार्य है जिसके करने से परलोक में जाकर पछताना नहीं होता। भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। सद्दहानो अरहतम धम्मम निब्बान पत्तिया सुसुसा लभते पय्यम अपमत्तो विचक्षणो। निर्वाण की ओर ले जाने वाले अरहतों के धर्म में जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विनय युक्त होता है, प्रमाद नहीं करता, ऐसा बुद्धिमान पुरुष प्रज्ञा को प्राप्त करता है। पतिरूपकारी धुरवा उठाता विन्दते धनम सच्चेन कित्तिम पप्पोति ददम मित्ता निगंधति। उचित काम को करने वाला दृढ़ और प्रयत्नशील पुरुष धन को प्राप्त कर सकता है। वह कीर्ति सत्य के बल से प्राप्त करता है, और दान देकर

0: लोकम सवेपेच्चन सोचति। जिस श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य की, धर्म की, धृति की और त्याग की वृत्ति होती है, ये चार धर्म जिस व्यक्ति में होते हैं, वह परलोक में जाकर कभी नहीं पछताता। इसलिए सत्य का, धर्म का, धृति का और त्याग का मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए।
1: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रही थी बौद्ध ग्रंथ धम्मपद से पाठ। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। आइए अब सुने श्री रामचरित मानस गान।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

0: आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया और गायक कलाकार थी सुरेश वाडकर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है सुपर फूड मिलेट्स। जानकारी देते हुए डॉक्टर आदिकांत प्रधान।
1: मोटा अनाज जैसे हम लोग जिस प्रकार से हम देखते हैं मोटे अनाज के में वो दो प्रकार के आते हैं। एक जो होता है जो बड़ा होता है दाना में उसे भी मोटा अनाज कहते हैं, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। दूसरा जो होता है वो लघु धान्य में आता है, उससे थोड़े आकार प्रकार में छोटे होते हैं, जिसमें रागी है, कोदो है, कुटकी है, सावा है, कंगनी है। इन सबको ऐसे करके 6 मिलेट्स होते हैं और इन सब में पोषक तत्व की अधिकता और पर्यावरण अनुकूलता और कम प्रयास में अधिक उत्पादन लेकर हम अपने अच्छे पोषक तत्व को परिपूर्ण कर सकते हैं इनको लगा के। इसलिए जो मिलेट्स है आजकल ज्यादा डिमांड हो रहा है बाजार में। सुपर फूड आजकल जैसे जो सुपरमैन होते ना वैसी हम ये अनाज के घलोक नाम है। एक नाम एबर पड़े है कि जैसे चावल और गेहूं खाते हैं ना आटा के स्वरूप में, तो ओमा का होते कि बहुत ज्यादा हमारे ग्लूकोज वगैरह शरीर के रक्त में प्रवाह होते हैं, ओकर से मतलब डायबिटीज के प्रॉब्लम होते हैं। और ये में जो है फाइबर ज्यादा होते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद पाचन क्रिया के बाद ये धीरे धीरे हमारे शुगर जो है ब्लड शुगर में जाते हैं, ओकर से का होते कि ये में जितका शुगर होते ना वो शुगर के पाचन करे बर हमारे इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में मिलते। वही हमन मन दूसरा साइड देखते जो चावल और कर गेहूं के तो वहां का होते एक संग में आ जाते सब पेट में, तो वो ला पचाए बर उतका इंसुलिन नहीं हो वाए। तो जितका जन हो ना जैसे डायबिटीज वाला मन जाकर पाचन शक्ति थोड़े कम होते, जाकर फाइबर कम होते, मिनरल्स के कमी होते, वो सब बर इला डॉक्टर आजकल और जब तक पोषण वाला मन हो वो इला रिकमेंड करते हैं, अनुशंसित करते कि लो लो रोज सुबह नहा नी होए में दोपहर के भोजन में इला लेना है। तो ये ऐसे एकर का होते कि ये ऐसे अगर आप मन लेहू वेला तो ये में फायदा ये होते कि आपला भोजन के माध्यम से दवाई मिलते। जैसे हम चावल घलो पकाथन ना तो में का होते गीला हो जाते कई बार माड़ रही जाते हैं, तो वो खाए बर उसका मजा नहीं आया और वो कर पोषक तत्व तो पसिया संग में चल देते। तो तई पाके हमन मन जो मिलेट्स है ये ला कतकी पकाऊ ना वो गीला नहीं होए और एमा जो एक ग्लूटीन बोलते ना वो ग्लूटीन की मात्रा कम होते, एकर से थी एकर दाना दाना अलग हो ही और अतका स्वाद नहीं लगाए जतका हमर चाउर लगते ना चावल के पकावन में। ओकर कारण इलाके कई जन ना अलग अलग प्रकार के बना के खाते हैं। अगर लड़का बच्चा मनला आप दहू है जैसे भात खवैया लड़का मनला और रोटी खवैया लड़का मनला अगर तो मिलेटला वो नहीं खाए, जैसे आप मन चावल बना के खिलाता हो ना वो ऐसे में वो नहीं खावाए। तो एकर सेती इलाका है कि विशेष प्रकार के पकाहू तब आप मनला मिली। जैसे कोदो के चावल ला खाऊ तो बिल्कुल सिट्टापन रही, वो थोड़ा थोड़े कनिक नोन ओन मिला हूँ ना तो बढ़िया लगते। तो ओकर बाद और जैसे जो थोड़े मीठा खाना हुई तो ला खीर बना के खाऊ, ओकर बाद अगर पाउडर बनाऊ तो पाउडर बनाऊ जैसे कोदो ही खाली कोदो के गोठला नहीं कोठे आना मन, ओकर संग में जैसे कुटकी हवे, सावा हवे और कंगनी हवे, ये तीन चार प्रकार के जो लघु धान बोलथन ना वो सब एकर इमन के गुण ये है कि ये मा मिनरल्स ज्यादा होते। जैसे हमारे रागी बोलते ना, रागी में सबले अगर हो मोर ख्याल जो कैल्शियम बोलथन ना वो सबसे ज्यादा कैल्शियम क्या है कोई अनाज में अतका ना नहीं हो जतका हमार रागी में हवा। तो वो रागी ला अगर बच्चा मन ला जैसे रागी माल्ट बोला बिहनिया जैसे खिलाओ तो नेचुरल फूड है, तो ओकर कैल्शियम जो हड्डी के जितका आवश्यकता हुई ना वो पूरा ला पूर्ण करते। जैसे आजकल स्वाद नहीं हुई ना तो जैसे लड़का बच्चा मन होते ना वैसे हमन सियान सजन घलोक नहीं खाए, घर में बनाथन ना ठेठरी बनाथन जैसे और बानी बानी के छत्तीसगढ़िया व्यंजन बनाथन ना वैसे बनाएल पड़े। जैसे रागी ला लोहू ना तो रागी ला क्या है जैसे आटे जैसे गुथेला नहीं बनाए, काबर की वो में अतका वो बांधे के वाली जो तत्व है ना वो नहीं रहे।
0: सुपर फूड मिलेट्स इस विषय पर डॉक्टर आदिकांत प्रधान द्वारा दी गई जानकारी अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा आज रात 8:30 पर। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे विद्वान श्री डी श्रीनिवास का बजाया कर्नाटक वायलिन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर। इसमें सुबह 7:10 पर देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिएगा आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर से की गई बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। नन्हे श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसले सुबह 8:30 पर। इसमें क्रम बच्चों की डायरी में सुनेंगे समर वेकेशन का कैसे करें उपयोग और सुनिएगा श्रीमती नंदिनी लहेजा की बाल कहानी आरव की बदलती दुनिया और सुनेंगे प्रेरक प्रसंग और बाल गीत। खेल संसार कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:00। इसमें साप्ताहिक खेल समीक्षा के साथ सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी किरण पिस्ता से फोन पर की गई बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे धर्मदीप टोंगरे। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे सीमा कौशिक और साथी। सुबह 10:30 पर सुनिएगा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोली दंपत्ति से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति होगी।

फोन इन फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 11:05 पर। प्रस्तुत करता होंगी राजकुमार व्यास। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:00 फनकार होंगी निर्मल उथास। आपमन के गीत कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया दोपहर 1:30 पर। इसमें आज की बात होगी शिक्षा से सशक्त होती महिलाएं और होगी वार्ता संयुक्त परिवार का विघटन और दायित्व बोध। वार्ताकार होंगी मनीषा सेनापति। संध्याकालीन सभा में 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी है मरकोट। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में आज होगी चर्चा इरादे नेक हों साथी होगा क्रम राग नंदिनी। आलेख और संपादन वीर भानसा होगा प्रस्तुति सुमिता राय बर्मन की। शाम 6:30 पर कानून की बात कार्यक्रम में उत्तराधिकार अधिनियम पर जानकारी देंगी षष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री मनीषा ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी। किसानों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात होगी दलहन के प्रसंस्करण ले बढ़ावन आमदनी और क्रम आज की सलाह में ग्रीष्मकालीन सब्जी माँ कीट नियंत्रण विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर ऋचा चौधरी प्राध्यापक कीट विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र महासमुंद। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी पवन चंद्राकर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में कुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

माँ वो शख्सियत जो आसपास मौजूद हो तो हर बच्चा बेहद आश्वस्त बहुत निश्चिंत हो जाता है और माँ भी अपने बच्चे की भलाई के लिए खुशी के लिए बेहतर भविष्य के लिए हर घड़ी हर पल मुस्तैद रहती है। नींद में भी माँ पास हो तो एक इत्मीनान रहता है कि दुनिया की कोई परेशानी कोई तकलीफ कोई मुश्किल आसपास नहीं भटकेगी। अगर आ भी गई तो माँ की दिए हौसले से हार जाएगी। माँ की छुअन माँ की मुस्कान माँ की परवाह माँ की ममता कभी मलिन नहीं हो सकती। इसलिए माँ को धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है। मातृ दिवस पर हर माँ को हमारा शत शत अभिनंदन नमन।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
3: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 सालों से निरंतर सेवा में
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
4: नमस्कार, रायपुर में अब समय है देश की वाणी आकाशवाणी का। देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिए आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर।

0: आवाज का ये सफर 9 दशकों का साथी है, परिवर्तन का साक्षी है। आवाज का ये सफर कामयाबियों का गवाह है, फनकारों का हमनवा है। आवाज का ये सफर कल से आज तक निरंतर जारी है, आकाशवाणी को समर्पित अनेक सृजनकर्ताओं के संग, जिन्होंने रेडियो के कैनवास में भरे हैं कई खूबसूरत रंग। इन्हीं रंगों को अपने साथ लिए जन जन तक पहुंच रही है आकाशवाणी की ध्वनि तरंग। तो देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम बांटने जा रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री विश्वास केलकर के अनुभव उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: दीपक जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन।
0: विश्वास केलकर जी, ये जो नाम है ये आकाशवाणी के किसी एक केंद्र से नहीं बल्कि अनेक केंद्रों से इस नाम को हमारे श्रोताओं ने सुना है। ये नाम किसी जमाने में आकाशवाणी रायपुर से भी सुनाई देता था। तो विश्वास जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपकी ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है?
1: ये यात्रा शुरुआत कहाँ से हुई, उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं इस यात्रा पर आया कैसे। देखिए, आकाशवाणी में आने से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक के तौर पर कार्य करता था
0: जी।
1: मेरी माताजी श्रीमती कमल केलकर, जो कि रायपुर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग उनको अच्छे से जानते हैं, एक सुप्रसिद्ध गायिका थी
0: जी।
1: तो मेरी माताजी की एक शिष्या थी रमा दीदी। से मेरी माताजी ने कहा कि मेरे बेटे के लिए कभी कोई अच्छी नौकरी की पोस्ट निकले तो बताना। उन्होंने ये बात उनकी बड़ी बहन रेखा दीदी से कही
0: जी।
1: और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जब यूपीएससी से पोस्ट निकली तो फॉर्म रमा दीदी के माध्यम से मेरी माताजी तक पहुंचा दिया।
0: क्या बात,
1: आप जानते हैं कि रेखा दीदी उस समय आकाशवाणी रायपुर में ही कार्यरत थी। उसके बाद 24 जून 1991 को आकाशवाणी बीकानेर में मैंने कार्यक्रम अधिकारी का पदभार ग्रहण किया और 30/11/2023 को आकाशवाणी भोपाल से सहायक निदेशक कार्यक्रम के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच मैंने नागौर, रीवा, रायपुर, अयोध्या, इंदौर, कोटा और भोपाल जैसे आकाशवाणी केंद्रों पर अपनी सेवाएं दी
0: जी। केलकर साहब, आपने चंद मिनटों में इतनी लंबी यात्रा का वृत्तांत हमारे श्रोताओं को सुनवाया। अब अगर हम आकाशवाणी के प्रति आपकी अपनी रुचि की बात करें तो ये जो रुचि है इसका सबसे बड़ा आधार क्या रहा है?
1: देखिए, बचपन से ही आकाशवाणी हमारे घर में सुना जाता था। 5-55 से हमारा रेडियो जो है 5-55 से लग जाता था, बल्कि संकेत ध्वनि से हमारा रेडियो हमारे घर शुरू हो जाता था
0: जी।
1: उसमें जो भजन आते थे वो इतने अच्छे आते थे कि मेरे ख्याल से हमारे घर के जितने सदस्य थे सभी उसको सुना करते थे। और उस समय आकाशवाणी रायपुर से चिंतन रायपुर से नहीं आता था, आकाशवाणी भोपाल से उसका प्रसारण होता था
0: जी।
1: और वो चिंतन हम लोग सुना करते थे, रामचरितमानस होता था उसको भी हम लोग सुना करते थे, और आकाशवाणी रायपुर से शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसको भी हम लोग सुना करते थे। तो धीरे धीरे आकाशवाणी के प्रति मेरी जो है रुचि बढ़ती चली गई। हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि मैंने ये विचार नहीं किया था कि मैं कभी आकाशवाणी में नौकरी भी करूंगा
0: जी।
1: क्योंकि उस समय ऐसे बचपन में ऐसा मालूम ही नहीं था कि आकाशवाणी में नौकरी कैसे करते हैं, क्या कैसे की जाएगी या मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। मैं तो क्योंकि मेरे माता पिता जी दोनों गाने वाले थे, मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ करूं।
0: आपने संगीत में क्या क्या सीखा है?
1: संगीत में देखिए, वैसे तो मैंने डिग्री के तौर पर आप बोलेंगे तो एमए की शिक्षा डिग्री मैंने प्राप्त की है ख्याल गायन में। एमए मैंने किया प्रागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से, बीम्यूज भी मैंने किया था, उसके बाद मैंने एमए किया वहां से
0: जी।
1: लेकिन ये तो खैर डिग्री की बात अलग है, लेकिन बचपन से जब मेरी आंख खुलती थी तब मेरी माता जी उस समय 5:30-5:15 बजे से गाना शुरू कर देती थी और मैं उसको

0: करता था। 5 बजे से मेरी माता जी का गायन शुरू होता था, 5:45 तक मेरी माता जी का गायन समाप्त हो जाया करता था
1: जी।
0: तो बचपन से ही संगीत के स्वर मेरे कानों में, तानपुरी के स्वर मेरे कानों में पड़ते थे, तो स्वाभाविक रूप से मेरे में संगीत की रुचि उत्पन्न हुई। और आप जानते हैं कि मेरे नाना जी पद्म भूषण पंडित विनायक राव पटवर्धन
1: जी,
0: ये मेरे नाना जी।
1: क्या बात,
0: संगीत को कह सकता हूँ कि मतलब विरासत में ही मुझको संगीत एक तरह से प्राप्त हुआ।
1: चूंकि आपने बताया कि संगीत आपको विरासत में मिला और आकाशवाणी के प्रसारण का एक बहुत बड़ा हिस्सा संगीत है, उसमें शास्त्रीय संगीत का खास मुकाम है, और आप चूंकि शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहे हैं, बचपन से ही संगीत का वातावरण आपको मिला है और आपने संगीत सीखा भी है। आकाशवाणी की अगर आपकी संपूर्ण यात्रा की बात की जाए, तो क्या इसमें संगीत के ही क्षेत्र में आपका दखल रहा है या उसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आप जुड़े रहे?
0: देखिए, मूलतः तो मैं ये भाग्यशाली रहा मैं कि मैं मेरा जो सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी से, कार्यक्रम अधिकारी संगीत के तौर पर हुआ था
1: जी।
0: और लगभग सभी आकाशवाणी केंद्रों में मेरे पास संगीत का कार्यक्रम रहा। ये अलग बात है कि कुछ केंद्रों पर मुझे और दूसरे कार्यक्रम भी मिले, और मैंने अपने बुद्धि के अनुसार जैसा भी मैं कर सकता था वैसे वो काम मैंने पूर्ण किया। जैसे कि आकाशवाणी फैजाबाद में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4.5 वर्षों तक मैंने खेल खिलाड़ी एक कार्यक्रम होता था वहां पर, जो रात को रविवार को 8 से 8:20 तक हुआ करता था
1: जी।
0: तो मैं उस कार्यक्रम को सजीव प्रसारित करने के लिए रात को 8 बजे आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद, जो कि आप अयोध्या के नाम से जाना जाता है
1: जी,
0: उस समय जाता था। और वहां एक उद्घोषक होते थे, कोई ना कोई उद्घोषक कार्यरत होते थे, उनके साथ मिलकर मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया करता था। तो इस कार्यक्रम की मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के लोगों को अपने समय के प्रति कितना प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। आप तो खैर बहुत अच्छे से उस बात को जानते हैं
1: जी।
0: एक बार क्या हुआ कि मैं, मुझको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पे पंचकोसी परिक्रमा होती है, पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है, मुझको जानकारी थी। लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि आकाशवाणी अयोध्या का जो रास्ता है उस रास्ते से ही वो पंचकोसी परिक्रमा का रास्ता भी जाता है
1: जी।
0: मेरी एक आदत थी कि 8 बजे का कार्यक्रम है तो मैं 15-20 मिनट पहले वहां आकाशवाणी पहुंच जाया करता था। उस दिन भी मैं वहां पहुंचा, और जैसे ही आकाशवाणी के पास में पहुंचा तो इतनी भीड़ ज्यादा थी, तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने स्कूटर एक जगह खड़ी की, और आप विश्वास नहीं करेंगे 500 मीटर का रास्ता मुझको पैदल जाने में करीब 15-17 मिनट लग गए। लेकिन चूंकि मैं 15-20 मिनट अपने हाथ में लेके चलता था, तो 8 बजने को जब 1 या 2 मिनट कम थे, मैं स्टूडियो में पहुंच गया और वो कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया।
1: क्या बात, क्या बात। केलकर साहब, इस तरह की रोमांचक घटनाएं रेडियो से जुड़े लोगों के जीवन में अक्सर घटी हैं। आपका चूंकि बचपन रायपुर से जुड़ा रहा है और रायपुर से ही आपका परिवार भी जुड़ा रहा है, आकाशवाणी रायपुर में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अगर हम रायपुर की स्मृतियों को आपके मानस पटल में जो अंकित हैं उन पन्नों को पलटना चाहें, तो वो कौन कौन सी यादें हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी की तो, रायपुर की तो इतनी यादें हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, और आप लोगों का इतना स्नेह मुझको मिला है कि मैं उसको अपने जीवन भर कभी नहीं भूल सकता, इसमें कोई दो मत नहीं। तो देखिए, आकाशवाणी रायपुर में जब मैं रीवा से स्थानांतरित होकर आकाशवाणी रायपुर पहुंचा
1: जी,
0: तो वहां पर माननीय ममता चंद्राकर मैडम उस समय सहायक निदेशक थी
1: जी,
0: और वहां पे जितने लोग थे वो लगभग सभी लोग मुझको जानते थे कि ये संगीत परिवार से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझको कहा कि आप संगीत रचनाएं की जब आवश्यकता हो तो आप इस मास का गीत, एक कार्यक्रम होता था आपको याद होगा,
1: बिल्कुल जी जी,
0: है ना, उस इस मास का गीत को जो कार्यक्रम होता था उसमें आपने भी अपने आवाज दी है मेरे एक गीत में
1: जी जी।
0: पहले उसको अपन पठन करते थे, उसके बाद वो गीत होता था,
1: बिल्कुल,
0: होता था
1: बिल्कुल।
0: तो उसमें से मैंने इस मास का गीत के लिए संगीत दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथी भी वहां पर थे, मेरे परम मित्र थे संजय पांडे
1: जी,
0: एक और मेरे बचपन के मित्र थे राजेश फाई, और मेरे गुरुदेव के लड़के समीर शुक्ला
1: जी,
0: और वहां पर जो उस समय मेरे साथ तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत थे आदरणीय रामाने जी, आदरणीय वरखड़े जी। तो विज्ञापन जब काम होता था तो उसमें गीत बनाए जाते थे विज्ञापन के, जैसे विज्ञापन के कोई उनको एक वो सीरियल मिला, इसके आपको 12-7 एपिसोड करने तैयार करने हैं
1: जी, प्रायोजित कार्यक्रम के,
0: प्रायोजित कार्यक्रम जी, हाँ जी हाँ
1: जी जी।
0: तो उसका एक, आपको मालूम है कि उसका एक शीर्षक गीत हुआ करता था जिसको अपने को आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से उसको तैयार किया जाता था,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। कई सारे गीत मैंने तैयार किए, लेकिन एक गीत का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा
1: जी।
0: वो गीत था आओ आशा दीप जलाएं, कुष्ठ रोग पे एक कार्यक्रम,
1: बिल्कुल
0: 13 एपिसोड का कार्यक्रम वो करना था, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर बनाया जाना था,

0: छोटा रैपर के द्वारा इसकी निर्मिति की जानी चाहिए थी। तो समीर शुक्ला ने मुझको बताई, ये बात बताई थी कि वहां के जो एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने समीर जैसे कहा कि ये जो कुष्ठ रोग का कार्यक्रम है
1: जी,
0: इसके लिए जो शीर्षक गीत होगा उसको आप लोग ऐसा कीजिए कि मुंबई से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आकाशवाणी रायपुर को मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी अच्छे लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और इतने अच्छी रिकॉर्डिंग की सुविधा यहाँ पर है कि आप उस गीत को बना सकें। तो समीर ने कहा कि सर हम प्रयास करते हैं और आपको यदि लगा कि हम ठीक हैं तो आप उनको आगे मौका दीजिएगा, नहीं तो फिर आप जैसा बोलते हैं वैसा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये बात आके समीर ने मुझको आके बताई। अब भगवत कृपा से मैंने कहा यार समीर ये तो अपने लिए आकाशवाणी रायपुर के लिए भी एक खुला चैलेंज है, मतलब एक पर इसको अपने को किसी भी तरह से पूर्ण करना है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात उस समय ये थी कि मैं आकर रायपुर में पोस्टेड था, मेरे माता पिताजी बुढ़ापारा में ही रहते थे, आपको मालूम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो समीर ने जब मुझको एक गीत दिया तो मैंने गीत की जब संगीत रचना अपने घर में बैठ कर की, उसके बाद माता पिता को लाकर सुनाई, तो उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कहा कि ऐसे ऐसे परिवर्तन करो। और आपको यदि याद होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने किसी और राग में इस गीत की रचना की थी
1: जी,
0: उस समय आप भी बैठे थे वहां पर और रमानी साहब भी वहां पर थे, उनको मैं सुना रहा था ये गीत
1: जी जी।
0: तो आपने एक पॉइंट आउट किया था जिसको मैंने मान लिया, आपने कहा था कि इस गाने की धुन तो जो है सांझ ढले गगन तले से कुछ उसकी साम्यता हो रही है
1: जी जी।
0: मैंने कहा ठीक है, मैं इसका एक स्वर जो है वो एक स्वर अलग कर देता हूँ, और उसके बाद अगले दिन लाके मैंने दूसरे तरीके से इसकी स्वर रचना की
1: जी।
0: और फिर उसके बाद मेरे माता पिता को सुनाया, उन्होंने पास किया। फिर रमानी जी कान के बहुत अच्छे हैं, वो उसको पहले मैं सुनाया करता था, तो वो बोलते थे हाँ खेलकर ये ठीक है, अपन इसको अपन कर सकते हैं। और उसके बाद आप भी वहां पर, दूसरी बात भी आप वहां पर थे, तो मैंने कहा और दीपक जी बताइए अब कैसा लग रहा है, तो बोले नहीं सर अब तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है
1: जी जी।
0: तो मैं वो गीत थोड़ा सा आपको यहाँ पर गा के गुनगुना
1: बिल्कुल चाहता। स्वागत है सर, स्वागत है बिल्कुल।
0: मैं गायक नहीं हूँ मैं,
1: प्लीज प्लीज सर,
0: लेकिन जैसा भी मुझको बन पड़े मैं सुनाना चाहता हूँ।
1: स्वागत है सर, स्वागत।

0: ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो समीर जी ने क्या किया, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की
1: जी।
0: उन अधिकारी का फोन आया कि क्या हुआ इस गीत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये गीत जो है सर तैयार हो गया है। बोला अच्छा आपने तैयार कर लिया, चलिए अच्छी बात है, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आपको इसको मुंबई में तैयार करवाना चाहिए करके, आपने करवा लिया अच्छी बात है
1: जी।
0: वो आए और समीर ने क्या किया उनको स्टूडियो में बैठाया और स्पीकर पे उनको बड़े स्पीकर पे अपने जो होते हैं ना स्पीकर होते हैं ना बड़े स्पीकर
1: जी जी जी जी
0: उस पे उनको सुनाया। तो सुनाने के बाद उनको ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि समीर जी देखो मैं तो आपसे पहले ही कहना था कि ये आपके बस की बात नहीं है, आपने अच्छा किया कि उसको आकाशवाणी मुंबई से इसको तैयार करवा लिया
1: जी।
0: तो सुनने के बाद समीर उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और उनको बताया कि नहीं सर ये गाना मैं आपको बताऊं कि ये गाना हमारे केंद्र पर ही रिकॉर्ड किया गया है।
1: अच्छा
0: तो ये सुन के वो बोले कि ये गाना आपके केंद्र पर रिकॉर्ड किया
1: जी,
0: गया है।
1: जी जी जी
0: तो बोले जब आपने एक शीर्षक गीत के लिए इतनी मेहनत की है
1: जी
0: और ये पूरा 13 एपिसोड का जो ये जो है ये आप ही बनाएंगे।
1: क्या बात क्या बात।
0: मुझे बहुत खुशी कि मेरे जो अपने गुरुओं से मैंने जो संगीत सीखा उसका कुछ उपयोग मैं आकाशवाणी रायपुर के लिए कर सका और आकाशवाणी रायपुर को विज्ञापन में अपना कुछ योगदान में दे सका।
1: क्या बात। इसके अलावा अगर आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों की आपकी संपूर्ण यात्रा की बात करें तो उपलब्धि पूर्ण आपके कार्यों में किन किन कार्यों को आप और याद करना चाहेंगे?
0: तो आकाशवाणी इंदौर का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा
1: जी।
0: आकाशवाणी इंदौर में मेरे लिए सबसे बड़ा जो यादगार का पल था वो था जनवरी 2018 में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन
1: जी।
0: अब दीपक जी आप जानते हैं कि इसमें देश भर के 22 भाषाओं के अलग अलग कवि और उनके अनुवाद करने वाले 22 लोग भी आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और आकाशवाणी महानिदेशालय से भी इसमें हमारे अधिकारी जो है वो आते हैं देखने के लिए कि ये कार्यक्रम कैसे किया जा रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत बड़ा आयोजन था। ये कार्यक्रम इतना सफल रहा था दीपक जी कि इसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको उसी कार्यक्रम के माध्यम से इसको सम्मिलित किया गया।
1: क्या बात।
0: और आकाशवाणी को एक सर्टिफिकेट दिया गया और ये संस्था जो है लंदन की संस्था है दीपक जी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: उन्होंने चलते कार्यक्रम में एक गुवाहाटी के रिटायर्ड जज थे वो आए हुए थे, उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट आकाशवाणी इंदौर में राजशेखर जी को सौंपा।
1: क्या बात।
0: वो उन्होंने ले जाके दूसरे दिन डीजी को सौंपा।

0: मैं चूंकि संगीत से जुड़ा रहा हूँ इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर मैं आकाशवाणी इंदौर में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर कार्य करने गया तो वहां पे कुछ वरिष्ठ कलाकार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोग ए ग्रेड में रहते हैं, हम लोग को करीब करीब किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 15 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी अखिल भारतीय संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं शनिवार और रविवार को अपने कार्यक्रम होते थे आपको मालूम है,
1: जी जी जी,
0: उसमें हमारा प्रसारण नहीं हुआ है। तो फिर मैंने ऐसे सभी कलाकारों की लिस्ट बनाई और आकाशवाणी महाविद्यालय में पत्र लिखा कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, यदि उनका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होता है तो ये न सिर्फ आकाशवाणी इंदौर के लिए बल्कि आकाशवाणी दिल्ली के लिए भी गर्व की बात होगी कि इनका प्रसारण सभी लोग देश भर में सुन सके।
1: बिल्कुल जी जी।
0: और दीपक जी मेरे को बताने में बहुत खुशी होती है कि मेरी चिट्ठी गई और मैंने जितने कलाकारों के नाम लिखे थे
1: जी
0: तो उस वर्ष हमने 10 कलाकारों की इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग की और उसके बाद जो सिलसिला चला तो फिर आकाशवाणी इंदौर इस मामले में शायद मेरे ख्याल से जब तक मैं था कभी पीछे पलट के नहीं देखा, प्रत्येक वर्ष 4 या 5 या 3 या 4 कलाकारों के नाम आते थे और उनका प्रसारण वहां से होता था।
1: आप कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर, सहायक निदेशक के तौर पर आकाशवाणी भोपाल में रहे हैं और वहीं से आपने आकाशवाणी को अलविदा कहा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब कोई व्यक्ति कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाते हैं, तो आपको कैसा लग रहा था भोपाल में?
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाना वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है
1: जी।
0: और सबसे ज्यादा कार्य मैंने आकाशवाणी भोपाल में किया, ये भी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: सौभाग्य से उस समय ऐसा था कि मेरे ऊपर 19 केंद्रों का भार भी था, उस समय दिया गया था मुझको प्रभार दिया गया था छत्तीसगढ़ और आकाशवाणी के मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों का
1: जी
0: प्रभार मुझको सौंपा गया था, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन वहां का जो स्टाफ था इतने अच्छे लोग वहां पर थे कि उनके सहयोग से मुझको ये पता ही नहीं चला कि मैंने वहां पर अपने 5 साल 7-8 महीने जो भी मेरा कार्यकाल था वो कैसे वहां मैंने बिताया और किस तरह से वो संपन्न हुआ। एसपी सिंह साहब थे वहां पर, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, अत्यंत अनुभवी कार्यक्रम निष्पादक थे और जब कभी महानिदेशालय से कभी इस तरह की परिस्थिति आती थी तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और एक इनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, राकेश ढोंडियाल कार्यक्रम निष्पादक के पद पर थे वो, लेकिन वो इतने होशियार कार्यक्रम निष्पादक थे कि उनका रूपक जो उनको बनाए जाते थे और द्वितीय होते थे, उनको इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार भी मिले थे, आप जानते होंगे इस बात को, और आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के कई पुरस्कार श्री राकेश ढोंडियाल जी को प्राप्त हुए थे। तो मेरे लिए गर्व की बात रही कि ऐसे लोगों के साथ उसको आकाशवाणी भोपाल में कार्य करने का मौका मिला।
1: केलकर साहब, मन तो कर रहा है कि आपसे और भी बहुत सारी बातें करें लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की सीमा हमसे यही कह रही है कि अंत में आपके जीवन में आकाशवाणी का जो योगदान रहा है उसे आप किन शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे?
0: देखिए, आकाशवाणी जैसी संस्था में अपनी सेवाएं देना ये अत्यंत गरिमामय और गर्व की बात होती है दीपक जी, और मुझे अहोभाग्य ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं अपने सद्गुरु जो मेरे लिए साक्षात परम पिता परमेश्वर ही हैं, श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की परम कृपा, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे शुभ चिंतक मित्रगण और मेरे सभी कार्यालयीन सहयोगियों के सहयोग से मैं ये अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर सका, इसका मुझे संतोष है और मैं इसके लिए अपने ईश्वर सहित सबका आभारी हूँ।
1: सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में केलकर जी का समय किस तरह से बीत रहा है?
0: देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है घर के जो काम होते हैं वो करना होता है और संगीत तो मेरे खून में है, तो आजकल यूट्यूब और इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं अपने पास कि आराम से आप उन सबको सुन सकते हैं। दिनचर्या के बारे में आपको मैं क्या कहूँ, जैसे सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा बाहर पैदल टहल कर आ जाता हूँ, आने के बाद थोड़ा प्राणायाम कर लेना और कभी कभी मैं आकाशवाणी भोपाल का एक कार्यक्रम होता है नमस्कार भोपाल
1: जी,
0: तो टहल कर आने में यदि 7:20, 7:30 हो जाते हैं तो कभी कभी उस कार्यक्रम को भी मैं लगा लिया करता हूँ, और या किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में कभी कोई कार्यक्रम अच्छा चल रहा हो तो उस कार्यक्रम को भी सुन लेता हूँ। और फिर घर के कुछ काम है, जैसे नवी मुंबई में खारघर करके एक स्थान है वहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं
1: जी। तो केलकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि यूं ही आपका जीवन मनोरंजन के साथ बीते, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना है। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

वाणी में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर से की गई बातचीत। प्रस्तुतकर्ता थी दीपक हटवार। देश की वाणी आकाशवाणी के बाद अब नमस्कार रायपुर के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

शुद्धों यूं तो हर बढ़ता कदम हमें मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन पहला कदम बहुत खास होता है क्योंकि वहीं से यात्रा शुरू होती है। भारत की आज़ादी यूं तो कई दशकों तक चले संघर्ष का परिणाम थी, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला विद्रोह ही वो कदम था जिसने लोगों को झकझोरा, नींद से जगाया और एहसास करवाया कि गुलामी की जंजीर से आजाद होना कितना जरूरी है। दिन था 10 मई 1857। सूरज रोज की तरह होगा, लोग हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या में लगे थे, लेकिन मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाहियों की आंखों के सामने घूम रही थी चर्बी वाली कारतूस, भुखमरी और अत्याचार से पीड़ित लोगों के चेहरे और आजाद भारत का सुनहरा सपना। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों से क्रांति का बिगुल फूंका। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर तक जा पहुंचा। सब प्रणप्राण से लड़े, लेकिन आधुनिक हथियारों की कमी, धन का अभाव और जन सामान्य की सहभागिता न होने की वजह से ये क्रांति सफल न हो सकी। लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और आम भारतीयों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।

श्रोताओं, आज है 10 मई। आज के दिन मनाया जाता है विश्व ल्यूपस दिवस। ल्यूपस एक पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, स्वस्थ उत्तकों और अंगों पर हमला करती है, जिससे जोड़ों में दर्द, थकान, त्वचा पर चकत्ती और सूजन जैसी समस्या हो सकती है। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये 15 वर्ष से 44 वर्ष की आयु की स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। ऐसे में इससे होने वाले शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रभावों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ही सन 2004 में वर्ल्ड ल्यूपस फेडरेशन द्वारा इसे मनाने की शुरुआत की गई। वास्तव में ल्यूपस के बारे में जानकर, शुरुआती लक्षणों को पहचानकर हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और रह सकते हैं हमेशा स्वस्थ और मस्त।

0: दसवीं बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
3: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
4: अगर कभी किसी से ये पूछा जाए कि वो कहाँ घूमने जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो यकीनन अधिकांश लोगों का जवाब होगा जंगल। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की अनोखी दुनिया है जंगल, जो कुदरत की कारीगरी का बेमिसाल नमूना है। इसके अलावा वन पृथ्वी के फेफड़ों की तरह काम करते हैं, जो वातावरण में मौजूद प्रदूषक गैसों को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में प्राणवायु छोड़ते हैं। पर चिंता की बात यह है कि अवैध कटाई और जंगल में लगने वाली आग वन और वन्य जीव दोनों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में जंगल में आग लगने की घटनाएं अमूमन ज्यादा देखने सुनने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जंगल की आग को लेकर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवीय लापरवाही और बिजली गिरने से जंगल में आग लग सकती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, भूमि के उपयोग में बदलाव और खराब वन प्रबंधन नीति भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जंगल में लगने वाली सभी तरह की आग में से 75% आगजनी की घटना के लिए मानव ही जिम्मेदार हैं। भारत में 36% जंगलों में बार बार आग लगती है और लगभग 4% जंगल ऐसे हैं जो गंभीर रूप से आगजनी के शिकार होते हैं। यही वजह है कि यहाँ वन अग्निशमन क्षमता में सुधार किया जा रहा है। FSI आग चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और आग से प्रभावित वन क्षेत्रों का विश्लेषण करने के लिए उपग्रह इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ये तो हुए सरकार के प्रयास। आमजन भी जंगल के आसपास रहते हों तो जंगल में लगने वाली आग की सूचना समय पर वन विभाग तक पहुंचाकर दावानल को बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि जंगल घूमने जा रहे हों तो कोई भी ज्वलंत चीज साथ न ले जाएं, ताकि किस्से कहानियों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी जंगलों का अस्तित्व बना रहे और हम सुनते रहें पंछियों का संगीत, भौरे की गुनगुन और हवाओं में खुला मधुर गीत।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विपिन एस

0: नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
6: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17

0: एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent.

बच्चों जय हिंद। सभी नन्हे मुन्नों को अरुणा दीदी का ढेर सारा प्यार। छुट्टी है भाई, छुट्टी है। हमें पता है आप में से कई नन्हे मुन्ने दोस्त अभी अपने नानी के गांव में छुट्टियों का मजा ले रहे हो, है ना? खेतों में घूम रहे हो, आम के पेड़ों से मिले असली मीठे आम, वो भी चुस्की आम, जिसमें से मीठा मीठा रस निकलता है और वो सीधा मुंह में जाता है, ना कोई कटोरी ना कोई चम्मच। सही कहा ना हमने? तो भाई कितना मज़ा आता है ना। साथ ही कच्ची इमली नमक लगा लगा कर चटकारे मारना। सचमुच देसी चीज़ों का अपना अलग मज़ा होता है बच्चों, है ना? और भाई साथ ही कुछ बच्चे जो है वो छुट्टियों में पर्यटन स्थलों का मज़ा ले रहे हैं। क्यों, सही कहा ना हमने? कुछ बच्चे घर पर ही होंगे और गर्मी की छुट्टियों में लगने वाले विभिन्न शिविरों जैसे कि गायन, नृत्य, नाटक, सुलेख या फिर खेल शिविरों में बहुत कुछ सीख रहे होंगे, है ना? वैसे बच्चों ये जो छुट्टियां होती है ना, इसे आप और भी उपयोगी बना सकते हो, यादगार बना सकते हैं कुछ अच्छे अच्छे काम करके। भाई आप जहाँ कहीं भी हो बच्चों, अपने आसपास या फिर टहलने जाते हो जब भी, तब भी थोड़ा नज़र रखे कि कहीं पर पानी बह तो नहीं रहा है। अगर पानी यूं ही बह रहा हो तो नल की टोटी बंद कर दे, या फिर जिनके घर से पानी बह रहा हो उन्हें बुलाकर इस बात की जानकारी दे कि पानी अनमोल है, उसे बर्बाद होने से रोके। अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो उस जगह का आनंद ले, लेकिन अपने शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में अपने अनुभव और जानकारियों को ज़रूर साझा करें। भाई आप अगर अपने आसपास या फिर नानी के गांव में भी किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जो कि पढ़ाई से वंचित है, किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें पढ़ाई के महत्व को समझाए बच्चों, और हो सके तो उन्हें अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान जैसे कि जोड़ना घटाना पहाड़ा सिखाने की कोशिश करें। ये सब बातें और ज्ञान हमें रोज़मर्रा के जीवन में काम आता है बच्चों, और इस तरह के छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करके आप अपनी छुट्टियों का उपयोग ही नहीं भाई सदुपयोग कर सकते हैं, है ना? और अगर आपके अंदर ऐसी अच्छी भावनाएं हैं कि आप दूसरों के लिए भलाई का काम कर सकते हैं और दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों की खुशी में आप भी खुश हो जाते हैं, है ना? तो फिर भाई ये सारी भावनाएं जो है ना, इसके पीछे ज़रूर आपकी माँ का योगदान है। सच कहा ना बच्चों हमने? क्योंकि भाई माँ ही तो है जो अपने बच्चे को हर वक्त कुछ न कुछ सिखाती है, है ना? और हाँ, छुट्टियों में आप माँ को हर काम करते हुए देख रहे होंगे ना बच्चों, कैसे वो सुबह से उठकर आपके लिए और पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार करती है, फिर घर के सारे सामानों को जमा कर रखती है, फिर वो चाहे बिस्तर हो या फिर कॉपी किताबें हो या फिर रसोई घर ही क्यों ना हो, है ना? और पूरे घर के सदस्यों के लिए खाना तैयार करती है, और फिर रसोई की साफ सफाई के बाद आपको पढ़ाती भी है। तो बच्चों माँ के कार्यों का सिलसिला कभी रुकता नहीं है, वो रात को पलके झपकते हुए भी आपको कहानियाँ और लोरी सुनाती है। सही कहा ना हमने बच्चों? तो कोशिश करना बच्चों कि माँ को हर काम में मदद करें और रोज़मर्रा के काम को ज़रूर ज़रूर सीखे आप, है ना? और भाई माँ ही तो है जिनके अंदर कभी न टूटने वाला वो विश्वास होता है जिससे आपको सीख मिलती है, आप मजबूत बनते हैं, है ना? और बच्चों के अच्छे भविष्य और सफलता जो है वो उन्हीं के सपनों में समाई होती है। आप सब माँ का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें और माँ की आज्ञा का पालन करें।

0: और आज है मदर्स डे, तो माँ के लिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।
1: कितनी अच्छी

वैसे बच्चों, माँ आपको कहानी सुनाती है ना, तो इस कहानी सुनाने में माँ की मदद दादी माँ और नानी माँ भी करती है, क्योंकि दादी भी तो आपके पिताजी की माँ है और नानी भी आपकी

0: है ना, तो इस कहानी सुनाने में माँ की मदद दादी माँ और नानी माँ भी करती है, क्योंकि दादी भी तो आपके पिताजी की माँ है और नानी भी आपकी माँ की माँ है, इसलिए ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और साथ ही आपको कहानी सुनाने में हम भी तो मदद करते हैं ना भाई। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बाल कहानी, आरव की बदलती दुनिया। ये कहानी आपको सुना रही है श्रीमती नंदिनी लहेजा।
1: किसलय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? गर्मियों की छुट्टी के मज़े ले रहे हैं? मज़े तो खूब लो, पर प्यारे बच्चों, आप सभी को अपना ध्यान भी रखना है। अच्छा बच्चों, आज आपकी नन्ही दीदी आपके लिए एक कहानी लेकर आई है, जिसका शीर्षक है आरव की बदलती दुनिया। ये कहानी है छोटे से आरव की, जो बिल्कुल आप बच्चों जैसा ही क्यूट सा बच्चा है, जो 8 साल का है और चौथी कक्षा में पढ़ता है। एक शहर में आरव अपने मम्मी पापा आकाश जी और नेहा जी के साथ रहता था, और उसके दादाजी और दादी जी गाँव में रहते थे, जो प्रायः उससे मिलने शहर आया करते थे। रोज की तरह आरव की मम्मी ने सुबह उसे उठाते हुए कहा, आरव बेटा उठो, आज स्कूल नहीं जाना क्या? आज शनिवार है, संडे नहीं, आज तो तुम्हारी पीटी क्लास भी है, उठो जल्दी। नहीं मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, प्लीज सोने दीजिए ना, मुझे नहीं अटेंड करनी पीटी क्लास, आरव ने सुस्ताते हुए कहा। अरे क्यों नहीं करनी? बस वही तो समय होता है जब तुम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, उठो जल्दी, कोई बहाना नहीं चलेगा। मम्मा मैं थक जाता हूँ, रेसिंग में लास्ट हो जाता हूँ हमेशा, सब हंसते हैं मुझ पर। आरव बिस्तर से उठा और अपना चश्मा खोजने लगा। ये लो आरव तुम्हारा चश्मा, बेटा पहले फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, फिर पहन लेना। नहीं मम्मा, मुझे सर में दर्द सा लगता है, क्लियर नहीं दिखता, नेहा चिंता भरी नजरों से वही खड़ी देखती रही। कुछ समय बाद उसे स्कूल के लिए तैयार करते हुए कहा, तुम आजकल मोबाइल पर गेम कुछ ज़्यादा नहीं खेल रहे, जब देखो तुम्हें मोबाइल चाहिए, यही कारण है इतना जल्दी चश्मा लग गया। मम्मा होमवर्क भी तो करना पड़ता है ना, और सच बताऊँ तो मुझे भी स्पेक्स अच्छा नहीं लगता, कान के पीछे कितना दुखने लगता है, फिर क्लास में भी सब चश्मिश कहते हैं, मैं डबल परेशान हूँ, चश्मा पहनूँ तो दिक्कत और ना पहनूँ तो दिक्कत, आरव ने बड़ी मासूमियत से अपनी मम्मी से कहा। कुछ समय बाद आरव स्कूल चला गया और यहाँ हमारे छोटू आरव की मम्मी नेहा जी सोच में डूब गईं। उतने में आरव की दादी, जो कुछ दिन के लिए गांव से आई थी, वो उनके पास आई और पूछने लगी कि वो इतनी चिंतित क्यों हैं। तब नेहा जी ने उन्हें बताया कि किस तरह आरव बेचारा चश्मे के कारण परेशान होता है और वो स्पोर्ट्स में भाग भी लेने से कतराता है, क्योंकि वो जल्दी थक जाता है। उन्होंने चिंता करते हुए दादी से पूछा, माँ क्या हमें आरव को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? दादी ने उनकी बात सुनी और प्यार से उत्तर दिया, बहू मैं तो तुम्हें पहले से कहती थी कि आरव को मोबाइल का इतना आदी मत बनाओ। तुम्हें याद है जब वो छोटा सा था, कभी रोए तो तुम उसे मोबाइल चला कर दे देती थी, खाना खिलाते समय भी मोबाइल, उसे आदत हो गई, इसीलिए तो नज़रें कमज़ोर हो गई इतनी छोटी उम्र में। ऊपर से यहाँ शहर में बच्चे अब अपने घरों पर ही सीमित रह गए हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करते, तो उनका शरीर भी वैसे ढल गया है। तुम एक काम करो बहू, अभी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं तो इस बार तुम लोग गांव आ जाओ, कुछ दिन हमारे साथ रहो, आरव को वहां अच्छा लगेगा और इस समस्या का समाधान भी होगा। दिन बीत गए, एग्जाम खत्म हुए और हमारे आरव बाबू की छुट्टियां भी लग गई, और 2 दिन बाद आरव अपने परिवार के साथ निकल गया अपने गाँव की ओर, और कुछ घंटों में वे पहुँच गए। आरव और उसके मम्मी पापा ने दादा दादी को प्रणाम किया। आरव को मोबाइल पर गेम खेलते हुए देख दादाजी ने पूछा, और आरव बेटा कैसे लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है दादू, चलो आरव मैं तुम्हें बाहर घुमा कर आता हूँ, और वे दोनों बाहर घूमने निकल गए। वाओ कितनी हरियाली है ना यहाँ दादू, देखो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तुम जाओगे उनके साथ खेलने? रुको मैं उन्हें बुलाता हूँ। दादाजी ने सोहन को वहाँ बुलाया और उसे आरव से मिलवाते हुए कहा कि उसे भी वे अपने साथ खेल खिलाएं। हाँ हाँ दादाजी क्यों नहीं, आओ आरव, कहकर सोहन उसे बाकी बच्चों के पास ले गया और मिलवाने लगा। देखो ये राहुल है, ये दीपू है और ये किशन है, और ये है आरव, शहर से आया है। कैसे हो आरव, क्या तुम हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलोगे? आरव ने अपने चश्मे को नाक से थोड़ा ऊपर उठाते हुए ने देखा और कहा, मुझे तो नहीं आता ये खेल, क्या तुम मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर आरव उनके साथ कुछ देर खेलने लग गया। दादाजी वहीं चौपाल पर अपने मित्रों संग बैठकर बातें कर रहे थे और बच्चों को निहार रहे थे। कुछ समय बाद

आरव ने अपने नए दोस्तों से विदा ली और दादू संग घर आ गए। मम्मा आज तो मजा आ गया, यहाँ मैंने 4 न्यू फ्रेंड्स बनाए आज, सोहन, राहुल, दीपू और किशन, और मैंने गिल्ली डंडा खेला, मुझे बड़ा मजा आया और उन्होंने कहा है कि वे मुझे रोज नए नए खेल खिलाएंगे। उसके बाद उसने खुशी खुशी अपने मनपसंद का खाना खाया। आरव बहुत थका हुआ था इसलिए बिना मोबाइल पर गेम खेले ही सो गया। दूसरे दिन घर में मंदिर में बज रही घंटी के स्वर से वो जल्दी उठा। उसने देखा दादी मंदिर में पूजा कर रही थी। उसने दूर से प्रणाम किया और बाहर आया तो देखा उसके दादा और पापा सूर्य नमस्कार कर रहे थे, तो वह वहीं बैठ गया और देखने लगा। जब वे फ्री हुए तो पूछा, पापा आप लोग क्या कर रहे थे? बेटा हम लोग सूर्य नमस्कार और योगा भी कर रहे थे। मुझे भी सिखाइए ना पापा, मैं भी आप दोनों के साथ करूँगा। ठीक है आरव, कल से करना। चलो अभी टहलने चलते हैं, हरी हरी घास पर टहलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, दादू ने कहा और वे दोनों टहलने निकल गए। दादू सच में रोशनी बढ़ेगी? मुझे ना ये चश्मा बिल्कुल नहीं पसंद, यहाँ तो किसी ने नहीं पहना, ना सोहन ने, ना दीपू ने, किसी ने भी नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम रोज टहला करो, पौष्टिक खाया करो, मोबाइल पर गेम कम और बाहर खेला करो, देखो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। आरव ने एक दिन अपने दादाजी के साथ पौधारोपण भी सीखा कि किस तरह उन्हें सींचा जाता है, उनकी देखभाल करनी होती है। इस तरह 15 दिन बीत गए, आरव वहाँ काफ़ी घुल मिल गया सबके साथ और बहुत सारे खेल सीखे। रोज समय पर उठना, समय पर सोना उसकी आदत बन गई। नेहा और आकाश जी भी बहुत खुश हुए, अब उन्हें वापस भी जाना था कुछ दिनों में। एक दिन आरव सोहन और बाकी दोस्तों के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा था। आरव ने जल्दी से दीपू को पकड़ लिया। अरे वाह आरव, तुमने तो आज कितनी तेज दौड़कर दीपू को पकड़ा है, पहले तो दौड़ने के नाम से डरते थे, सोहन ने कहा। हाँ यार सोहन, पता नहीं क्यों डर जाता था मैं दौड़ से, मुझे लगता था कि मैं जीत ही नहीं सकता, पर यहाँ तुम सबके साथ इतनी प्रैक्टिस करी है कि अब लगता है मैं स्कूल में भी अपने स्पोर्ट्स क्लास मिस नहीं करूँगा। थैंक यू सोहन, और तुम सबको भी, तुम सबने मेरा डर मिटा दिया, अब मैं हर साल यहाँ छुट्टियों में जरूर आऊँगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को मोबाइल गेम्स खेलना नहीं पसंद? क्या तुम लोग अपने मम्मी पापा का मोबाइल यूज़ नहीं करते? हाँ खेलते हैं ना हम भी गेम, किशन ने कहा, पर रोज़ नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो आपस में खेलना ज़्यादा पसंद है। अच्छा क्या शहर में तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है आरव? हाँ यश है ना मेरा दोस्त स्कूल में, हम दोनों साथ टिफिन खाते हैं, पर ना हम दोनों चश्मा पहनते हैं तो डर लगता है कहीं गिर गया तो, ऊपर से बाकी बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पहले चश्मा तो संभालो फिर खेलना, इसलिए ना मेरा मन ही नहीं करता खेलने के लिए। तुम लोग कितने अच्छे हो, मुझे चिढ़ाते भी नहीं और मेरी हेल्प भी करते हो। अब मैं रोज़ सुबह हरी घास पर टहलता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ और पता है मुझे अब सर में दर्द भी नहीं होता। अब अपने घर जाकर मैं यही रूटीन अपनाऊंगा, शाम को कॉलोनी में जाकर अपने दोस्त बनाऊंगा और उनके साथ ये वाले खेल खेलूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। पर मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी, तुम सब भी शहर मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ क्यों नहीं आरव, हम जरूर आएंगे, और वे सब आपस में गले मिल गए। इस तरह आरव की छुट्टियाँ भी खत्म हो गई। जाते समय नेहा जी ने दादा और दादी जी को चिंतित होते हुए कहा, माँ बाबूजी आरव यहाँ आकर काफ़ी एक्टिव हो गया है, अब थकावट की शिकायत भी नहीं करता, पर क्या शहर जाकर ये फिर से पहले जैसे हो जाएगा? दादाजी ने कहा, नेहा बिटिया माना शहर और गांव का परिवेश बिल्कुल अलग है, पर कुछ आदतें तो हमें सुधारनी पड़ेंगी। तुम लोग आरव को समय दिया करो, उसे रात में कहानियां सुनाया करो और तुम कॉलोनी के बगीचे में उसके साथ टहला करो। जी बाबूजी आप सही कह रहे हैं। घर जाने से पहले आरव अपने दोस्तों से मिला और अपने दादाजी और दादी को प्रणाम करके सबसे विदा ली। उसकी नन्ही सी आंखों में आज हमेशा की तरह सुस्ती और उदासी न होकर मस्ती और उत्साह था, जो उसके मम्मी पापा देख रहे थे और वे बहुत खुश थे। शहर आकर आरव ने सच में अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और उसके मम्मी पापा ने भी उसे समय देना शुरू किया। धीरे धीरे आरव का चश्मा भी उतर गया, क्योंकि उसने सच में मोबाइल का उपयोग बहुत कम कर दिया था। आरव की यह व्यवस्थित दिनचर्या उसके जीवन में, उसकी छोटी सी दुनिया में एक सुखद बदलाव लेकर आई, जिसने उसे न केवल फुर्तीला बनाया बल्कि उसे प्रकृति और अपनों के समीप ला दिया। तो इस तरह हमारी कहानी भी खत्म हुई। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? सबसे पहली बात, सही सोचा आपने, हमें मोबाइल का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है। हाँ मोबाइल पर गेम खेलना आप सभी को अच्छा लगता है, पर बच्चों उसे अपनी आदत मत बनाओ। आप पढ़कर

0: बोर हो गए हो, थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो या फिर घर पर लूडो कैरम वगैरह खेला करो। दूसरी बात, बच्चों आप स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लिया करो, जिससे आप मजबूत और फुर्तीले बनोगे। तीसरी बात, बच्चों अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो, व्यायाम करिए, अच्छा हेल्दी खाइए, फिर देखिए गुलाब की सुंदर पंखुड़ियों से खिले खिले रहोगे। और चौथी बात बेटा, अपने दादा दादी के साथ समय जरूर बिताया करो, उनकी सीख आपको हमेशा काम आएगी और उनका साथ भी उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मम्मी पापा से कभी भी कोई बात मत छुपाइए, बल्कि शेयर करा कीजिए। अगर स्कूल में कोई आपको परेशान करता है, आपकी कमी को लेकर चिढ़ाता है, तो आप टीचर और घर पर जरूर बताया करिए। चलिए फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: बच्चों अभी आपने सुनी कहानी आरव की बदलती दुनिया। आपको कहानी सुना रही थी श्रीमती नंदिनी लहेजा। तो सुना ना, मोबाइल से दोस्ती अच्छी नहीं। अरे भाई, मोबाइल से हटकर भी काल्पनिक दुनिया में हम जी सकते हैं। कभी परी बनकर झूम कर तो देखिए कितना मज़ा आएगा। यूं अपने हाथों का पंख बनाकर फैलाकर आसमान से ज़मीन पर उतरने की तरह आप करके देखिए एक्टिंग, सचमुच में बहुत मज़ा आएगा बच्चों, और डांस करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आनंद ले ऐसे ही गीत का।
2: तुम कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? मुझे तुम किधर से आया है? बोलो बोलो ना, मुझे बोलो बोलो।

बच्चों अब बारी है प्रेरक प्रसंग की, और आज हम आपको प्रेरक प्रसंग में उस माँ के बारे में बताएंगे जो अनेक अनाथ बच्चों के लालन पालन के लिए जानी जाती है। बच्चों ये प्रसंग है महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकाल का, जिनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धे जिले में हुआ था। बच्चों पता है इन्होंने गरीबी, संघर्ष और अपमान सब कुछ झेलकर भी उन सैकड़ों बच्चों को अपनाया था जो अनाथ थे। कई बार बच्चों वो स्वयं भूखी रहती, लेकिन अपने सैकड़ों अनाथ बच्चों का भोजन वो जरूर जरूर कराती। वो अपने लंबे लंबे ओजस्वी और प्रेरणा से भरे भाषण दे करके चंदा इकट्ठा करती, और न केवल अनाथ बच्चों का भरण पोषण करती बल्कि उन्हें काबिल भी उन्होंने बनाया। बच्चों आपको पता है इन्होंने 1500 से अधिक अनाथ बच्चों को अपनाया, उनकी माँ बनी और बच्चे उन्हें माई कहते थे, माई यानी माँ। और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है ना वो बच्चों को माँ का सच्चा प्यार देने में लगाया और उन बच्चों के लिए कल्याण किया। तो भाई ऐसी माँ को सलाम। सामाजिक कार्यों के लिए 2021 में बच्चों इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो भाई ऐसे माँ की हम ज़रूर तारीफ करेंगे बच्चों। और ऐसी बात नहीं है कि उनके अपने बच्चे नहीं थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने ज़रूरतमंदों की, उन बच्चों की सहायता की जिन्हें आवश्यकता थी माँ की, माँ के मार्गदर्शन की। तो हम सब इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी माँ का खूब सम्मान करेंगे। अब घड़ी इशारा कर रही है, चलते हैं सभी नन्हे मुन्नों को अरुणा दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों जय हिंद।

नन्ही श्रोता सुन रही थी अपना कार्यक्रम किस लय। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल संसार। प्रस्तुत करता है धर्मदीप डोंगरे।

श्रोताओं नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सुश्री किरण पिस्दा जी से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। सबसे पहले बात करते हैं महिला T20 विश्व कप की। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में महिला T20 विश्व कप का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक होगा। 24 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेगी और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होगी, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून से करेगा। इस बार टूर्नामेंट में कुल इनामी राशि 82 करोड़ रुपए रखी गई है। ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड

0: न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका है। वही ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें हैं। महिला T20 विश्व कप में भारत का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। 14 जून को पाकिस्तान के साथ, 17 जून को नीदरलैंड के साथ, 21 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ, 25 जून को बांग्लादेश के साथ और 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 मैच खेलेगी। अहमदाबाद में होगा IPL का फाइनल। अहमदाबाद लगातार दूसरे सत्र में 31 मई को IPL के फाइनल की मेजबानी करेगा, जबकि क्वालिफायर 1 26 मई को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में 27 मई को एलिमिनेटर मैच और इसी स्टेडियम में 29 मई को क्वालिफायर 2 भी खेला जाएगा। IPL के 52 मैचों के बाद अंक तालिका कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 पर सनराइज हैदराबाद की टीम 11 मैच खेलकर 7 मैचों में 14 अंक के साथ पहले स्थान पर है। वही बात करें ऑरेंज कैप की तो सनराइज हैदराबाद के हेनरी क्लासेन IPL में 494 रनों के साथ ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे है। पर्पल कैप में
1: गुजरात जायंट्स के कगिसो रबाडा है, जिन्होंने 18 विकेट लिए हैं।
0: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप इस बार दिल्ली में आगामी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर सहित कई कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 7 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 2 अगस्त को खेला जाएगा। भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने अपने अंतिम ग्रुप बी मैच में लेबनान को 4-0 से शिकस्त दी। प्रीतिका बर्मन ने 7वें और 85वें मिनट में 2 गोल दागे। साल 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में भारत की यह पहली और पहले गोल है। साथ ही 2004 अंडर 19 चैंपियनशिप के बाद पहली बार किसी भारतीय महिला टीम ने एशियन कप के नॉकआउट में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में सोमवार को भारत का सामना चीन से होगा। यदि भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो वह मोरक्को में होने वाले 2026 फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी टेपे सिगमेंट टूर्नामेंट जीतने से चूक गए। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने टाई ब्रेकर में अर्जुन को हराकर 22 साल बाद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अपने नाम किया। आखिरी राउंड में अर्जुन अगर एंडी वुडवर्ड को हरा देते तो सीधे चैंपियन बन जाते, लेकिन मुकाबला ड्रा रहने से कार्लसन को बराबरी का मौका मिल गया। दूसरी ओर कार्लसन ने एर्दोगमस को हराकर अर्जुन की बराबरी कर ली और खिताब का फैसला टाई ब्रेकर तक पहुंच गया। टाई ब्रेकर की 2 बाजियों में दोनों खिलाड़ियों ने 1-1 जीत दर्ज की, जिसके बाद सडन डेथ मुकाबले में कार्लसन ने बाजी मार ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में अपना 100वां गोल दागते हुए अल नासर को अल सबाब पर 4-2 की शानदार जीत दिलाई। जोआओ फेलिक्स हैट्रिक लगाकर जीत के हीरो बने। इसके साथ अल नासर ने टेबल में दूसरे नंबर की टीम अल हिलाल से 5 अंक की बढ़त बना ली है। मैच के 75वें मिनट में रोनाल्डो ने साडियो माने के क्रॉस पर अपने करियर का 971वां गोल किया। यह इस सीजन लीग में उनका 26वां गोल भी रहा। इसके साथ ही रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 3 अलग अलग घरेलू लीग में 100 या उससे ज्यादा गोल किए हैं। उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 103 गोल, ला लीगा में रियल मैड्रिड के लिए 311 गोल और अब सऊदी प्रो लीग में अल नासर के लिए 100 गोल पूरे किए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलेगी। BCCI ने भारत और जिम्बाब्वे महिला टीम के बीच अक्टूबर में होने वाली द्विपक्षीय सीरीज का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 T20 मुकाबले की मेजबानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को मिली है। जिम्बाब्वे की महिला टीम भी पहली बार भारत दौरे पर आएगी। शेड्यूल के अनुसार 6 मैच खेले जाएंगे। इसमें 3 T20 मुकाबले रायपुर और 3 वनडे मैच बड़ौदा में आयोजित होंगे। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर, दूसरा 18 अक्टूबर और तीसरा 20 अक्टूबर को रायपुर में खेला जाएगा। इसके बाद वनडे

0: सीरीज के मुकाबले 23 अक्टूबर को पहला मैच, 25 अक्टूबर को दूसरा मैच और 28 अक्टूबर को तीसरा मैच बड़ौदा में होंगे। अब बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सुश्री किरण पिस्दा जी से। किरण जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए और इनवाइट करने के लिए।
0: किरण जी, जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल चुकी हैं और इससे पहले आप रायपुर में अभी जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो आयोजित हुए थे उसमें आपकी टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप?
1: सर, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था हम लोगों के लिए कि हमारे स्टेट में होस्ट हुआ और हमने गोल्ड मेडल लेके आया है। ये बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि अपने स्टेट में, अपने होम ग्राउंड में खेल के गोल्ड लेके आना, और ऐसे ही अगर मौके मिलते रहेंगे, ऐसे ही टूर्नामेंट्स होते रहेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्लेयर को हम और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे हम अपना बेस्ट दे के बाहर की टीमों और नेशनल टीम में भी खेल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और एज पूरा टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया था, इस वजह से हमने गोल्ड जीता।
0: जी किरण जी, आप अभी वर्तमान में कौन से इवेंट चल रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं?
1: सर, अभी रिसेंट में मैं इंडियन वुमेन्स लीग खेल रही हूँ IWL स्टार कर्नाटक की टीम से, जो कि 18 मई तक चलने वाली है और ये कोलकाता में हो रहा है। अभी हमने 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में 2 मैच जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ खेला है, और हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। हम होप करते हैं कि हमारा टीम और अच्छा करेगा और पॉइंट टेबल में और आगे बढ़ेगा।
0: तो इस लीग मैच में कितनी टीमें खेल रही हैं?
1: 8 टीमें खेल रही हैं,
0: अलग-अलग स्टेट की अलग अलग टीमों में। तो हाँ, आप कर्नाटक की टीम से हैं?
1: हाँ जी सर, कर्नाटक की टीम है, किकस्टार है।
0: अच्छा, तो इसमें अभी लीग मैच चल रहे हैं, तो लीग मैच के बाद में क्या होगा थोड़ा बताइए ना।
1: लीग टूर्नामेंट में ये होता है कि हम सबसे दो मैचेस खेलते हैं सारी टीमों से, तो हम सभी टीमों से दो दो बार भिड़ना है, और जिसका पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा वो विनर कहलाता है, और अगर दो टीमों का पॉइंट बराबर है या आसपास में है तो फिर फाइनल होता है।
0: अच्छा, तो अभी आप कितनी बार खेल चुके हैं?
1: यस सर, हम अभी फर्स्ट फेज तो हमारा दिसंबर जनवरी में था, और अभी सेकंड फेज चल रहा है, मतलब एक एक मैच सारी टीमों से खेल लिया है हमने। अभी जो ये वाला फेज चल रहा है उसमें हमको सेकंड टाइम सभी टीमों से खेलना है।
0: अच्छा, किरण जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप फुटबॉल की जो खिलाड़ी है, हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं, आप फुटबॉल खेलने के लिए आपको किसने प्रेरित किया था आप बताइएगा?
1: सर, मुझे प्रेरणा मिली थी अपने भाई से, वो मेरा भाई भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है और हमारा स्कूल अच्छा इन्वायरमेंट था फुटबॉल के लिए, तो हम लोग के पास ऐसे गर्ल्स की टीम तो नहीं थी, पर मेरा भाई खेलता था और मेरा भाई फिर स्कूल ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, तो मैं उसके साथ ही जाती थी खेलने के लिए। तो मेरे भाई से मुझे प्रेरणा मिली, और मैं बालोद से हूँ और बालोद में अभी लड़कियां नहीं है फुटबॉल खेलने के लिए, बट मैं अपने भाई को देखते हुए जाती थी, तो मैं लड़कों के साथ ही फुटबॉल खेलती थी, तो उससे मेरा गेम इम्प्रूवमेंट हुआ। और जब तक मैं स्कूल में थी, स्कूल तक तो मैं बालोद में ही खेलती थी अपना 12th तक पढ़ाई करके, उसके बाद जब मैं कॉलेज के लिए रायपुर आई तो फिर मैं रायपुर की टीम से खेलती थी। तो मेरी प्रेरणा मेरा भाई है, जिसको देख के मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट की।
0: जी, तो फुटबॉल में आप विशेष तौर पर क्या गोलकीपर है, क्या है बताइए?
1: सर, मैं मल्टीपल पोजीशन खेलती हूँ, जैसे कि मैंने खेलो इंडिया में मिडफील्ड खेला था और स्ट्राइकर खेला था, जब मैं नेशनल टीम जाती हूँ तो उसमें मैं फुल बैक खेलती हूँ, तो मैं मल्टीपल पोजीशन खेल देती हूँ, मतलब मेरा मेन पोजीशन तो डिफेंडर है, बट अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि मुझे आगे जाना तो मैं आगे भी खेलती
0: हूँ। जी, तो इसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर आपको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको खेलने का कब कब मौका मिला बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: यस सर, मैंने इंडिया 3 बार रिप्रेजेंट किया है, एक सैफ चैंपियनशिप में, AFC क्वालिफिकेशन राउंड में और फ्रेंडलीज में, और मुझे इंटरनेशनल मैचेस का भी एक्सपीरियंस है, और जैसे कि खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ की कैप्टन रही हूँ, और तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह खेलने का मुझे एक्सपीरियंस है, और मुझे मौका मिला है दोनों छत्तीसगढ़ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए।
0: जी जी,
1: जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल मैचेस के लिए, जैसे मैं इंडिया के सिलेक्शन, जब हमारा छत्तीसगढ़ वुमेन्स लीग चल रहा था 2021 में, तो वहां से मुझे इंडिया टीम के लिए कॉल अप आया था, जब हमारा छत्तीसगढ़ वुमेन्स लीग चल रहा था उस टाइम पे स्काउटर्स आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे मैं स्ट्राइकर खेल रही थी, तो मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, तो मुझे नेशनल कैंप के लिए कॉल अप आया था, तो 2022 में मैंने फर्स्ट इंडिया रिप्रेजेंट किया था सैफ चैंपियनशिप में, उसके बाद फिर मैंने ओडिशा FC से खेला, क्लब लेवल पे खेला था, फिर वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होते गया, तो फिर मुझे AFC

0: क्वालिफिकेशन राउंड के लिए भी मौका मिला था। तो मैंने अभी कंटिन्यू 4 बार इंडिया रिप्रेजेंट किया है। 2022-23 में नहीं मिला था, 24-25 में मुझे फिर से इंडिया खेलने का मौका मिला था। और नेशनल टीम छत्तीसगढ़ की खेलने के लिए तो मैं अभी कंटिन्यू 6 साल से छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही
1: हूँ। जी किरण जी, खेल में जैसे आप खेल रहे हैं तो आपके कोई कोच रहे होंगे, तो कोच के बारे में कुछ बताइए।
0: सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था, तो स्कूल लेवल पे बालोद में तो मेरा कोई कोच नहीं था, बट मैं जो हमारे बड़े जो सीनियर्स भैया होते हैं उनको देख के स्टार्ट उनसे सीखा था। फिर जब मैं नेशनल्स खेलने जाती थी वहाँ पे दुर्ग के कोच थे मुकेश श्रीवास्तव सर। फिर वहाँ जब मैंने फिर बालोद से रायपुर गई कॉलेज के लिए तो वहाँ पे सरिता खुजूर मैम थे। और सब जब उसके बाद जब मेरा आगे और आगे करियर बढ़ते गया तो योगेश कुमार जांगड़ा सर जो मेरे मेंटोर हैं उन्होंने मेरा साथ दिया, और मेरे को कोचिंग लाइफ में और एज अ मेंटोर उन्होंने मेरे साथ अभी तक हैं।
1: जी जी किरण जी, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेले भी है और कुछ पदक भी जीते होंगे, उनके बारे में बताइए।
0: सर जैसे कि हमने मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट हम AFC क्वालिफाई किए थे हम थाईलैंड में 2022 साल के बाद हमने क्वालिफाई किया था, और उस टीम में मैंने भी योगदान दिया था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि हमने खेलो इंडिया में अभी गोल्ड मेडल लेके आया है, और स्कूल नेशनल में भी हमने छत्तीसगढ़ के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, और ऐसे इंडिविजुअल मेडल्स तो बहुत सारे हैं। और एज अ टीम मैंने अभी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, एंड मैंने क्रोएशिया जागरेब में भी खेला है, वहाँ पे भी हमने गोल्ड मेडल लेके आया था। तो मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे मेडल्स हैं और इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत सारे हैं।
1: जी जी किरण जी, कोई ऐसी घटना हुई हो, प्रेरित हुई हो किसी को देखकर, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं से।
0: तो जैसे कि हमारे नेशनल टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे कि मनीषा कल्याण जो अभी फॉरेन में खेलती है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्लेयर है जो बाहर से खेलती है, तो उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे इंडिया से भी अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं और बाहर जाके भी खेलते हैं। तो मेरा भी एक यही मोटिवेशन है कि मैं अपना गेम अच्छा करूं और बाहर से खेलूं और अपने इंडिया का नाम रोशन करूं।
1: जी,
0: और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन।
1: आप अपने जो जूनियर जो खिलाड़ी है, जो फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि मेहनत से सब चीज हासिल हो सकता है। अगर सब मेहनत करेंगे और सपने बड़े देखेंगे तो हमेशा साकार होते हैं। तो मेहनत करते रहिए और सपने बड़े देखेंगे तो फिर भगवान भी आपका साथ देता है और आप जो अचीव करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा।
1: जी, तो अभी आप वर्तमान में जो इवेंट खेल रहे हैं
0: जी,
1: उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भविष्य में भी आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। आपने हमें जो इतना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: तो श्रोताओं, आज का अंक यहीं तक, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: खेल संसार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे धर्मदीप डोंगरे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। चित्रपट संगीत।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: चित्रपट संगीत का पहला गीत मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर की आवाजों में, शब्द रचना मजरोह सुल्तानपुरी की, संगीत रोशन का, फिल्म है दादी माँ।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
7: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: बेटा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में। शब्द रचना समीर की है, संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
8: दिमाग चार्ज कर अपना
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
8: देखा
7: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
4: अब क्या करोगे
7: फ्री वाईफाई है ना
8: बुद्धू सुधर जा
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: दादी कौन सा प्लांट है?
6: टैंजरीन। बहुत

0: मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
1: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया।
0: ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ, 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
5: ना, पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया,
5: जाओ भाई।
7: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शंकर महादेवन की आवाज़ में, शब्द रचना प्रसून जोशी की, संगीत शंकर एहसान लॉय का, आवाज़ शंकर महादेवन की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सीमा कौशिक और साथी। इनके स्वर में पहले सुनते हैं ये गीत।

सीमा कौशिक और मोतीलाल सूर्यवंशी के गाए इस गीत के बाद लीजिए, अब सुनिए सीमा कौशिक के स्वर में ये पारंपरिक गीत।

0: लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थी सीमा कौशिक और साथी आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला तीसरा स्थान। और प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। श्री शाह देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर में चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बागीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत

0: सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। नगरी प्रशासन विभाग ने कई वरिष्ठ इंजीनियरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार रायपुर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह को नगर निगम बिलासपुर भेजा गया है। वहीं कवर्धा के कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम को दुर्ग स्थित संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ब्रजेश श्रीवास्तव, ललित कुमार त्रिवेदी, सीबी परगनिया, हेमंत कुमार साहू, चंद्रशेखर सारथी और गगन वासन का भी तबादला किया गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपति से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आज सुबह 10:30 से 11 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। कल भिलाई में अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ वैशाली नगर के विधायक ऋकेश सेन ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सेंटर भिलाई दुर्ग क्षेत्र की महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा या अन्य किसी भी संकट के दौरान पीड़ित महिला को भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आज प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर 1 तक रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला 3रा स्थान और प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत।

बागी फिल्म का ये गीत था अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज़ों में। गीत लिखा संजीव चतुर्वेदी ने, संगीत अमाल मलिक का था। कार्यक्रम का अगला गीत मैरी कॉम फिल्म से, आवाज़ सुनिधि चौहान की, गीत प्रशांत इंगोले का, संगीत है शशि सुमन का।

मैरी कॉम फिल्म का ये गीत था सुनिधि चौहान की आवाज़ में। शब्द रचना प्रशांत इंगोली की थी, संगीत था शशि सुमन का। कार्यक्रम का अगला गीत पलक मुच्छल की आवाज़ में, गीत मनोज मंतशिर का, संगीत अंकित तिवारी का, फिल्म है अय्यारी।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 12 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटा गांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। कार्यक्रम का अगला गीत दे दे प्यार दे फिल्म से, आवाज़ अरिजीत सिंह की, गीत कुमार का, संगीत है रोचक कोहली का।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कुमार का लिखा गीत। संगीत रोचक कोहली का था, फिल्म थी दे दे प्यार दे। आइए अब सुनें कबीर सिंह फिल्म का गीत, विशाल मिश्रा की आवाज़ में, संगीत मनोज मुंतशिर का, गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत विशाल मिश्रा का है।

कबीर सिंह फिल्म का ये गीत था विशाल मिश्रा की आवाज़ में, शब्द रचना मनोज मंतशिर की थी, संगीत था विशाल मिश्रा का। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सनम तेरी कसम, इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए पद्मश्री के लिए चयनित गोड़बोले दंपति से ली गई भेंटवार्ता। ये कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस पॉडकास्ट में मैं नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। मीलों मुश्किल दुर्गम पगडंडी पथरीले और धूल भले रास्तों से सफर करते हुए गांव-गांव तक पहुंचना, स्थानीय बोली में संवाद और 1 लाख से भी अधिक लोगों का उपचार, ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोड़बोले और सुनीता गोड़बोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: रामचंद्र सर आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे? मूल रूप से तो आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
2: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ। जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहा था तो ये 1980 की बात है करीब करीब, तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्जर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहाँ से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्जर की ये जो कहानी है वो मैं कहीं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था, तो उसका जीवनी उसके आत्मकथन है वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के

0: बाद मुझे ऐसा थोड़ा सा स्पर्श हुआ मेरे मन में कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है कि जो आदिवासी समाज के लिए जीवन भर के लिए वहाँ जाके काम करे। वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश आमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं
1: जी
0: वहाँ कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने एक विचार किया। वहाँ मिला मैं उनको, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है, तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहाँ मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया
1: जी
0: और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, उनकी गरीबी, पहाड़ी क्षेत्र में उनका दुर्गम इलाके में रहने का उनका जो जीवन है, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं। और तो वहीं से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा।
1: जी तो
0: ऐसा
1: फिर
0: मेरा जो
1: बस्तर,
0: प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे हो
1: तो फिर बस्तर
0: गया।
1: आपका कैसे आना हुआ?
0: फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र के बाहर ज़्यादा समस्या है, वहाँ जाके काम करना चाहिए। तो फिर मेरे मन में यह हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने
1: जी
0: जाके अधिकारियों को बताया, 89 की बात है ये।
1: जी तब सबसे पहले उस समय बस्तर पहुंचे आप, पहली
0: हाँ,
1: बार
0: तो
1: आए
0: फिर
1: तब आप?
0: 90 में हमारा शादी हो गई और
1: जी
0: 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग, और
1: जी
0: तब से हम लोग बारसूर में है
1: रह
0: समझ
1: रहे हैं
0: लीजिए
1: जी।
0: तभी से।
1: सुनीता जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था, उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के। तो ये शादी और आपका ये कमिटमेंट कि आपको आदिवासी क्षेत्रों में ही काम करना है, ये कैसे हुआ?
2: इसका दो प्रमुखता से कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है जो संवेदनशील है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण, वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालयीन जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या छात्र संगठन से संपर्क आया, उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग, और उनकी अवस्था क्या है, किस प्रकार से जीना जी रहे हैं, और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है, अन्न वस्त्र और मकान कहेंगे तो उतना भी मतलब उनको नसीब नहीं है, तो वो सब बताते थे। केवल मैं मेरा करियर मेरा नौकरी इतना ही ना सोचते हुए इस प्रकार से कुछ काम हमें करना चाहिए, वो सब देख के मेरे मन में विचार आया था कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकती
1: और
2: हूँ।
1: ये शादी से पहले आपने सोच लिया था?
2: नहीं, शादी से पहले तो ये सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ सामाजिक काम करना है। बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है, तो वैसे ही हमारे जो मेरा मायका का घर है वहाँ
1: जी
2: ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदा ताई करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है, आओ हमारे साथ, जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है, तो आप वहां जाके आपके मन में जो काम की इच्छा है वो कर सकते हो, आप
1: जी
2: देख के तो आओ कम से कम इस प्रकार से। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा, और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गाँवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ।
1: और आपकी
2: और ये
1: शादी की क्या
2: तो नहीं,
1: कहानी
2: शादी के
1: है?
2: पहले भी मैं काम
1: क्या
2: करती ही
1: आप
2: थी, 3 साल
1: जी
2: काम किए, तो
1: पहली
2: उसमें
1: बार
2: ये
1: कब मिले
2: विचार
1: डॉक्टर
2: पक्का हुआ।
1: रामचंद्र?
2: फिर घर से प्रेशर होने लगा कि भाई मतलब बात होने लगी कि आप लड़की हो शादी करना चाहिए वगैरह, तब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे कार्यकर्ता से ही शादी करना है। मेरे संगठन को भी, वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन को भी मैंने बताया कि मुझे शादी करना है, तो आप कार्यकर्ता कोई है तो देखिए। तो फिर घर के और संगठन के दोनों ने मिल के हुई वो सब ढूंढा, फिर डॉक्टर गोडबोले जी का नाम सामने आया,
1: जी
2: हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी थे, तो
1: जी
2: हम आपस में बातचीत किए, जैसा कि सुझाव दिया गया कि आप बातचीत करके आप लोग तय करो कि भाई शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं,
1: जी
2: और उसके बाद फिर ये तय होने के बाद फिर फरवरी 1990 में शादी हो गई।
1: जी और फिर उसके बाद आप सीधे बस्तर आए
2: हाँ, उसके बाद फिर जैसा रामचंद्र जी के पीछे पीछे फिर
1: चलते
2: सीता भी आ
1: गए।
2: गई।

0: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियाँ शुरू की। अबूझमाड़ तो उस समय और भी दुर्गम रहा होगा, आज भी अनसर्वेड एरिया है अधिकतम हिस्सा उसका। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
1: अबूझमाड़ में जाना आना तो काफ़ी कठिन ही था उस समय। फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, इसलिए हमको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे। देखने के लिए आया था बस्तर, उस समय भी अबूझमाड़ ही जाके आया। थुलथुली कोलंकाल जो गाँव अभी हम लोग सुना है, वहाँ तक मैं उस समय घूम के आया था। तो अबूझमाड़ तो देखने से ही पता चला कि ये काफ़ी कठिन है, और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं। तो बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहाँ ठीक हो जाए वहाँ तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना, ये हम लोगों ने तय किया था। इसलिए अबूझमाड़ से पेशेंट आते थे, लेकिन प्रश्न ये था, हम अबूझमाड़ में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे ले जाके, तो उनका आना ही इतना कठिन था। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कभी कभी 6 बजे पेशेंट निकला है, वो पेशेंट शाम को 6 बजे हमारे पास आ रहा है, 12 घंटा उनको पैदल
0: हाँ
1: आना पड़ता है।
0: हाँ
1: ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई कि आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गीदम है, मैं 4-4 महीना में गीदम नहीं आता था, मैं बारसूर में ही बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है। ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफ़र करना है, तो एम्बुलेंस, ड्राइवर, डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे।
0: जी
1: इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है। तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है, और पेशेंट को हम जैसा करेंगे ट्रीट करेंगे, और नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, तो 1.25 घंटा में उसको महारानी में जाके पहुँचाना है। यह हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा ही हो गया था वो, तो
0: जी
1: इसलिए
0: परिस्थितियों को
1: कई
0: देखते हुए
1: कई
0: बना गया
1: पेशेंट
0: था।
1: वो हम जान बचा पाए। हमारे पास आने के बाद जब मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट हमको मिलेगा, अगर झटका आ रहा है, सेरेब्रल मलेरिया की केस है, हम जितना कर सकते उतना कर लेंगे, 1.25 घंटा में उसको कैसा भी करके महारानी में पहुंचाना है। अगर हम उनके लिए आए हैं तो जो भी खतरा है मोल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और
0: जी
1: हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अंदर एक विश्वास रहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ
0: और वो
1: कि
0: बहुत
1: जिनको
0: जरूरी भी था उस समय,
1: जरूरी था।
0: वरना अगर वो मदद नहीं
1: बिल्कुल,
0: मिलती तो उनके उनके
1: कहाँ कहाँ
0: जीवन पर
1: जाएंगे, वो
0: संकट
1: क्या
0: था।
1: करेंगे।
0: जी, आपने बोली भी सीखी, गुंडी भी सीखी और गांव का भी
1: हाँ,
0: विजिट
1: मुझे
0: किया।
1: दवाखाने में जितना जरूरी है उतना गोंडी मुझे सब आता है।
0: जी
1: मेरी पत्नी को तो अच्छा फ्लुएंट आता है, क्योंकि वो उनके साथ ही रही, जो 24 घंटा उनके साथ रही, तो
0: जी
1: उसको गोंडी एकदम बढ़िया आ जाता है।
0: अच्छा मैडम, आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबूझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा और कैसे देखा कि जो सिस्टम में काम हो रहा है उसकी एक सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा मनमाने तरीके से कहीं कोई अंदर जा नहीं सकता, तो आपने क्या देखा कि वहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियाँ
1: महिलाओं
0: हैं?
1: का स्वास्थ्य का तो उस समय तो बहुत ही हालत खराब थी, क्योंकि वो क्षेत्र ही पूरा, आपने जैसा कहा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। इसीलिए किसी को भी आना, और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं की, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वहाँ से आना ही उनके लिए एक बहुत ही कठिन बात थी। कोई गर्भवती महिला है तो उसको 6-6, 7-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी,
0: जी
1: यानी उसको तखत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है कभी कभी, कम से
0: जी
1: कम दाल चावल दे दो या कुछ पीने के लिए दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं।
0: जी
1: तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, क्योंकि हम जैसा अस्पताल तो चलता ही था, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता महिला थी, बहनें थी, और मैं, हम लोग तो गाँव गाँव में जाते थे, तो गाँव गाँव में ये सभी समस्या आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रखते थे।
0: कितनी जागरूकता लगता है आपको, जो महिलाएं हैं
1: अभी
0: खास
1: तो
0: तौर पर
1: है,
0: समाज
1: अभी
0: की
1: तो
0: जागरूक हैं
1: है,
0: स्वास्थ्य को
1: अभी
0: लेकर?
1: बहुत सारा है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
0: जी
1: पहले तो बारसूर में अस्पताल भी ढंग का नहीं था, केवल सरकारी डॉक्टर के पास जाना है तो बस PM जब कर

0: रखना है पोस्टमार्टम तभी जाना है, यही मान्यता थी। पूरा के पूरे लोग हमारे यहाँ ही मतलब कल्याण आश्रम के ही अस्पताल में आते थे। अभी भी बहुत जगह जो पहुंच विहीन गांव अभी भी है, तो ऐसे गांव में यही मान्यता है कि जैसे हमारे आजू बाजू में आदिवासी जो है ना, वो एक निसर्ग का भाग है ना
1: जी,
0: नेचर का वो एक भाग है, जैसे बाकी पशु पक्षी प्राणी है ये है, तो वैसा ही वो मनुष्य है वहां पर
1: जी।
0: और उनकी समझ भी वैसा ही थी कि भाई हमको तो नेचर के साथ जीना है, जो अच्छा रहेगा वही सर्वाइव होगा, जीवित रहेगा। तो हमारे चार पांच बच्चे है, आठ

0: मनुष्य है वहाँ पर
1: जी।
0: और उनकी समझ भी वैसा ही थी कि भाई हमको तो नेचर के साथ जीना है, जो अच्छा रहेगा वही सर्वाइव होगा, जीवित रहेगा। तो हमारे 4-5 बच्चे है, 8 बच्चे है, उसमें से 4 है आपके, फिर बाकी का 4 का क्या हुआ, वो नहीं है, 2 के बाद ये तीसरा मर गया, फिर और 2 हो गए, फिर 2 मर गए, मतलब ये हिसाब उनको बताने में भी ऐसा नहीं लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, वो सहजता से बताते थे। तो ये सब देख के हमें लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इस प्रकार से अगर इनके समझ में हमको बदलाव लाना है तो सबसे पहला है कि महिला ही है कि जो ये बदलाव की वाहक है। तो उसको हमने फिर हाथ में ले लिया, भाई ऐसे महिलाओं के हमने समूह बनाए, फिर कुछ महिलाएं वहां पर थोड़ी जागरूक थी, जागरूक इन द सेंस कुछ आध्यात्मिक संप्रदायों से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे महिलाएं साफ सुथरा रहना है, तो ये सब हमने धीरे धीरे उनके शिविरों में ऐसा जा जाके बता के, हमारी 2-2 जो बहने थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहने जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है, अपने बच्चे को भी जो बीमारी हुई है उसको कैसे बताना यहाँ तक भी सिखाना पड़ता था।
1: अच्छा जी, अच्छा
0: मतलब जी। मैं एक उदाहरण बता दूं कि एक बच्चा आया था, मतलब माँ लेके आई थी उसकी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का होगा, गोद में उसको बिठाई, ये जांच कर रहे थे, और जांच करते समय उसने बताया कि इसको दस्त हो रहा है, 8-10 दिन हो गया ऐसा वैसा। फिर इन्होंने पूछा बुखार है क्या, ये है क्या, जो भी उससे संबंधित जो भी पूछना था जानकारी पूछ लिया, फिर उसको इंजेक्शन देना था या और कुछ जांच करना था। तो जांच करते समय वो ऐसा पल्लू रखी थी उसके सिर पर, वो पल्लू हट गया, हटने के बाद देखते हैं तो क्या वहां पर पूरा घाव सिर में, और उसमें कीड़े हुए थे, और वो महिला उसके लिए नहीं आई थी। ये मुझे आश्चर्य लगा। उसको पूछा मैंने कि आपको ये नहीं लग रहा है कि ये भी है बीमारी? हाँ बीमारी है, लेकिन वो गुनिया के पास हम जाते हैं। मतलब उसने इतना सहजता से जवाब दिया कि 2 साल के बच्चे को यहाँ इतना घाव है, उसमें कीड़े हुए हैं, उसकी कोई जानकारी, मतलब वो गंभीरता है ये जानकारी नहीं है, और वो दस्त खाली दस्त हुआ है, बुखार आ रहा है, उसके लिए वो बता रही। तो ये जो ऐसे धक्के मिले ना हमको एक एक अनुभव के, अभी भी हमको ऐसे इस प्रकार के लोगों को इतना बता रहे हैं, फिर भी कुछ गाँवों में अभी तक ये बातें पहुँची ही नहीं है।
1: जी डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा अबूझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए? तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए।
2: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है। तो बीमारी अबूझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे, तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है, और उसको डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, ऐसे 3 बीमारी थी उसको, इस पेशेंट को। फिर पैसा नहीं उनके पास, वो फिर बोले कि हम लोग पैसा ले आएंगे, फिर उन्होंने इमली बेचा और 1,000 रुपये लेके आए। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफ़र किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। तो वो गंभीरता नहीं उसी चीज़ की कि हम लोग इतना सीरियस केस है, तो जीवन के प्रति देखने की जो गंभीरता है वो नहीं है। और अबूझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। अबूझमाड़ में मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी अभी ही काफ़ी हद तक क्षेत्र खुला है, और अब देख रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लंबे समय से माओवाद का भी प्रभाव रहा, तो कभी उस वजह से कोई मुश्किल आप लोगों को पेश आई हो, ऐसा कभी कोई वाकया हुआ क्या?
2: कभी नहीं हुआ
1: जी,
2: कभी नहीं हुआ। हम लोग, इसका कारण ये हो सकता है, कोई भी संगठन के लोग हैं संवेदनशील क्षेत्र में, वो आदिवासी समाज को पूछते होंगे कि भाई ये लोग कौन है, हमको पूछे बगैर उनको ही पूछते हैं। तो हमारा कोई नॉन पॉलिटिकल और एकदम शुद्ध हमारा सेवा कार्य है, कुपोषण के बच्चों को और जो प्रॉब्लमेटिक पेशेंट है उनको जगदलपुर ले जाके ठीक करवा के लाना, ये हमारा सेवा का क्षेत्र है। शायद इसलिए हमको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और हमारी जानकारी सबको पास रहती है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये भी सुना है कि काम अच्छा है तो करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, ये भी हम लोगों ने सुना है।
1: जी जी, आपने देखा महिलाएं काफ़ी ज़्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया?
0: जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गाँव में जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहाँ की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है

0: उसको समझ रही है, टीकाकरण है, वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी गुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हरा कोडेर वगैरह गाँव है, वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं। वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है उसके अंतर्गत होते हैं, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है
1: अभी भी, ये जागरूकता कम
0: बस
1: है।
0: कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है कि चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो
1: जी,
0: और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी गुनिया के पास ही जाते थे। और कुछ क्षेत्रों में गुनिया भी हमको सहयोग कर रहे हैं
1: कर रहे हैं,
0: आप जाओ।
1: अच्छा, वो भी जागरूक हुए
0: मतलब, हाँ वो उनमें वो जागृति आई है कि भाई मलेरिया है वो तो तुम जांच करके आओ, उसके बाद मैं दवाई दूंगा
1: जी। डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
2: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम मास इस नाम से अलग से स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबुझमाड़ या अबुझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया, और बाकी क्षेत्र में भी है जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, तो वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं और फिर उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं। उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की, और एक चिवड़ा बनाते हैं कि वो चना मूंगफली तेल हल्दी मुरा, जो मुरा ये सब चिवड़ा ये देते हैं। उसके बाद हम लोग तेल दाल मिरी और हल्दी ये सब कुछ है, तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को। ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, ये भी हम लोग उनको देखते हैं। मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है, वो मच्छरदानी का भी प्रावधान रखते हैं हम लोग। अगर मच्छरदानी नहीं है तो मच्छरदानी देंगे, लेकिन बच्चे को मच्छरदानी में ही सुलाना है। तो हम उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। यहाँ तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है, अगर रिपोर्ट आया कि नहीं मिल रहा है तो हम मच्छरदानी भी भेजेंगे। इतना तो करने के बाद 6 महीना प्रयास करने से हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर चला गया तो 10 में से 8 बीमारियां बंदी हो जाती है। तो उनको मंत्री के पास जाना, सरकारी अस्पताल में जाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, मलेरिया, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है
1: जी। तो इसके लिए कितने लोगों की टीम है आपकी और कितने गांवों को आपने कुछ सेलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं?
2: हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया, 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए है, माने 80 बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोग 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, और इसका विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं। तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोगों को ठीक करना है। हमारा कुपोषण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मलेरिया भी हमारा शत्रु है, उससे हम लोगों को पार होना है। और तीसरा शत्रु हम लोग जो बोलते हैं कि गुटखा गुड़ाखू पोगो सल्फी लन मंदा, इससे दूर रहना ही है। तो ये भी अलग से हम लोग बच्चों,
1: मतलब नशा मुक्ति के लिए भी आप लोग प्रयास कर,
2: हम शपथ लेते हैं बच्चों को स्कूल में जाके, बच्चों से शपथ लेते हैं कि हम इन नशीली चीजों को हम कभी स्पर्श नहीं करेंगे। जो दोस्त आपको भोजन खिला रहा है, केला खिला रहा है, सब्जी खिला रहा है, फल खिला रहा है, मछली अंडा खिला रहा है, वो आपका दोस्त है। जो आपको पोगो गुटखा गुड़ाखू सल्फी लन मंदा पिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं है। आदिवासी युवक लोगों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है, कई बच्चे मुंह के कैंसर के शिकार हो रहे हैं, और हम साल भर में कम से कम 6-8 लड़कियों लड़के या बड़े लोगों को हम लोग मेकाहारा में ले जाते हैं रायपुर में
1: जी,
2: और वहां जाके उसका इलाज करवाते हैं। जो हमारे इंटरव्यू सुन रहे हैं वो जंगल के जो आदिवासी है वो भी सुने कि ये गुटखा गुड़ाखू पोगो ये आपके लिए शत्रु है, इसका सोच के समय पर ही नशा से मुक्त हो जाए
1: जी। आपको क्या लगता है क्या महिलाओं में भी ये चलन है सुनीता जी उस तरह?
0: हाँ, महिलाओं में है ना, गुड़ाखू
1: कैसे जागरूक करते हैं,
0: खाते हैं तंबाकू भी खाते हैं ना कोई परसेंटेज तो अभी वो उसका तो ये इतना हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन महिलाओं में भी ये है। और मुझे इसका दुख है कि इसमें शिक्षित लड़कियां भी है, मतलब किशोर वयीन लड़कियां भी, तुम स्कूल में जाते हो तो तुम फिर गांव में वापस आने के

0: बाद फिर गुड़ाखू क्यों करते हो, जबकि आपको इसके सबका तो वहां तो अनुमति नहीं मिलता है हॉस्टल में जब रहती है या ये, लेकिन फिर भी घर में वापस आने के बाद या फिर वो उनकी पढ़ाई जब छूट जाती है तब फिर वो अपने ही पुराने ढर्रे पर बोलेंगे जैसा वैसे आ जाती है। तो
1: जी
0: इसमें ये जहर है ये उनको बताने का समय आ ही गया है। मतलब
1: जी सुनीता जी, आप और आपके पति बारसूर में रहते हैं, लंबे समय आप लोगों ने ऐसे क्षेत्र में रह करके आपने जीवन बिताया है, कभी शहरी जीवन की इच्छा नहीं हुई आपको?
0: नहीं, शहरी जीवन की इच्छा नहीं हुई। अभी जब भी कभी हम शहर में जाते हैं तो थोड़ा दिन के लिए जाते हैं, फिर हमको बारसूर की तुरंत याद आती है, जंगल की याद आती है। और यहाँ जो सुकून है, भले वो चैलेंजेस है बहुत सारी, हमको भी निराशा का इसका सामना करना पड़ता था, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी है इसमें स्वाभाविक रूप से, लेकिन एक जो मन में लिया है उसको तो हमको करना है, और वही जीवन में अब हमको रुचि है कि नहीं। हम आखिरी में जो हमको आनंद देते हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे प्रसंग है ही कि अरे चलो इनको ठीक किया तो वो बच्चा आज ठीक होके हमारे सामने चलने लगा, या उसकी माँ भी आनंद से बताती है कि नहीं देखो आपने जो ऐसा ऐसा इसको ठीक किया था ना, ये अभी बड़ा हो गया है, जब वो बाजार दिन लेके आती है तो अच्छा ही लगता है।
1: जी, रामचंद्र जी, आप दोनों ने आजीवन निस्वार्थ सेवा की है इस क्षेत्र में, बड़ा त्याग किया है जीवन का, तो अब आप जो नई युवा पीढ़ी है जो शहरी क्षेत्रों में है, इन विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में सुनती है, उनको लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे?
2: पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने किया ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मेरे अंदर जो कोई एक भगवान बैठा है वो मेरे से करवा रहा है। दूसरी बात, मैं इसका एक अनुभव, मेरे जितने युवा लोग हैं, ज़्यादा करके जो जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के जो युवक लोग हैं, युवतियाँ लोग हैं, मैं उनको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोग ये काम कर रहे थे, हमारे सामने ऐसा कभी नहीं लगा था कि हमको केंद्र शासन से कोई पद्मश्री मिलने वाला है। हमको कभी, हमने सोचा भी नहीं था, कभी हमने मन में इच्छा थी ऐसे भी नहीं है, हम अपना काम करते रहे करते रहे। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अच्छा कर्म का फल आपको अच्छा मिलता ही है, ये केवल मैं सुनता था, पढ़ता था, लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूं कि जो हम लोगों ने काम किया उसका फल हमको हमारी भारत माता ने हमको ये दे दिया है। ये एक प्रकार की माँ बच्चे को जो मीठा उपहार खिलाती है, उसी दृष्टि से मैं देखता हूँ कि भारत माता और मैं, हम माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो भारत माता ही हमको ये पुरस्कार के रूप में हमको उपहार खिला रही है, इसलिए उसका अलग आनंद ही है। अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलता ही है, ये मैं अपने जीवन से, अपने अनुभव से, मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ।
1: जी सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों की नई युवतियों को भी, और जो युवतियां हैं उनको भी, और जो शहरी क्षेत्र में अभी पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए
0: हाँ,
1: भी?
0: दोनों के लिए भी एक है कि अपने समाज के बारे में हमें सोचना चाहिए,
1: जी
0: जो स्वयं जो जनजाति समाज से है उनको तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि जो भी बदलाव होता है वो समाज में जो विचार करने लायक युवक किशोरी वयन से वो जो सामने आते हैं और विचार करते हैं, कुछ उसमें कृति करते हैं उसके लायक, तभी वो बदलता है। क्योंकि हम जाके बताएंगे कि भाई आपने ये क्यों नहीं सोचा, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपने ऐसा करना चाहिए, ये बात एक अलग होती है। और मैं खुद उस गांव की हूँ और मैं स्वयं अपने गांव को अगर समझाऊंगी तो उसका असर अलग ही होता है। इसलिए वो ये जनजाति समाज में इसको सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया है, बाकी बहुत सारे हैं, रील्स बनाना है, ये करना है, वो सिनेमा देखना है, ये सब है, लेकिन इसके बाद भी मेरा गांव, मेरा परिवार, मैं तो स्कूल में आ गई लेकिन मेरा परिवार घर में कैसा है, मेरी माँ, मेरी भाभी या मेरे बहन अगर वही कुपोषण में, एनीमिया में, जो एनीमिया से जूझ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और मैं यहाँ पर हॉस्टल में रह के खाली पैसे की मांग कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, या पढ़ने में भी मैं अच्छी हूँ, तो भी उसका उपयोग नहीं है।
1: जी
0: मतलब लोकमान्य तिलक जी बोलते थे कि आपके विद्या का उपयोग अगर आपके देश के लिए ना हो तो वो विद्या का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार हो गया। इसीलिए हमने जो पढ़ा है स्कूल में तो उसका उपयोग हमें गांव में अपने समाज के लिए करना चाहिए, शुरुआत हमेशा परिवार से ही होना चाहिए। और जो युवक शहर में रह रहे हैं उनको तो अपने समाज को देखना है, भाई मैं अकेला आगे गया तो जैसा परिवार का कोई एक व्यक्ति अकेला गया तो परिवार आगे गया नहीं बोलता है ना कोई, परिवार के अगर कोई कमजोर है, पीछे है, तो वो बोलेंगे ही। उसी प्रकार है कि भाई देश में कुछ समाज घटक ऐसे है कि जिनको, जो वंचित है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बुनियादी ज्ञान से वंचित है, लेकिन उनमें भी कुछ विजडम है, कुछ अच्छी बातें हैं, उसको जीवित करते हुए हम क्या कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे जीवन का कुछ काल अगर ऐसे गांव में

0: या ऐसे परिसर में अगर हम बिताएंगे तो हम तो बोलते हैं कि स्वागत है। गांव में जाके काम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर हल्बी गोंडी ये जो उनकी जो स्थानीय भाषा है वो सीखनी पड़ती है, लेकिन स्कूलों में जो हमारा काम चलता है उसमें हमें जरूर ये जो निवृत्त शिक्षक है या कोई भी जो रुचि रखता है कहानी बताने में, गीत बताने में, कुछ खेल लेने में, तो वो जरूर आए हमारे पास। हम स्कूलों में उनका कार्यक्रम रखेंगे, हमारी ओर से कुछ हम प्रशिक्षण भी देंगे कि भाई कैसा होता है, क्या करना है, और
1: जी
0: 15 दिन भी रहेंगे तो 15 दिन में 7-8 स्कूल तो आराम से
1: जी
0: हो जाते हैं। ऐसे 15 15 दिन में दो दो चार चार लोग आते जाएंगे तो ये
1: जी
0: होना चाहिए। मेरा और एक विनती है छत्तीसगढ़ वासियों को कि छत्तीसगढ़ के जो शहर है वहाँ के युवक जो है वो हमारे क्षेत्र में बहुत कम आते हैं,
1: अच्छा
0: बाहर
1: जी
0: के राज्य के बहुत
1: अच्छा
0: सारे आते
1: अच्छा
0: हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: तो यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को मैं जरूर आह्वान करूंगी और क्या आप जरूर बस्तर आइए, देखने के लिए टूरिज्म के लिए तो आते ही हैं, लेकिन कुछ एक अपना अच्छा यहाँ के लोगों के साथ जीवन कैसा ये करना है उसके लिए भी जरूर आइए।
1: तो ये थे सुनीता गोडबोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है। और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है, उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्रेरणापूर्वक बातें लोगों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद। हमको
0: आप
2: भी
0: आकाशवाणी
2: आकाशवाणी
0: का
2: ने
0: भी
2: यहाँ बुलाया
0: धन्यवाद
2: तो
0: और
2: आकाशवाणी को
0: सभी
2: हम
0: श्रोताओं को
2: धन्यवाद,
0: भी धन्यवाद।
2: श्रोताओं को भी धन्यवाद देते।
3: अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंट वार्ता। प्रस्तुति थी प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है, आइए समाचार सुने।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 9 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी गौरवमयी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक

0: क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज आंधी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपमालयी क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना है। आज गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का भी अनुमान है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में भारत की अक्षिता, अंजी, सोनिया और तन्वी ने फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा हंशिका अत्री, सुनैना और भूमिका ने भी खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। तन्वी ने 64 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की यास्मीन जौत खानोवा को हराया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक अन्य मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है राजकुमार व्यास।

0: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं मगल रोड भैंस मुंडी से पूजा साहू बोल रही हूँ।
0: पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या करते हैं पूजा जी आप?
1: मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ
0: जी। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। तो गर्मी के मौसम में किस प्रकार से आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं?
1: वही पानी धूप से बचने के लिए मतलब हेलमेट वगैरह लगाकर स्कार्फ को बांध कर वैसे जाते हैं घर से बाहर
0: जी।
1: और घर से बाहर लोग बहुत कम ही चलते हैं, धूप बहुत ज्यादा है तो अभी
0: जी। तो गर्मी के मौसम में अपना और सेहत का खास ख्याल रखिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: अभी आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज में कोई भी प्यारा सा गीत सुना दीजिएगा।

0: जी, बहुत दिनों बाद कॉल लगा है, बहुत खुशी हो रहा है।
1: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, आपकी फरमाइश पर आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत।

0: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूं। सर, बहुत दिनों बाद आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है सर।
0: जी, आपकी खुशी को हम महसूस कर सकते हैं। और बताएं, अभी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं और गर्मी का मौसम भी है, काफी तेज गर्मी भी पड़ रही है, क्या कुछ विशेष इस गर्मी के मौसम में आप कर रहे हैं?
1: देखिए सर, गर्मी ठंडी बरसात तो खैर होता है और हम उनका

0: मौसम का मजा लेते हैं, सभी मौसम का अपना अलग मजा होता है
1: जी।
0: और गर्मी काफी बढ़ रही है सर, लेकिन गर्मी से हम बचने का उपाय भी कर रहे हैं
1: जी।
0: और इस मौसम में ना जो फल है, जो ठंडे ठंडे जो पेय पदार्थ रहते हैं ना सर जी, शरबत है, नींबू पानी, खास लस्सी वगैरह, तरबूज, खरबूज, आम, उसका फलों का आनंद ले रहे हैं सर अभी।
1: आपके गाँव में भरपूर फल उपलब्ध हो जाते हैं?
0: जी सर, फल वगैरह तो वैसे आसानी से मिल जाते हैं और पानी की भी अभी उतने भी किल्लत नहीं हो रही सर जी, हमारे गांव में वैसे पानी से भरपूर है सर
1: जी। तो बताएं मानवेंद्र जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: अरे मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुना देना सर जी,
1: जी।
0: तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदूर।
1: आपकी भी आवाज बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, और मोहम्मद रफी जी की आवाज में लीजिए, सुनिए ये गीत
0: जी। शुक्रिया।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं चापा कुसमुंदा से चंद्रराम यादव बोल रहा हूं सर।
0: चंद्रराम यादव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं चंद्रराम जी?
1: रोजी मजदूरी करते हैं सर।
0: आकाशवाणी के गीत भी सुनते हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रम भी सुनते हैं?
1: सुनते हैं सर, पुराना सोता हूँ।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको चंद्रराम जी बहुत अच्छा लगता है आकाशवाणी का?
1: यही फोन इन फरमाइश और हेलो चौपाल।
0: कौन से गीत की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: वो लता मंगेशकर जी की आवाज में है सर
0: जी।
1: फिल्म का नाम है सौदागर और तेरा मेरा साथ रहे।
0: आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो नमस्ते सर।
1: नमस्ते, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
0: ग्राम मोगला तहसील देवरी जिला सागर से रघुवीर पंडा बोल रहे हैं। एमपी
1: रघुवीर पंडा जी, कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले आप हमें बताएं कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं और बातें करेंगे आपकी इस फरमाइश के बाद। मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गीत। पंडा जी, आपके क्षेत्र में गर्मी कैसी पड़ रही है?
0: गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही सर, 42-43 तापमान।
1: क्या कुछ उपाय आप करते हैं गर्मियों में अपने परिवार वालों की सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं?
0: वो तो ऐसा है कि जो खेत का काम वो सुबह सुबह निपटा लेते हैं, 9 बजे घर आ जाते हैं।
1: जी, खेती किसानी करते हैं पंडा जी आप?
0: जी सर।
1: किस प्रकार की फसल की बुवाई करते हैं अभी खेतों में?
0: अभी तो मूंग वही है।
1: जो फसल उगती है उन फसलों में पानी का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो पानी की किसी प्रकार की कोई किल्लत उस तरफ उस क्षेत्र में है?
0: नहीं वैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ सिंचाई के लिए बहुत कम है, सुबह शाम करते हैं ठंड में।
1: रघुवीर पंडा जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
0: नमस्ते सर।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बिकापार बालों से चिंताराम यादव बोल रहा हूं।
1: चिंताराम यादव जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
0: जी।
1: क्या करते हैं चिंताराम जी?
0: तो रिटायरमेंट आदमी हूँ
1: जी। तो रिटायर होने के बाद में जीवन की दूसरी पारी आपकी शुरू हो चुकी है, और गर्मी कैसी पड़ रही है चिंताराम जी आपके क्षेत्र में?
0: बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है सर अभी, और बहुत नीचे तो पानी भी रहेगा हमको, तो अभी आज से कल से फिर गर्मी लगना चालू हो गया है।
1: तो सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ विशेष उपाय करते हैं इस प्रकार के मौसम में?
0: ख्याल के लिए धूप में जैसे निकलना है तो गमछा पकड़ो
1: जी,
0: और जरूरत पड़े तभी बाहर निकलो, और पानी में बोतल में पानी रखो
1: जी,
0: अपने घर का पानी यूज करो, होटल वास्ता के पानी ना पियो, तो जाके सेहत ठीक रहेगा। और गर्म खाना खाओ, हल्का भोजन लो।
1: बिल्कुल सही। इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: राजा हिंदुस्तानी के सुना दो भैया।
1: तो लीजिए, आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।
0: जी सर, धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: सर महेश बोल रहा हूँ। सर महेश सौरभ,
0: बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या करते हैं महेश जी आप?
1: मैं सर वो मिस्त्री काम कर रहा हूँ सर।
0: तो छुट्टियाँ बिताने के लिए कहीं जाते हैं आप अपने काम से फुर्सत निकाल कर?
1: हाँ, छत्तीसगढ़ में वही दंतेवाड़ा चले जाते हैं घूमने के लिए। दंतेवाड़ा।
0: जब आप घर से बाहर घूमने जाते हैं तो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं?
1: कम तेल वाला खाना खा रहे हैं सर। कम तेल, कम ऑयल है
0: जी।
1: तलब होना कम खाए।
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी।
0: आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं बेनेतरा वार्ड क्रमांक 20 से बोल रहा हूं सर, सुरेश कुमार सारथी। पहली बार फोन लगा है सर मेरा।
0: जी पहली बार फोन लगा है सुरेश कुमार सारथी जी, आपका बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बात की। पहले आप हमें ये बताएं कि आकाशवाणी के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आते हैं?
1: आकाशवाणी के पूरे कार्यक्रम हमको पसंद आते हैं सर, जितने भी फरमाइशी क्रम है वो भी पसंद आते हैं। बीच बीच में डॉक्टर की सलाह जो होती रहती है वो भी हमको बहुत प्रेरणादायक लगता है।
0: क्या करते हैं सुरेश कुमार जी आप?
1: मैं जैसे सारथी हूँ सर, वैसे मैं वाहन चलाता हूँ सर, ड्राइवर हूँ मैं, और बाहर बाहर जाते रहता हूँ सर, अदर स्टेट जाते रहता हूँ सर, टूरिस्ट वाले को घुमाने के लिए, और टूरिस्ट गाड़ी ही चलाता हूँ।
0: कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के स्थल लगभग सभी आप घूम चुके होंगे?
1: बिल्कुल सर, पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ सर, पूरा भारत घूम चुका हूँ
0: जी। तो छत्तीसगढ़ के कौन से पर्यटन स्थल आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: ये जगदलपुर के जो है ना सर
0: जी,
1: वो बहुत अच्छा लगता है सर, उधर के वातावरण है, शुद्ध हवा जो मिलता है वो, उधर का मन अलौकिक हो जाता है सर, कि उधर से आने का इच्छा नहीं होता सर, जगदलपुर साइड चला जाऊ। बहुत अच्छा लगता है सर, उधर का वातावरण बहुत बेहतरीन लगता है।
0: सुरेश कुमार जी देखिए, अभी गर्मी का मौसम है और भीषण गर्मी पड़ रही है, और जैसा आपने बताया कि आप वाहन चालक हैं, तो वाहन चलाते समय में गर्मी के मौसम में क्या खास ख्याल रखना पड़ता है कि ताकि हमारी सेहत भी सही रहे और हमें ज्यादा स्वास्थ्यगत परेशानियां ना हो?
1: सबसे पहले तो सर खान पान पे ध्यान देना चाहिए सर
0: जी,
1: मिर्च मसाला खाना नहीं खाना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए सर
0: जी,
1: और ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट खाना चाहिए सर, जिससे पानी का मात्रा हमारे शरीर में बना रहे, और खाली पेट कभी रहना ही नहीं चाहिए सर।
0: तो सुरेश कुमार जी बताइए, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी सर, मैं गजब फिल्म का है सर, किशोर कुमार की आवाज में है सर, जाने मन जाने जिगर जाने तमन्ना जान ले हो वाले
0: का। बहुत खूब सुरेश कुमार जी, जितना मीठा बोलते हैं उतनी ही मीठी आपकी आवाज भी है, और आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं गजब फिल्म का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।

आज के फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का सफर यहीं तक। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फोन इन फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 तक की जाती है। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 400-3482, 400-3483 और 400-3484।

रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब दीजिए अपने दोस्त राजकुमार को इजाजत। नमस्कार।

0: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार व्यास। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण कल 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वामी पर्व पूरे देश में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में 3रा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 354 करोड़ रुपए के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर को कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड स्थित पांडा तराई पहुंचेंगे, जहां वे डोंगरिया खरहट्टा में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल टी20 क्रिकेट

0: मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का यह दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश में इन दिनों आयोजित सुशासन तिहार के तहत जगह जगह शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 11 मई को रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं निर्मल उदास। पहले सुनिए जफर गोरखपुरी का कलाम।

निर्मल उदास के स्वर में हसरत जयपुरी का ये कलाम अभी आपने सुना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए ज़फ़र गोरखपुरी का ये कलाम।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे निर्मल उधास। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम के पहली गीत लस्वर दे हवें गणेश राम यादव और संगवारी मन ईमेल भेजे हवें हमर ए संगवारी मन गिर्रा पलारी ले वीरेन साहू सोनू आशीष कपिल साहू पलारी ले प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल और अन्नपूर्णा वर्मा पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन और सोमांचु कर्मा चौंक लोहारी डी ले हवें अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी खुशांत और निशांत पाहदा ले नीतीश कुमार तनुजा ईशांत लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन चिरमिरी कुरासियाले इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ और राम सहोदर बन बघेराले योगेश सारवा आशा नीरज नीलेश अंजलि और रोशनी आमाखोड़ा रेंगाखारले देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह दक्षप्रिया और गीत सरगम नेताम बाघामुड़ा कोमाखान ले हवें प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन पाहरा हिवारा ले पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर सिवनी खुर्द रेंगाखार ले हवें मंशाराम पटेल बुधियाबाई भानु प्रताप औ पायल साकरा सोमनी ले नारायणलाल साहू कुलवंतिन दिवेंद्र प्रताप नेहा मिलिंद प्रणय और रुद्रांश प्रताप साहू भानबेड़ा मुंगवाल ले भरत राम पटोडी जयंती हेमंत उमंग और मोक्ष खमरिया बिलासपुर ले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार औ बागबहरा भदरसी ले हवें पन्ना लाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन पाती पठोए हवें हमारे संगवारी मन भाटापारा ले बचकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर और सोना डीले सुब्रत चौधरी डोंडी लोहारा बालोद ले हवें देवशंकर तामुरिया जयदेव तुषार देव डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी तामुरिया मास्टर अलकबीर किकिरमेटा बिल्हारी ले संतोष शर्मा रुक्मणी गुरामी डोंडी लोहारा ले पीयूष नेताम जोहत्री औ कोमल नेताम बठेना पाटन ले हवें बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौद सारागांव ले सुजान वर्मा सुहद्रा आयुषी औकृत वर्मा गोढ़ी भाटापारा ले रवि वर्मा आरंग ले हवें नरेश साहू दुर्गा देवी साहू रोमन साहू औ गंगेश्वरी बलौदा कलतरा ले दिलहरन गौतम अंजलि आनंद औ समृद्धि पटेल बाजारपारा बेमेतरा ले भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की मुरली मनोहर पटेल डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजबीए राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीए और शिवाजी चौक राजीम ले हवें अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव तावाओ आप मन के पसंद में सुनन ए गीत

कार्यक्रम के अगला गीत ला स्वर दे हवें सीताराम साहू और संगवारी मन ईमेल भेजे हवें चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन लघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती और राघव देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा औ गणेश राम बनियापारा धमतरी ले हवें रामचंद माखीजा सविता स्वाति माही पूजा छुटकी और शरद कुमार डोडवानी सहिहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवन

श्री शिवरानी, आकाश, प्रतिभा, पूर्वी अव पूनम, पुरैना, खपरीले, केशव प्रसाद साहू, अनिता, अनुष्का, उषा साहू, कुरासी भैसले, पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुस्मिता, उद्दीपिका, खोंधला, उदयपुर ले हवे, जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा औ कलेश्वर सिंह, पीपरपरा, पालचुआ, मुंगेलीले, उत्तरा दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन औ वंशिका दिवाकर, भड़गा, कोदवा, गुड़ान ले हवे, श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी, रानी, रजनी, राहुल औ पूजा, कुईग्राम, भंगी टोला ले, ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई, फिरतराम, ओमालती धुर्वे, मोहला, मानपुर ले हवे, महेश कुमार निषाद, रंभारानी, निखिल, नैतिक, पुष्पांजलि औ स्वप्निल, पलारी ले हवे, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम औ कृष्णा औ पाती पठोय हवे, हमर ए संगवारी मन, बिलईगढ़ ले हवे, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल, भाव्या, प्रियांश देवांगन, बुड़गहन ले, राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, दत्रिंगी ले, विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना औ लक्ष्मीना, सिर्री गाता पार ले हवे, लावण्या साहू, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज औ प्रभुराम साहू, इहे ले हवे, धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका औ पूनम साहू, भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी, रिहाना बेगम औ मोहम्मद साजिद, रामनगर रायपुर ले हवे, राजेश अंबादे, शशिकला औ पूजा, कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा, रुचि, खुशी, ओजल वर्मा, इहें ले हवे, अरुण कुमार वर्मा, अनिल, ईश्वर वर्मा औ दिनेश सेन, पावर हाउस भिलई ले विकास वर्मा, खुशी, ग्रंथ, संजय औ पूजा प्रधान, लच्छनपुर ले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम सतीश औ मुकेश कुमार साहू औ भाटापारा ले चुवाराम वर्मा, मुकेश दुलारी, दुर्गा औ दुर्गेश्वरी, तावा आप मन के पसंद में सुनन ए गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र ले आप मन सुना था कार्यक्रम आप मन के गीत। अगला गीत अभबान से नव कमला वर्मा के स्वर्मा ईमेल भेजे हवै चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू अजय कुमार जय किशन कुमारी इंद्राणी माया साहू फुलझर घटा रानी ले योगेश्वर साहू डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान और हर्षिता कमार मुड़ाले सतीश गिरी गोस्वामी शिवाय एकांशी कन्या दमोले ध्रुवाराम साहू परसराम देवानंद श्वेता योगिता उकेंजल साहू मेघा पारा चिल्फिले हवै मोहराम पटेल मानुराम शोभाराम पुनाराम बिसाहू और राधेश्याम भाटापारा दानसिंह रावत पद्मिनी नीरज शुभम और सौरभ अड़ार नादघाटले माखन वर्मा चांदनी राहुल भूपेश और दीपेश कोका भिलैले हवै उत्तम सिंह जंगेल मोरस अनिल अजित आयुष औ नंदनी धमधा सुखरी कलाले अमित जंगेल शकुन आरुषि ओशिका आदित्य औ अंजलि सहसपुर लोरमिले छोटकू साहू मोहित राम लोकेश रामकिशन दुलीचंद दुर्गेश कुमार लोरमी चचेड़ी ले हवै शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या औ शिवम गणेशधाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जय देवेश धनवंतीनबाई औ मोतीमबाई मानिकपुरी निवई उतैले हवै विक्की उर्वशी जतिन जयंत औ कुनिका टेकापार बालोदले चिंताराम यादव रवि प्रकाश औ गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक कुमार जयश्री ऋषभ और ऋचा देवांगन पाती पठोए हवै हमर ए संगवारी मन गैनलाल मिश्रा चंद्रकांति धनंजय और अर्चना मिश्रा आप मन हो धवलपुर गरियाबंद ले अमली पदर ले निकुंज तिवारी लाची और ममता तिवारी कोरदा ले कलीराम यादव छतराम और शेषराम चनागांव ले लालिमा मरकाम जयंती शोरी सोहन यादव नंदलाल मरकाम और कोमल सोरी सिमगा ले हवै सविता जैन प्रदीप मोनिका बीना देवेंद्र और आदेश जैन बेलरगांव सिहावा ले मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु और अंकित देवांगन भाटापारा ले हवै रमजान खान सिकंदर असरफ खान अयाज अल्फैज खान और सादिया खान बिल्हाले शेख नासिर और महजबीन बानो मोहाली चंडीगढ़ ले हवै टी डी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप अनिल शर्मा कालका ले शुभचंद्र बजाज बिट्टा और साहिल करही भदर ले हवै पुरुषोत्तम भाई निर्मल शारदा देवी लोचन कुमारी विद्यार्थी गिनी परी लल्ली और कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मी देवी गीतिका गुड़िया लालिमा और खिलेश कुमार आवो आप मन के पसंद मां सुनवावन ए गीत।

अगला गीत ला स्वर दे हवें सुमित्रा बनर्जी, ईमेल भेजे हवें धरसी वाले छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, रुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी, संतोषी नगर रायपुर हवें छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू, कान्हा यादव, गेंदा टोला बाजार चौंकले बीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र, योगिता, रोहासिले डगेसर साहू, घनश्याम, नूतन, गौरव, अलका, जानवी, यश, भूवी साहू, गुढ़ाले दिलीप पाठक, रेखा, प्रज्ञा, यश, लोरमी चचेड़ीले कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ, कातल बोर्डले भागसिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु, हरमो भोरम देवले, जीवनलाल साहू, राजबाई, लोकनाथ, वेदिका और गजानन कन्नौजे, भलेसर महासमुनले, बलराम सेन, इंदु, छगन सिन्हा और द्वारिका सिन्हा, मोहला मानपुरले विष्णुराम यादव, बस्ताबाई, कविता, अनीश, गीताशी और वैभव, चरोदले नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन, जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद, भीम खोज, तरपोंगीले संतोष गुप्ता, होमेश, हितेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता, रिंगनीले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दत्रिंगीले भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, पाती पठोए हवें हमारे संगवारी मन, शिक्षक नगर दुरुगले राकेश वर्मा, सचिन अववाणी वर्मा, नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी, शीतलानगर दुरुगले शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर, बेमित्राले राज और सारिका वैष्णव और बेमित्रले ही हवें सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र और व्रजकांत सारथी। आप मन के पसंद में सुनन एक गीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत ला स्वर दे हवे रतिदास मानिकपुरी सफरी मरकाम और संगवारी मन ईमेल भेजे हवे हटौत बाजार ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल पोटिया कला दुरुगले संजय साहू सुजाता शशांक उसीमा हिंगोली महाराष्ट्र ले शाहजी बोड़के नंदा हनुमान वाकोड़ी ले उत्तम जमदाड़ी स्वराज बेवरा संबलपुर ले शिवदयाल वर्मा नरोत्तम तुषार वंशिका बुनापार लाटाबोड़ ले देवनारायण साहू योगिता गीतिका चंचल रानी उमाबाई और गंगाराम साहू मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश और राहुल रसेड़ा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश संध्या कीर्ति कुमार और डिकेश नेपानगर ले सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र जी शाह हिच्चा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस दास शांति रिचाऊ गायत्री रुद्री ले चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम शिखा और शिफाली पाती पठोय हवें दरचुराले ददुआ साहू भूरी रेखा मोतीलाल साहू सिमगले रमेश कुमार यादव माया रिंकू सनी कोमल यादव खट्टी महासमुंदले सुभाष शर्मा छाया शर्मा टिकेश्वर कीर्तन शिवाय और हंसिका साहू भाटापरले एमएल यादव अजय कुमार अमित अमेन गिरीश करण युवान ओढ़ाबेश यादव और खैरागढ़ हवें रविन्द्र अग्रवाल पुष्पलता झरना प्रेरणा दीक्षा तव सुनवावथन एक गीत

इही गीत संग आप मन के गीत कार्यक्रम इही सिरावत है। कार्यक्रम बर गीत ला जोरे रहिन बीर भान साहू। ता अब एक कार्यक्रम ले शुभ्राला देवा विदा जोहार।

0: आप मन के गीत, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6, लखनऊ 10, बेंगलुरु 4 और मुंबई 9 स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

अनवर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना क्षितिज तारे और शिल्पा राव के स्वर में। हसन कमाल का गीत, संगीत मिथुन का था। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 12 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का

समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और अब सुनिए चित्रपट संगीत की अगली प्रस्तुति।

जहर इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल के स्वर में। सईद कादरी की शब्द रचना को सुरों में ढाला था रूप कुमार राठौर ने। अब सुनिए चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति फिल्म खाकी से, आवाजें अर्णब चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की, गीत समीर का, संगीत राम संपत का है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्वर धरोहर, रात 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन और अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में आप सुनेंगे विद्वान श्री टी श्रीनिवास का कर्नाटक वायलिन वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा शिक्षा से सशक्त होती महिलाएं। साथ ही सुनिएगा वार्ता संयुक्त परिवार का विघटन और घटते दायित्व बोध। वार्ताकार होंगी मनीषा सेनापति और आनंद लीजिएगा गीत संगीत का।

शाम 5:10 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में आजकल का विषय होगा इरादे नेक हों। साथ ही सुनेगा क्रम राग नंदिनी, आलेख और संपादन बीरभान साहू का, प्रस्तुति सुमिता राय बर्मन की होगी। इसके अलावा होगा क्रम सवालों के आईने में और फिल्म संगीत।

शाम 6:05 पर ज़िले की चिट्ठी में सुनिएगा बालोद ज़िले की चिट्ठी। आलेख जयप्रकाश सिन्हा का होगा। शाम 6:30 पर सुनिएगा कानून की बात। उत्तराधिकार अधिनियम विषय पर जानकारी देंगी षष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री मनीषा ठाकुर। प्रस्तुति आकाशवाणी बिलासपुर की होगी।

शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा दलहन के प्रसंस्करण ले बढ़ावन आमदनी। क्रम आज की सलाह में ग्रीष्मकालीन सब्जी माँ कीट नियंत्रण इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर ऋचा चौधरी, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र महासमुंद। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

हम आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्वर धरोहर, रात 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनेंगे विद्वान श्री डी श्रीनिवास का कर्नाटक वायलिन वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बिंदिया।

0: रविवार की बिंदिया में आप सभी श्रोता बहनों का स्वागत है। आप सभी को सरिता मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, ज्ञान की रोशनी जब किसी स्त्री के जीवन में पहुंचती है तो वो केवल अपना नहीं पूरे समाज का भविष्य उज्जवल कर देती है। एक शिक्षित नारी आत्मविश्वास, संस्कार और सशक्त समाज की पहचान होती है। आज की बिंदिया में हम बात करेंगे शिक्षा से सशक्त होती महिलाएं, उसके महत्व और बदलते भारत में उसकी उड़ान की। कहा जाता है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि यह सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति भी देती है। बहनों, शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमें सही और गलत की पहचान करना भी सिखाती है। पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकती हैं, परिवार को सही दिशा दे सकती हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। पहले कई महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। घर की जिम्मेदारियों और पुरानी सोच की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती थी, लेकिन आज समय बदल रहा है, या यूं कहूं कि बदल चुका है। अब महिलाएं पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कोई शिक्षक बन रही है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अधिकारी, तो कोई अपना छोटा व्यवसाय भी शुरू कर रही है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास लाती है। जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने अधिकारों को समझती है, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे देती है और परिवार के फैसलों में भी अपनी राय रख सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बदलाव दिखाई दे रहा है। बहनों, गांव की बेटियां भी स्कूल और कॉलेज जा रही हैं। सरकार की कई योजनाएं और लोगों की बदलती सोच इसमें बहुत मदद कर रही हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करना है। कई जगह आज भी बेटियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं माना जाता, इसलिए हमें मिलकर लोगों को जागरूक करना होगा कि बेटी की शिक्षा पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। तो क्यों ना हम ये संकल्प लें, हर बेटी को पढ़ने का मौका देंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसे आगे पढ़ने में सहयोग भी करेंगे और आगे बढ़ने में भी उनकी रुचि जगाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही वह ताकत है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: बहनों, आज के समय में संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। परिवारों में आपसी सहयोग और जिम्मेदारियों की भावना कम होती दिखाई दे रही है। लोग अपने कर्तव्यों से दूर होकर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में परिवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेम, सहयोग और

0: जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। तो चलिए हमारे अगले क्रम में सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय है संयुक्त परिवार का विघटन और घटते दायित्व बोध। वार्ताकार हैं श्रीमती मनीषा सेनापति।
1: बिंदिया सुनने वाली मेरी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि आप सब जानती हैं कि भारत में परिवार केवल एक घरेलू व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संस्था है जो सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक वास्तविकताओं और धार्मिक परंपराओं से आकार लेती है। पीढ़ियों से इस संस्था को दो संरचनाओं ने परिभाषित किया है, संयुक्त परिवार जहां कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं और एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव आया है। कई बड़े बड़े संयुक्त परिवार छोटे छोटे एकल परिवार में विलीन हो गए हैं। अब जब हम संयुक्त व एकल परिवार की चर्चा कर ही रहे हैं तो इन दोनों के बीच के अंतर को समझना भी आवश्यक है। बहनों, संयुक्त परिवार भारतीय समाज की सुदृढ़ संस्था रही है। इसमें कई पीढ़ियां जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सब मिलकर न सिर्फ प्रेम व सद्भावना से रहते हैं बल्कि जिम्मेदारियों का भी बंटवारा होता है। इसके विपरीत एकल परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। बदलते समय, शहरी जीवन शैली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा ने इस परिवार प्रणाली को और भी प्रचलित कर दिया है। बहनों, एक समय था जब हमारा समाज संयुक्त परिवार की मजबूत नींव पर खड़ा था, परंतु हाल के दशकों में शहरीकरण, वैश्वीकरण और बदलते सामाजिक मानदंड के वजह से इस व्यवस्था में अभूतपूर्व गति से विघटन हुआ है। जब संयुक्त परिवार के सदस्य अलग होकर अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगते हैं तो उसे एकल परिवार माना जाता है। तो बहनों, आखिर ये विघटन हो क्यों रहे हैं? आइए इन कारणों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण है रोजगार के लिए स्थान परिवर्तन। गांव में रहकर खेती करने वाले लोगों को औद्योगिकरण, बेहतर करियर और नौकरी की मजबूरी उन्हें परिवार से दूर ले जाती है। बड़े शहरों की महंगाई व सीमित जगह की वजह से लोग संयुक्त परिवार को छोड़ छोटे परिवार में रहना बेहतर मानते हैं। बहनों, दूसरा मुख्य कारण है आर्थिक स्वतंत्रता। पहले परिवार एक ही आर्थिक स्रोत पर निर्भर रहता था, लेकिन अब घर के कई पुरुष तथा महिला सदस्य भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। परंतु आर्थिक स्वतंत्रता होने से उन्हें अलग रहना आसान लगता है। बहनों, संयुक्त परिवार के विघटन का तीसरा कारण है पीढ़ियों के बीच बढ़ता फासला, यानी जेनरेशन गैप। संयुक्त परिवार में निर्णय कई बार सामूहिक होता है, जिससे युवा पीढ़ी जिनको अपने करियर, विवाह व जीवन शैली से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद है, उनको ये बंधन स्वरूप प्रतीत होने लगता है। इस बढ़ते भिन्न विचारों के कारण परिवार में तनाव बढ़ता है और फल स्वरूप परिवार टूटने लगता है। बहनों, पारिवारिक व्यवसाय जहां परिवार के सभी भाई बहन शामिल हैं और अगर उनमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो रिश्तों में आई कड़वाहट के वजह से भी परिवार टूटने लगते हैं। हमारी सोच से परे तकनीकी विकास और डिजिटल जीवन शैली भी बहनों एकल परिवार की संख्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को हकीकत की दुनिया से ज़्यादा आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ दिया है, जिससे वे वास्तविक रिश्तों से दूर हो रहे हैं और परिवार के लोगों के बीच भावनात्मक दूरी भी बढ़ने लगी है। लेकिन बहनों, संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई व्यक्तिगत सोच, स्वतंत्रता की इच्छा। आज के युग में शिक्षा ने हमें जागरूक और आधुनिक तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक सोच से बदलाव भी आया है। इस वजह से मैं की भावना हम पर भारी पड़ने लगी है। लोग अपनी पसंद, स्वतंत्रता और निजी जीवन को अधिक अहमियत देने लगे हैं और इस वजह से अलग रहना बेहतर समझते हैं।

0: संयुक्त परिवार का विघटन बढ़ने के साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू उभरकर सामने आया है और वो है घटते हुए दायित्व बोध। आज के व्यस्त मशीनी जीवन में समय की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग अपने काम व करियर में इतने व्यस्त हैं कि परिवार के लिए वक्त निकालना भी कठिन हो जाता है। स्वार्थ की भावना बढ़ने की वजह से लोग अपने कर्तव्यों से दूर भी होते जा रहे हैं। बहनों, आज हम अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, परंतु क्या हम अपने जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गंभीरता से निभा रहे हैं? पहले संयुक्त परिवार में तो महिलाएं पूरे परिवार को जोड़कर रखती थीं। सास, ननन, जेठानी, देवरानी सब मिलके घर के काम, बच्चों की देखभाल व अन्य जिम्मेदारियां उठाते थे, जिससे उन पर न सिर्फ काम का बोझ कम होता बल्कि एक भावनात्मक सहयोग भी मिलता था। लेकिन एकल परिवार के बढ़ते प्रचलन और घटते दायित्व बोध के चलते आज महिलाओं को घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना और भी जटिल व चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बहनों, इस बदलाव का प्रभाव सिर्फ हम महिलाओं तक सीमित नहीं है, इसका असर घर के बुजुर्ग व बच्चों पर भी पड़ रहा है। संयुक्त परिवार में बुजुर्गों का अनुभव, सलाह और साथ परिवार के लिए एक मार्गदर्शन हुआ करता था, लेकिन एकल परिवार में वे उपेक्षित व अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बच्चे भी दादा दादी, चाचा चाची से कहानियां सुनने के बहाने उनके जीवन के अनुभवों को जानते थे, लेकिन एकल परिवार में अकेले रहने की वजह से उन अनुभव रूपी संस्कारों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व और सामाजिक विकास पर असर पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बहनों, हमारी संस्कृति व परंपरा वो भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा। त्योहारों की खुशी, रीति रिवाज और पारिवारिक एकता का एहसास जो संयुक्त परिवार से आता था, अब छोटे होते परिवारों के सहित वो परंपराएं भी धूमिल सी होती जा रही है। लेकिन बहनों, आधुनिकता के इस दौर में हमें यह भी समझना होगा कि परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना जितना जरूरी है, अपने संस्कार और जिम्मेदारियों को भी निभाना उतना ही महत्वपूर्ण है। परिवार में रहते हुए अगर हम एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और निभाएं, तो हर घर खुशियों से भर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में संवाद यानी कम्युनिकेशन बनाए रखें, चाहे वे आमने सामने हो या दूर होने पर फ़ोन के माध्यम से। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, तो उनके बीच गलतफहमियां कम होती है, एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं तथा रिश्तों में भी मजबूती आती है। इसके अलावा बुजुर्गों का सम्मान व देखभाल करके, बच्चों में अच्छे संस्कार डाल के व सर्वोपरि सबके साथ समय बिता के हम परिवार के नींव को मजबूत कर सकते हैं। याद रखिए बहनों, परिवार केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत रिश्ता भी है, जिसे हमें संभाल कर रखना है। आवश्यकता है बस इस बात की कि हम आधुनिकता के साथ साथ अपने पारिवारिक मूल्यों को भी बनाए रखें, अपने अधिकारों के साथ साथ दायित्वों को भी समझें और निभाएं। तो फिर बहनों, परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, संयुक्त हो या एकल, उसमें प्रेम व संतुलन हमेशा बना रह सकता है। अंत में बहनों, चार पंक्तियों के साथ अपनी वार्ता समाप्त करना चाहूंगी। एक समय था जब एक छत के तले पूरा परिवार समाया था, बरगद सा साया बड़ों का हर मुश्किल में साथ निभाया था। आज एकल परिवार का दौर आया, हर कोई आंगन को छोड़ चार दीवारों में सिमट गया। अपने कर्तव्यों को भूलकर इंसान रिश्तों से ही दूर चला गया। आओ फिर से रिश्तों को जोड़े हम, अपनों के इस बंधन को थोड़ा और मजबूत करें हम। क्योंकि बहनों, मकान ईंटों से पर घर तो रिश्तों से ही बनता है, और परिवार वो जो हर हाल में साथ निभाता है, हर हाल में साथ निभाता है। धन्यवाद
1: बहनों। अभी आप सुन रही थी वार्ता, जिसका विषय था संयुक्त परिवार का विघटन और घटते

0: दायित्व बोध और वार्ताकार थी श्रीमती मनीषा सेनापति।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोता बहनों, अब बढ़ते हैं अगले क्रम गीत संगीत में। अब पेश है 1985 में रिलीज हुई फिल्म सागर का एक बेहद लोकप्रिय और चुलबुला गीत, जिसने अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। गीत में मस्ती, दोस्ती और युवाओं की खिलखिलाती भावनाएं बहुत खूबसूरती से झलकती हैं। इस गीत के बोल और संगीत आज भी सुनने वालों को उसी दौर की मीठी यादों में ले जाते हैं। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और स्वर हैं आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम के।

0: समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
1: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: श्रोता बहनों, अब बढ़ते हैं अगले क्रम गीत संगीत में। अब पेश है 1985 में रिलीज हुई फिल्म सागर का एक बेहद लोकप्रिय और चुलबुला गीत, जिसने अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। गीत में मस्ती, दोस्ती और युवाओं की खिलखिलाती भावनाएं बहुत खूबसूरती से झलकती हैं। इस गीत के बोल और संगीत आज भी सुनने वालों को उसी दौर की मीठी यादों में ले जाते हैं। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने और स्वर हैं आशा भोसले और SP बालासुब्रमण्यम के।

0: करता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: बहनों, कई बार अचानक गुस्सा आ जाता है या अचानक से जल्दी से दुख भी हो जाता है या बिना सोचे कुछ बोल देते हैं, बाद में लगता है काश मैंने खुद को संभाल लिया होता। यही जगह है जहां आत्मनियंत्रण हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। खुद पर नियंत्रण का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि सही समय पर सही तरीके से संभालना है। हम बात कर रहे हैं बहनों आत्मनियंत्रण की। जब कोई बात बुरी लगे तो तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए क्या मेरी बात से समस्या सुलझेगी या बढ़ेगी। एक छोटी सी आदत बहुत मदद करती है। जब भी मन परेशान हो खुद से कहिए मैं शांत हूँ, मैं सोच समझ कर बोलूँगी, तभी सब कुछ सही और नियंत्रण में रहेगा। बहनों, मोबाइल, गुस्सा, आलस या गलत आदतें, इन सब पर नियंत्रण धीरे धीरे आता है। इसके लिए हमें अपना समय सही कामों में लगाना चाहिए, जैसे पढ़ाई, खेल, किताबें, परिवार के साथ बातचीत या फिर संगीत। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वही जीवन में सही फैसले ले पाता है। सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं होती बहनों, बल्कि खुद को संभालने में होती है। तो हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखिए, खुद को संभालिए और गीत संगीत सुनकर अपना मन भी बहलाते रहिए। तो चलिए हम भी सुनते हैं गीत संगीत में ये अगला गीत।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पैसा

किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में यह था फिल्म बातों बातों का गीत। गीत के बोल लिखे थे अमित खन्ना ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। और बहनों अब गीत संगीत में सुनते हैं अगला गीत फिल्म आसपास से।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में यह था फिल्म आसपास का गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और बहनों, गीत संगीत की ये थी अंतिम प्रस्तुति। और अब समय है आपसे विदा लेने का बहनों, क्योंकि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। बहनों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, शायद यह एक इशारा ही है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इस

बिंदिया, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म ABCD2 का गीत अभी आपने सुना। मयूरपुरी की शब्द रचना को सुरों में ढाला था सचिन जिगर ने।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

रंग दे बसंती, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और एआर रहमान के स्वर में। गीत प्रसून जोशी का था, संगीत एआर रहमान का। चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति सोनू निगम के स्वर में। समीर का लिखा गीत, संगीत हर्षित सक्सेना का और फिल्म का नाम है सुपर नानी।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय

0: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाटु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभासपाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय

0: भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटोइम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला MV होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान

0: किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

अनोखी अदा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार के स्वर में फारूक कैसर का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

0: संगम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश के स्वर में। हसरत जयपुरी के बोल सुरों से सजाया था शंकर जयकिशन ने।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तैं सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

शर्मीली। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में। गीत नीरज का था, संगीत सचिन देव बर्मन का। चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति फिल्म फर्ज से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
1: और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका

0: बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। राज्य सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के अनुसार ये कार्यक्रम लखनऊ के जनभवन में 3:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से और स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अब वक्त हो रहा है हमारे बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स का। आज इस कार्यक्रम में बाल प्रतिभागी हैं अनय पुंडीर, अथर्व पवार, कायन पल, पहल परियानी और नाइसा। लीजिए सुनिए रेडियो किड्स।

0: ढेर सारी सीख। हम आए हैं द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। मेरा नाम कायना पाल है, हम कक्षा 4 से हैं।
1: मेरा नाम अथर्व है।
2: मेरा नाम नायसा है।
3: मेरा नाम पहल है।
4: और मेरा नाम है अने।
0: दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धरती हमारी माँ है, लेकिन हम क्या उसका सही ख्याल रख रहे हैं?
1: नहीं, हम पेड़ काटते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं।
4: हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए
3: और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए।
2: तो दोस्तों, आज से हम सब ग्रीन अर्थ का वादा करते हैं।
3: धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार।
4: अरे, हमने अभी बात की धरती माँ की और माँ की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अब बात कर अपने सबसे प्यारी माँ की।
0: माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है।
1: मदर्स डे माँ के प्यार और त्याग को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
3: माँ की ममता का कोई मूल नहीं, वह हर दर्द सहकर भी कुछ बोलती नहीं।
0: मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, सुनाऊँ क्या?
5: हाँ, सुनाओ।
0: ममता का सागर है माँ, स्नेह का झरना है माँ, लोरी के मीठे बोल गाकर सपनों को जगाती है माँ, त्याग की मूर्ति है माँ, समय साक्षी है इसका, इतिहास नया रचती है माँ।
4: बहुत अच्छी कविता सुनाई कायना।
1: तो दोस्तों, मदर्स डे पर हम अपनी माँ को थैंक यू जरूर कहेंगे। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, समय हो गया प्रोग्राम रेडियो किड्स का, जहां बच्चे ही हैं असली होस्ट। हम लाए हैं आपके लिए मजेदार बातें, प्यारी कविताएं, छोटी कहानियां।

0: गीत तो बहुत अच्छा था। माँ के साथ समय बिताना मुझे सबसे अच्छा लगता है और छुट्टियों में तो मैं सबसे ज्यादा समय माँ के साथ बिताती हूँ।
1: सही कहा ना ऐशा, छुट्टियाँ भी तो आने वाली हैं। दोस्तों, छुट्टियाँ आ रही हैं, आप सब क्या करने वाले हैं?
2: मैं नई कहानी की किताब पढ़ूंगी।
3: अच्छा पहल, मैं भी पेंटिंग सीखूंगा।
4: अरे वाह अथर, मैं तो अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा।
0: सही कहा ने, हम लोग भी अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, हमें अपनी छुट्टियों का सही उपयोग करना चाहिए।
3: छुट्टियों में तो मैं रेडियो भी सुनता हूँ।
1: सच में अथर, रेडियो पर क्या सुनते हो तुम?
3: गाने, कहानियाँ और बहुत कुछ।
2: जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी आ रही थी तब मैंने सोचा कि आकाशवाणी क्या है। कायना, क्या तुम्हें पता है आकाशवाणी क्या है?
1: थोड़ा थोड़ा पता है पहल।
4: चलो दोस्तों, एक छोटी सी क्विज करते हैं। आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है पहल?
2: ऑल इंडिया रेडियो।
4: सही कहा पहल।
3: मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसी को पता है?
2: नहीं। हाँ मुझे पता है, इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी।
3: सही कहा पहल।
4: मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आकाशवाणी का उद्देश्य क्या है?
2: मैं बताऊँ? सूचना, शिक्षा और मनोरंजन।
4: सही कहा कायना।
1: वाह, आकाशवाणी तो सच में भारत की आवाज है।
4: आकाशवाणी ने देश की आवाज हर घर तक पहुँचाई है।
0: मैं कविता सुनाना चाहती हूँ आकाशवाणी पर, सुनाऊँ क्या?
5: हाँ, सुनाओ।
0: आकाशवाणी की मधुर पुकार सुरों में बसी हर एक झंकार, खबरों से लेकर गीतों तक छूले दिल के हर एक तार। सुबह की रोशनी संग आए नई उमंग नए विचार, रात के खामोशी में भी बजे उम्मीदों का सितार। गांव शहर को जोड़ती डोर हर भाषा का ये त्योहार, आवाजों में बसती दुनिया आकाशवाणी का संसार।
1: वाह नायशा, क्या कविता सुनाई।
0: धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई कौन थी?
2: मैं जानती हूँ।
0: बताओ पहल।
2: वह बहुत बहादुर थी
4: और उन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ युद्ध करा था।
3: उनका प्रसिद्ध वाक्य था, मैं अपनी जाति नहीं दूंगी।
1: रानी लक्ष्मीबाई ने हमें बहादुरी सिखाई थी।
4: मैं कविता सुनाना चाहता हूँ झांसी की रानी पर, सुनाऊं क्या?
0: हाँ ने सुनाओ।
4: वीरता की वो मिसाल थी, भारत की शान कमाल थी, नाम तो जिसका रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वो ढाल थी। नन्ही उम्र में सीखा जिसने तलवारों से खेलना, दुश्मन के आगे डटकर उसने कभी ना सीखा झुकना। घोड़े पर बैठे रन में उतरी, हाथों में थी तलवार, अंग्रेजों से लड़ी वो डटकर, ना माने कभी हार। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, गूंज उठा था मैदान, उसकी वीरता के आगे कांप उठा था दुश्मन जहान। देशभक्ति की ज्वाला बनकर इतिहास में वो अमर हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हर दिल में आज भी जिंदा हुई।

0: हाँ, और हमें सबको नमस्ते करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए।
1: सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है।
0: बड़ों के सम्मान पे अभी हमने बात की, अब मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं?
2: हाँ हाँ सुनाओ।
0: बड़ों का करना सदा सम्मान, यही है जीवन का सच्चा ज्ञान। उनके अनुभव उनकी सीख बनते हैं हमारे जीवन की सीख। माता पिता, गुरु और हर बुजुर्ग, इनसे ही सस्ता जीवन का मार्ग। इनकी बातों में छुपी है रोशनी, जो दूर करे हर एक परेशानी। आओ मिलकर ये ठाने हम, रखेंगे बड़ों का सदा हम साथ। उनकी सेवा उनका मान, यही है जीवन का सच्चा ज्ञान।
3: अच्छे संस्कार अपनाएं, सबका दिल हम जीत जाएं। और ये संस्कार हमें कहानियों से भी मिलते हैं।
0: चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाऊं?
2: हाँ, सुनाओ।
0: एक किसान के पास सोने का अंडे देने वाली मुर्गी थी, लेकिन उसने लालच में आके सब कुछ खो दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली?
3: हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। वाह, क्या प्यारी सी थी पहल। अब चलो एक कविता हो जाए।
0: चलो मिलकर पेड़ लगाए, धरती को स्वर्ग बनाए।
3: मैं एक पेड़ पे कविता सुना रही हूँ। पेड़ हमारे साथ ही है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी हैं, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
4: नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं आज आप सभी को टॉपिक अवेयरनेस के बारे में कुछ बता रही हूँ और जागरूक भी कर रही हूँ। आशा है कि आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो सुनिए, आप सभी जब सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आप सभी को ये ट्रैफिक लाइट दिखती है ना, तो मैं इसका मतलब बताऊं। रेड लाइट का मतलब स्टॉप, येलो लाइट का मतलब स्लो और ग्रीन लाइट का मतलब गो। तो जब भी आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो इन सभी का ध्यान रखना। पैदल यात्री सावधानी से सड़क पार करें, बेवजह हॉर्न ना बजाएं, स्पीड में गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दुर्घटनाओं से बचें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी ना करें, उससे थोड़ी सी पीछे खड़ी करें। आपका जीवन अनमोल है। धन्यवाद।
3: तो दोस्तों, आज हमने सीखा धरती की रक्षा, माँ का सम्मान, समय का सही उपयोग और अच्छे संस्कार। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रेडियो।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस समय प्रधानमंत्री वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है

0: उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के विशेष इलाज वाले सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दसनायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी है। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 6 नए मंत्री शामिल किए गए और वर्तमान में सोमेंद्र तोमर और अजित पाल को कद बढ़ाकर उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। और खेलों में शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service spirituality and social transformation.
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम,

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला नगमा है फिल्म आन मिलो सजना से, स्वर है किशोर कुमार का।

0: जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह का राजपत्रित अनानुसचिवीय पद के वेतन मैट्रिक स्तर 13 में भरे जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता मानदंड, आवेदन का प्रपत्र और अन्य विवरण आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.jalshakti-dowr.gov.in। आवेदन की अग्रिम प्रति इस ईमेल पर अग्रेषित की जा सकती है usa.dmn-mowr@nic.in अथवा admn-mowr@nic.in। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, एक रिक्ति उपलब्ध है। समेकित वेतन रहेगा 90,000 रूपए प्रतिमाह। सहायक अभियंता सिविल दो पद उपलब्ध हैं। आयु सीमा है अधिकतम 35 वर्ष, जबकि वेतन रहेगा 50,000 रूपए प्रतिमाह समेकित। पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन और अन्य विवरणों के लिए देखिए ये वेबसाइट rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट में प्रोफेसर सह प्राचार्य का एक पद उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsrajkot.edu.in। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान सचिव पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। FDDI राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो फुटवियर और चमड़े के उत्पादों के डिजाइन और विकास से संबंधित सभी विषयों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और विकास करने तथा इससे संबंधित या इससे जुड़े मामलों के लिए काम करता है। सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन, अद्यतन वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, सतर्कता मंजूरी और काडर मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से पते पर भेज सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कैबिन संख्या US 34 प्रथम मंजिल वाणिज्य भवन नई दिल्ली 110010। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल है neeraj.ks@nic.in, जबकि टेलीफोन नंबर है 011-233-88954। फोन नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 011-233-88954। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आज उसका दिन है जिससे हम सब का दिन है, जीवन है, और वो हमारे जीवन की आधार है, हमारी सृजना है, हमारी माँ है। आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है और ये दिन समर्पित है उस शक्ति के लिए, उस एहसास और संवेदना कहें, भावना कहें, या भावना का समंदर उसी के लिए है और उसी को धन्यवाद देने के लिए है। तो जब आज मदर्स डे की बात आती है तो शायर मुनव्वर राणा की ये कुछ चुनिंदा पंक्तियाँ मुझे लगता है कि

0: यहाँ पर शेयर करनी चाहिए कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। दुनिया सौदेबाजी के उसूलों पर चलती है, पर माँ की ममता में कभी मिलावट नहीं होती। और आज के इस कार्यक्रम में हम मदर्स डे पर डेडलाइन में विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार भी देंगे आपको, और खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी, आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो जागृति, हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू अ न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट जागृति शर्मा। And well, at the outset, I'd like to wish all our listeners a very happy Mother's Day. And we'll talk about mothers in a dateline section of the program. But Jagriti, he's known as the father of motivation. Now let's talk about three of his key teachings. Firstly, if you change the way you look at things, the things you look at change. Secondly, he taught people to let go of the need for vengeance, not for the sake of others, but to achieve internal freedom. And thirdly, urge people to stop overthinking, to trust the intuition, and to break free from self-imposed limitations. Yes, we are talking about Dr. Wayne Dyer, the great American self-help author and motivational speaker. And he also celebrates his birthday today, so we will also talk about him later in the program. But first, we begin with the news headlines first.
0: Jee. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आत्मसम्मोहन के माध्यम से एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।
1: सी जोसेफ विजय टेक्स ओथ एज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु अलोंग विद 9 मिनिस्टर्स।
0: हिमंता बिस्वा शर्मा असम में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए।
1: Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case.
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष समाप्ति के करीब हो सकता है।
1: And in archery world cup, Indian women's recurve team clinches gold defeating host China in a shoot-off in Shanghai. Yes, and now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Mother's Day and World Lupus. Today's show is filled with love, emotions, laughter and lots of gratitude because today the world is celebrating Mother's Day, isn't it, Jagriti?
0: बिल्कुल, हमारे दिन की शुरुआत माँ से होती है और कहें कि जब हम सोने जा रहे होते हैं तब भी हमारी ज़रूरतों का ख्याल माँ ही रखती है। और अभिषेक, ये भी ख़ास बात है कि हमें अपनी माँ की जो इम्पोर्टेंस है वो तब ज़्यादा समझ में आती है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं।
1: Absolutely.
0: इससे पहले हमें लगता है कि माँ बेवजह परेशान होती है, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाती है, लेकिन उसके जो एहसास हैं या उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, हम जिम्मेदार जब बन जाते हैं तब समझ आती है। और मुनव्वर राणा भी ये कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है और इसलिए मना रही है कि माँओं को और माँ जैसी दूसरी महिलाओं जो हमें बिना शर्त प्यार करती हैं, हमारे लिए त्याग करती हैं और जो हमें सहयोग उनसे मिलता है उसका सम्मान किया जा सके। और सच कहें तो हमारी माएँ हमारे लिए जो कुछ भी करती हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक दिन कभी भी काफ़ी नहीं होता। स्कूल से लेकर अगर हमें स्कूल के लिए जगाना हो या जब हम बीमार होते हैं तब रात भर हमारे लिए जागना हो, माएँ असल में पूरे समय हमारे लिए सुपर हीरो बन जाती हैं।

0: Yes, absolutely. And a very happy Mother's Day to all the incredible moms, grandmothers, guardians and maternal figures.
1: बिल्कुल, हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाए जाने वाला मदर्स डे हर दिन हर जगह उन माताओं के बिना शर्त प्यार, त्याग और कभी भी ख़त्म ना होने वाले सहयोग और उनकी ताकत का सम्मान करने का दिन है.
0: Yes, Jagriti, and in modern times, the celebration gained importance in the early 20th century through the efforts of social activist Anna Jarvis in the US. And in 1908, Anna Jarvis organized the first official Mother's Day to honor her mother's life of service. Her mother had actively participated in community service during the American Civil War, and the tradition was later formalized as the second Sunday of May, which was also the day Anna's mother passed away.
1: और सच कहूँ अभिषेक, तो हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, एक बात कभी नहीं बदलती. जब भी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम जिसे फ़ोन करते हैं या फिर हम जिसे याद करते हैं वो अक्सर हमारी माँ होती है. आई थिंक आप इससे एग्री करते हैं.
0: Absolutely.
1: और चाहे अगर आपकी चाबियां खो जाएं या आपकी तबीयत खराब हो जाए या फिर ऐसे जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम हैं, उन छोटे से बड़े हर काम में आपका जो ख्याल रखती है और आपको जो याद आती है वो माँ ही होती है.
0: Exactly. And today's show is all about celebrating those superheroes without capes.

0: भावना है, संवेदना है, एहसास है और इसी एहसास से हम सब जुड़े हुए हैं और आज रुक कर इसी एहसास को, भले वो सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली है, और उसी माँ को आज का दिन एक मौका देता है कि हम उन्हें कहें धन्यवाद माँ।
1: Yes, and not just with gifts, but with time, love, respect and appreciation. Because honestly, mothers deserve to feel celebrated every single day.
0: तो इससे पहले कि हम बात खत्म करें, आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी आपको याद दिला दें कि सोशल मीडिया पर सिर्फ मदर्स डे की स्टोरी ही पोस्ट ना करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस ही ना लगाएं, बल्कि अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा समय भी बिताएं।
1: Absolutely. So to conclude our discussion on Mother's Day, Jagriti, as we celebrate Mother's Day 2026 today, let's remember that motherhood is not only about giving birth, it's about care, compassion, guidance and unconditional love. And to every mother and maternal figure listening, thank you for your patience, strength and endless love.
0: तुम्हारी वजह से ये दुनिया और भी ज्यादा रोशन है। जाओ अपनी माँ को गले लगाओ, उन्हें फोन करो, उनके साथ समय बिताओ या बस उन्हें ये बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितनी खास हैं, कितनी मायने रखती हैं। क्योंकि दीवारों को घर बनाती है माँ, बिखरे रिश्तों को सजाती है माँ, खुद गीले में सो जाती है अक्सर पर हमें सूखे में सुलाती है माँ। भले ही हम कितनी ही दूर निकल जाएं, हर मोड़ पर लौट कर आने की वजह होती है माँ।
2: माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ माँ सब कुछ है।

0: Yes, and now we move on to a second topic in a Dateline section, that is the World Lupus Day. And very important day that has been observed across the world today, Jagriti, is the World Lupus Day.
1: बिल्कुल, और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा लेकिन वे इसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं। ये है ल्यूपस। इसे अक्सर अदृश्य बीमारी कहा जाता है क्योंकि इसके कई लक्षण असल में दिखाई ही नहीं देते।
0: ल्यूपस इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज, which means the body's immune system mistakenly attacks its own healthy tissues and organs.
1: और ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, उसमें त्वचा, जोड़ों को, किडनी, यहाँ तक कि दिल और फेफड़ों को भी ये प्रभावित कर सकता है। और इसमें मुश्किल बात क्या है? लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं।
0: Yes, and some people experience extreme fatigue, joint pain, skin rashes, fever or hair loss, while others may struggle silently because their symptoms aren't obvious to the world.
1: और इसमें जागरूकता इतनी ज्यादा मायने रखती है। ल्यूपस के कई मरीजों से अक्सर कहा जाता है, आप तो बीमार नहीं दिखते।
0: Yes, and comments like that can be really hurtful. World Lupus Day is not just about information, it's also about empathy, support and understanding.
1: समय के साथ लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और साथियों से कटाव महसूस हो सकता है जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ल्यूपस के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाकर हम ज्यादा मददगार रिश्तों को बढ़ावा दे सकते हैं।
0: Yes, and finding and strengthening connections with people who understand, such as others living with lupus, can play a vital role in reducing isolation and help individuals with lupus feel seen, supported and less alone.
1: इस वर्ष का विषय है ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं, क्योंकि अक्सर ल्यूपस अनदेखा रह जाता है और इसके लक्षणों को गलत समझा जाता है और इसके प्रभाव को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
0: And millions of people worldwide are living with lupus and many cases still go undiagnosed for years, which is why doctors and health organizations are pushing for earlier diagnosis, better treatment options and more medical research.
1: बिल्कुल, और हालांकि अभी ल्यूपस का कोई पूरी तरह से इलाज मौजूद नहीं है, फिर भी समय पर इलाज और सही देखभाल की मदद से लोग इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।
0: So today let's do one small thing, educate ourselves. If someone says they're struggling, believe them. Sometimes the strongest battles are the ones we cannot see.
1: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि क्या कुछ खास है उनके पास।
0: The Minister of Education will organize Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 in all schools across the country during summer vacations. And in a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities focused on self-introduction, vocabulary building, real-life conversations and cultural appreciation. The ministry added that this year the initiative also introduces Indian Sign Language as a special highlight, reinforcing the vision of inclusive and equitable education envisioned in the National Education Policy 2020. And the initiative was launched by Union Minister for Education Dharmendra Pradhan last year.
1: और अब चलते हैं सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के बारे में लेते हैं जानकारी, जहां प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से किया जाएगा। और जानते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।

0: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व
1: डे कोंकण फ्रूट फिएस्टा 2026 विल बी हेल्ड एट रोजरी हाई स्कूल ग्राउंड्स इन नेवेलिंग फ्रॉम 15 टू 17 मई ऑर्गेनाइज्ड बाय द एग्रीकोस एलुमनाई एसोसिएशन विद सपोर्ट फ्रॉम आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च द इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट एजेंसीज फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम गोवा महाराष्ट्र एंड कर्नाटक द फेस्टिवल एम्स टू प्रमोट लोकल फ्रूट्स स्पेशली मैंगोज एंड अदर प्रोड्यूस विच हैव सीन अ रिकॉर्ड हार्वेस्ट दिस ईयर ए फ्रेश फ्रूट

0: Competition will be held on 14th May. It is open to all with no entry fee. Winners will receive cash prizes and certificates on 17th May. The festival will be inaugurated on 15th May and will also feature a range of entertainment activities. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
1: और श्रोताओं, आपको अभी हम रिपोर्ट सुना नहीं पाए, हम दोबारा से लिए चलते हैं आपको सोमनाथ, जहां पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के उपलक्ष्य में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में हर्षोल्लास का वातावरण है। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार सोमनाथ

0: जहां पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के उपलक्ष्य में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में हर्षोल्लास का वातावरण है। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार सोमनाथ मंदिर जो पुनर्निर्मित है, इसके शिखर का कुंभाभिषेक 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से किया जाएगा। आइए सुनते हैं।
1: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व भक्ति और अस्मिता का प्रतीक बन गया है। पिछले दो दशकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सोमनाथ मंदिर की विकास यात्रा स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुकी है, जिससे भक्ति और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कल आयोजित होने वाली ध्वजा पूजा और महापूजा के दौरान भक्तिमय वातावरण बनेगा। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा प्रभास पाटन की धरती पर रोमांचक और दिल करने वाले हवाई कर्तव्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई निरीक्षण तथा एयर शो का रिहर्सल किया गया, जिसके चलते आकाश में रोमांचक दृश्य देखने को मिले। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्ति में लीन दिखाई दिए। पर्व के दौरान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा, समुद्र दर्शन पथ, मारुति हाट तथा लाइव एंड साउंड शो भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। परिक्रमा के लिए मयूर सोलंकी, आकाश सोमनाथ।
2: In a major push to strengthen the startup ecosystem in Jammu and Kashmir, the Greenovator Incubation Foundation, GIF, at the National Institute of Technology, Srinagar NIT, awarded ignition grants to 10 emerging startups under Cohort 2.0 during the Ignition Grant Felicitation Ceremony 2026, held recently at the NIT Srinagar. We have a report.
3: In his message, Director, National Institute of Technology, Srinagar, Professor Binod Kumar Kanojia said that such initiatives show the institute's commitment to promoting innovation and entrepreneurship among youth. He said that incubation support along with financial help allows young innovators to turn their ideas into meaningful solutions for society. Principal Investigator of Greenovator Incubation Foundation, Dr. Saad Parvez, said there's a need to build a strong culture of innovation in academic institutions. He noted that incubation centers help young entrepreneurs and stressed the importance of linking research, innovation and entrepreneurship for economic growth. Talking to Parikrama, Dr. Parvez said,
4: जो आइडिया जनरेटर्स हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं, उन आइडिया जनरेटर्स को हम स्टार्टअप का एक रास्ता दिखाएं और वी हैव टेकन देम एज स्टार्टअप एट GIF एनआईटी श्रीनगर। इनकी जर्नी शुरू हो गई है। इस जनरली हम इसको जर्नी फ्रॉम माइंड टू मार्केट कहते हैं, बिकॉज दे हैव दोज आइडियाज। इनके अपने आइडियाज हैं, वो आइडियाज जिनमें हमको बिजनेस का एक स्कोप लगता है। डेवलप दोज आइडियाज, बेसिकली ITBI में हम जो आइडियाज डेवलप करते हैं अंडर दिस स्कीम, वो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड है। सो इनके पास छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज हैं जो कल सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट की शेप में मार्केट में आएंगी, और वी विल लुक दैट दीज न्यू प्रोडक्ट्स कॉज सम डिसरप्शन इन द मार्केट। तो इस डिसरप्शन से एक बिजनेस क्रिएट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ये पर्पस है हमारा इन स्टार्टअप को सपोर्ट करने का।
3: डॉक्टर साद परवेज फर्दर टॉक्ड अबाउट द यूनिक इनिशिएटिव।
4: हमारी नेशन में आजकल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट, हमारा भी ये एक रोल बनता है कि हम कैसे इन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक फर्दर डेवलप करें, जो इनोवेटर्स हैं, आइडिया जनरेट हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि दे बिकम द बीकन ऑफ बिजनेस जॉब सीकर्स। वी वांट टू मेक पीपल जॉब क्रिएटर्स एंड जॉब गिवर्स। तो ये हमारा पर्पस है।
3: ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन एट NIT वाज एस्टैब्लिशड इन 2022-23 एज अ सेक्शन 8 कंपनी विद द एम ऑफ फॉस्टरिंग एन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी इन द रीजन। इट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द ITBI निधि स्कीम, विद डॉक्टर साद परवेज सर्विंग एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड प्रोफेसर राकेश सहगल एज co-principal investigator. Parikrama, Tariq Rather, Akashwani News, Srinagar.
0: और अब खेल के मैदान से जीत की खबर। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मुहूर्त शामिल थीं।
2: Yesterday in IPL cricket, Lucknow Super Giants were 146 for 5 in 14 overs against Chennai Super Kings at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. When reports last came in earlier, Chennai Super Kings won the toss and opted to bowl. In another match of the day, Royal Challengers Bengaluru will face Mumbai Indians in Raipur, and the match is scheduled to begin at 7:30 p.m.
0: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती।

जिंदगी को गीतों में उतार देने वाले कैफी आजमी साहब की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार गीत लिखे हैं और हीर रांझा जो 1970 में आई थी, कैफी साहब ने एक इसमें इतिहास कायम किया। उन्होंने पूरी फिल्म शायरी में लिखी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनकी फिल्म टूटे खिलौने के गाने भी उन्होंने ही लिखे हैं। आइए एक गीत उनका हम सुनते हैं।

0: Yes, and we also remembering Bono, who was born on this day 1960. He is the Irish lead singer, songwriter and musician for the rock band U2, which he fronted since 1976. Known for his powerful vocals, emotional performances and sunglasses clad style, he's also a globally recognized humanitarian activist and entrepreneur.
1: पारिवारिक मूल्यों की फिल्मों के लिए लोकप्रिय राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या की आज जयंती है। फिल्म निर्माता ताराचंद ने 1960 से 1980 के दशक तक पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति पर आधारित कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों का निर्माण किया, जो अपनी सादगी और पारिवारिक कहानियों के लिए जानी जाती हैं। आइए सुनते हैं गीत गाता चल, जो उन्होंने निर्माण किया फिल्म से एक गाना।

0: और इसके साथ ही इजाजत दीजिए जागृति और अभिषेक को, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप हमारा प्रसारण डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: थी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, पंडोपारा, सुखरी भंडार, कोरवापारा, बरपारा, कठबुड़ा, कंडराजा, बैरडाण, पतरापारा, दांतीढाब, घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आम गांव, पोटिया, क्रोंधा, प्रेमनगर, बेहरामार, औरानारा, कुड़ेकेला, सिंघी छाप, डोंगा भावना, हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझड़, डडईपानी, नगरार, खोलापारा, जिडार, छिंदौला, तौरेंगा, कावारामा, डूमर घाट, कोदोमाली, कोनारी, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धमतरी वन मंडल के दुगली में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चार गांव जबर्रा, तुम्बहरा, डूंगरडूला, गज कन्हार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथ

आइए पहले हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। स्वर धरोहर सुनिएगा 8:15 पर, स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा 8:30 पर और रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में सुनिएगा विद्वान श्री डी श्रीनिवासन का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। इसमें आज की बात में चर्चा का विषय होगा इरादे नेक हों। राग नंदिनी में सुनिएगा राग चारों केसी का परिचय और पंडित भीमसेन जोशी का परिचय, साथ ही उनसे जुड़े गीत। साथ ही सुनिएगा सवालों के आईने में और फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी में 6:05 पर सुनिएगा बालोद जिले की चिट्ठी, आलेख होगा जयप्रकाश सिन्हा का। कानून की बात इस कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी, विशेषज्ञ होंगे षष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री मनीषा ठाकुर। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी। 7:21 पर किसान साथी सुन सकेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। इसमें सुनिएगा दलहन के प्रसंस्करण ले बढ़ावन आमदनी विषय पर आज की बात में चर्चा। आज की सलाह का विषय होगा ग्रीष्मकालीन सब्जी मां कीट नियंत्रण, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ऋचा चौधरी, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र महासमुंद। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:00, 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

कल रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन पब्लिक स्पीक, कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा धरोहरों का संरक्षण जिम्मेदारी किसकी विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी होंगे हसन खान, प्रभाकर चौबे और राहुल सिंह। संचालन करेंगे डॉक्टर रमेश नैयर। कल सुबह 9:00 सुनिएगा वार्ता, विषय होगा साइबर लिटरेसी और हिंदी में एआई का उपयोग। जानकारी देंगे आकांक्षा सराफ। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण ही संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: बात करने आ गए हैं आपके दो रेडियो दोस्त, मैं सिद्धांत शुक्ला
1: और मैं राजलक्ष्मी। तो स्वीकारिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: सिद्धांत, इतना शांत क्यों बैठे हो भाई? तुम किस विचार में खोए हुए हो आखिर?
0: हमारे देश में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। बस उसी कहावत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: अरे, इसमें इतना क्या समझना? इसका मतलब नेकी करो यानी अच्छा काम करो, और अच्छा काम करने के बाद उसी पर उलझे मत रहो ताकि अहंकार से बच सको।
0: कभी कभी लगता है ना, इंसान की असली पहचान उसके शब्दों या उसके काम से नहीं बल्कि उसके इरादों से होती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि काम तो हर कोई कर लेता है दोस्तों, लेकिन हर काम के पीछे जो सोच होती है वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। वैसे भी इरादा यानी मन का वो संकल्प, वो नियत जो किसी काम को करने से पहले ही तय हो जाता है।
0: और यही वजह है कि दो लोग एक जैसा काम करते हैं लेकिन उनका असर अलग अलग होता है, क्योंकि इरादा अलग अलग होता है।
1: बिल्कुल, जैसे कोई मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे दिखावा करना है, और कोई इसलिए क्योंकि उसे सच में किसी का दर्द समझ आता है। काम दोनों ने किया लेकिन एक के अंदर सुकून होगा और दूसरे के अंदर सिर्फ दिखावा।
0: सच में कई बार हमने देखा है कि छोटे छोटे काम भी दिल को छू जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता।
1: और यही तो नेक इरादे की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में दिख जाता है।
0: मतलब अगर दिल साफ है तो बात अपने आप साफ हो जाती है।
1: बिल्कुल, और एक बात और, नेक इरादा कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप बस अपना काम करता है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ जाता है।
0: आजकल एक चीज महसूस होती है, लोग काम करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
1: और यही से फर्क शुरू होता है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो इरादे धीरे धीरे दिखावे में बदल जाता है।
0: और जब इंसान खुद से जुड़कर काम करता है साथियों, तो वही काम सच्चा बन जाता है।
1: नेक इरादा वही होता है जिसमें कोई छुपा हुआ मतलब ना हो, बस एक सच्ची भावना हो।
0: और शायद इसीलिए ऐसे लोग ज्यादा शांति में रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को साबित नहीं करना होता।
1: बिल्कुल, नेक इरादे का सबसे बड़ा फायदा यही है, आपको अंदर से सुकून मिलता है।
0: और ये सुकून ही असली सफलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो कभी भी बदल सकती है लेकिन अंदर की शांति ही इंसान को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल, और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है, अगर आपके इरादे साफ है तो रिश्ते अपने आप मजबूत होते हैं।
0: हाँ, क्योंकि वहाँ कोई शक नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस होती है तो एक सच्चाई।
1: और जहाँ सच्चाई होती है दोस्तों, वहाँ विश्वास अपने आप ही आ जाता है।
0: कभी कभी लगता है दुनिया को बदलने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस इरादे बदलने की जरूरत है।
1: सही कहा, अगर हर इंसान अपने छोटे छोटे कामों में भी नेक इरादा रखे तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा।
0: और शायद यही सबसे आसान रास्ता भी है, क्योंकि इसके लिए किसी भी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बस होना चाहिए तो सिर्फ दिल साफ।
1: बिल्कुल, और दिल तभी साफ होता है जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं।
0: मतलब असली लड़ाई बाहर की नहीं, लड़ाई है तो सिर्फ अंदर की।
1: बिल्कुल, जब इंसान अपने इरादों को समझ लेता है ना दोस्तों, तो उसका हर कदम सही दिशा में चलने लगता है।
0: और तब उसे रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, रास्ता खुद बनते चले जाते हैं।
1: और यही तो जिंदगी की खूबसूरती है साथियों, नेक इरादे कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो किसी ना किसी रूप में वापस जरूर आते हैं।
0: और शायद इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कर्मों से नहीं अपने इरादों से बड़ा बनता है।
1: और जब इरादे अच्छे होते हैं तो इंसान खुद भी अच्छा बन जाता है।
0: बस यही कोशिश होनी चाहिए दोस्तों कि हमारे हर काम के पीछे एक सच्चाई हो, एक भलाई हो,
1: क्योंकि आखिर में दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने इरादों को बदलना जरूरी है।
2: मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दसवीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट

0: डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: दोस्तों, इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे क्रम राग नंदिनी की ओर, जिसमें आज आप सुनेंगे राग चारुकेशी का परिचय एवं संबंधित फिल्मी गीत तथा पंडित भीमसेन जोशी एक परिचय। वाचन स्वर है अंकिता शर्मा का, आलेख और संपादन है बीरभान साहू का, और प्रस्तुति है सुमिता रॉय बर्मन की।

संगीत प्रार्थना है, सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं। शास्त्रीय संगीत का उद्गम महान संतों से हुआ है। अगर पहले दीपक राग से आग लगती थी या मल्हार राग से बारिश होने लगती थी, तो यह चमत्कार उन संतों का ही था। सिर्फ रागों का असर नहीं, स्वर में असर के लिए सिर्फ कलाकार ही नहीं, संत भी बनना पड़ता है। संगीत साधकों के लिए शहनाई नवाज पीर बख्श साहब के इस संदेश के साथ स्वीकारे अभिवादन, नमस्कार। आज का अंक केंद्रित है राग चारुकेशी और महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी के परिचय पर। आइए कार्यक्रम के आरंभ में जानें राग चारुकेशी के संबंध में।

राग चारुकेशी मूलतः कर्नाटक संगीत पद्धति का राग है। चारुकेशी 26वीं मेलकर्ता का जन्म दक्षिणात्य पद्धति से उत्तरी संगीत 50-60 साल पुराना है। इस राग को उत्तर भारतीय संगीत परंपरा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंडित श्री कृष्ण नारायण रातन जनकर जी को है। इन्होंने इस राग में कई बंदिशों की रचना की है। गायक तथा वादक दोनों वर्ग में यह राग काफी लोकप्रिय रहा है। इस राग में धैवत तथा निषाद स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं। प्रिय चारुकेशी मनसिज मनोहारिणी चंद्रमुखी सुंदरी नैव विद्यते उपमाते हृदताया व्याकुलोश्यम रजनी वरोहत गर्वे मलान मुख संकुचित फल शिवशेषाश्रित स्रस्तस्ते रमणीय तरताया। इस राग को रागदारी स्थान प्राप्त कराने का श्रेय पंडित श्री कृष्ण नारायण रतन जनकर जी को जाता है। इस राग में उनकी सर्वप्रथम रचना संस्कृत भाषा में रचित है। चर्चा को आगे विस्तार दें इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं राग चारुकेशी पर तैयार फिल्म गीत गाता चल का यह प्यारा सा भजन।

गीत सुनते ही मन में एक भाव तैर रहा था कि राग चारु केंची बहुत ही भाव प्रधान एवं मधुर राग है। जैसे कि हमने पूर्व में बताया है कि इस राग में धैवत और निषाद स्वर कोमल प्रयोग होते हैं तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। सभी सातों स्वरों के प्रयोग से इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। राग का वादी स्वर पंचम तथा संवादी स्वर षडज है। राग का गायन वादन का समय दिन का दूसरा प्रहर माना गया है। चर्चा को विस्तार दें इससे पहले आइए सुने राग चारुकेंची पर तैयार फिल्म मेरे हमसफर का गीत।

अभी आपने सुना फिल्म मेरे हमसफर का यह प्यारा सा गीत। श्रोता साथियों, शास्त्रीय कलाकारों में आज नए जमाने के कलाकार नीलाद्री कुमार का बजाया राग चारुकेंशी खूब सुना जाता है। इसके अलावा सीकर घराने के उस्ताद सुल्तान खां का गाया पिया बसंती रे काहे सिताए आजा काफ़ी लोकप्रिय रचना है। राग चारुकेंशी की जब चर्चा होती है तो गीतकार इंदिवर, जिनका वास्तविक नाम श्यामलाल बाबू राय था, का जिक्र अवश्य आता है। उन्होंने फिल्म हिमालय की गोद में एक ही गाने को दो अलग अलग तरीकों से लिखा। पहले गाने के बोल थे, एक तू न मिला सारी दुनिया मिले तो क्या, मेरा दिल न खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या। दूसरे गाने के बोल थे, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। लता मंगेशकर द्वारा गाए ये दोनों गीत राग चारुकेशी पर कंपोज किया गया था, काफी लोकप्रिय भी हुए। राग चारुकेशी इतना मीठा राग है कि इस राग में जो भी रचना बनी है यादगार रही है। ये राग वियोग और भक्ति रस से सराबोर है। सुगम संगीत इस राग में बहुत सुंदर लगता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दीवाना का यह

ये तो था राग चारुकेंशी का संक्षिप्त परिचय। आइए अब परिचय प्राप्त करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार स्तंभ भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के संबंध में।

आलाप तो गायन की जान है, उसका आधार है। केवल आलाप ही कलाकार के व्यक्तित्व की पहचान होती है। यदि कलाकार शांत है, गंभीर है, तो उस्ताद अमीर खां की तरह उसका आलाप उसकी आत्मा का प्रतिबिंब प्रस्तुत कर देगा। संगीत साधकों के लिए यह अमर वाणी घोष करने वाले पंडित भीमसेन जोशी एक प्रयोगवादी कलाकार थे। केवल घराने पर टिके रहना जिन्हें पसंद नहीं था। उनका कहना था कि केवल घराने एवं गुरु की गायकी के अतिरिक्त कलाकार में अपना भी कुछ होना चाहिए। कोमल हृदय, भावुक, सहजता एवं सरलता के प्रतिमूर्ति पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के एक गांव में 1922 को हुआ था। पिता गुरुराज जोशी जाने माने शिक्षाविद और दादा भीमाचार्य जी जाने माने संगीताचार्य थे, पर बालक भीमसेन में संगीत की बीच माता जी से प्रस्फुटित हुई थी। 3 वर्ष की आयु में बालक भीम शहनाई वादकों, शादी के बैंड वादकों और भजन गायकों से प्रभावित होने लगे थे। यही कारण था कि वे इस छोटी से उम्र में भी उनके पीछे चल पड़ते थे। उनके इस लगाव के कारण उनके घर वाले उनके कपड़ों पर नाम पते की चीट लगा रखते थे, ताकि उनका लाडला कहीं खो न जाए। पंडित भीमसेन जोशी संगीत शिक्षा की तलाश में पुणे से मुंबई होते हुए संगीत सम्राट मियां तानसेन की नगरी ग्वालियर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने गुरु उस्ताद हाफिज कृष्णराव शंकर पंडित, राजा भैया पूंछ वाले, सवाई गंधर्व जैसे महान संगीत साधकों से शिष्यत्व प्राप्त कर ग्वालियर घराने के महानतम स्तंभ बने।

आपके प्रिय राग मियां मल्हार, तोड़ी आदि प्रमुख हैं। शास्त्रीय गायन के अलावा पंडित जी ठुमरी, दादरा, कहरवा जैसे अनेक रचनाओं का गायन कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमिट छाप छोड़ गए हैं। उनके गाए भजनों को सुनकर श्रोताओं को ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर से सरोकार हो गया हो। किराना घराने का सर्वाधिक लोकप्रिय गायक पंडित भीमसेन जोशी अनेक उपाधियों व सम्मानों से विभूषित किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी, मैसूर संगीत नाटक अकादमी, तानसेन व कालिदास सम्मान के साथ साथ भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रमुख है। मनमोहनी आवाज के जादूगर पंडित भीमसेन जोशी, जिनकी शास्त्रीय संगीत आत्मा थी और वे जब गायकी में तल्लीन होते थे तो मानो परमात्मा से यही विनती कर रहे हों कि मिले सुर मेरा।

आपने कुछ फिल्मों में भी गाकर उस फिल्म को अमर बना दिया, जैसे बसंत बहार फिल्म में केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले आदि। इनकी आवाज में एक विलक्षण जादू थी जो श्रोताओं को आत्मविभोर कर देती थी।

24 जनवरी 2011 को भारतीय शास्त्रीय संगीत का वह सितारा अनंत ब्रह्म में

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम रागनंदिनी, जिसमें आपने सुना राग चारुकैंसी का परिचय एवं संबंधित फिल्मी गीत तथा पंडित भीमसेन जोशी का एक परिचय। वाचन स्वर था अंकिता शर्मा का, आलेख और संपादन था बीरभान साहू का और प्रस्तुति थी सुमिता राय बर्मन की।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दसवीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
8: दोस्तों, आज है संडे और समय है क्रम सवालों के आईने में का। तो चलिए क्रम सवालों के आईने में अंक 101 के प्रश्न को जानने से पहले आपको बताते हैं अंक 100 के पांचों प्रश्न के सही जवाब और सही जवाब लिख भेजने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम।
0: तो अंक 100 का हमारा पहला प्रश्न था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
8: और इसका सही जवाब है 24 अप्रैल को।
0: तो दोस्तों, दूसरा सवाल था, UPI लाइट किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया?
8: और इसका सही जवाब है लो वैल्यू ट्रांजैक्शन विदाउट पिन, मतलब छोटे मूल्य का लेन देन बिना पिन के भुगतान।
0: तीसरा प्रश्न था, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए मुख्य है?
8: और इसका सही जवाब है दोस्तों, हाइपोथैलेमस।
0: चौथा प्रश्न था दोस्तों, भारत में सबसे कम उम्र की T20 इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर के रूप में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन है?
8: और इसका सही जवाब है दोस्तों, शेफाली वर्मा।
0: पांचवा सवाल था दोस्तों, छत्तीसगढ़ी जनउला का अर्थ बताएं, कांधे आए कांधे जाए, नेंग नेंग मा मारे जाए।
8: और इसका सही जवाब है मृदंग या बाजा। इसी के साथ चलिए अब आपको बताते हैं पांच सही जवाब लिख भेजने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनुष्का और तन्मय गजभिये। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय, जयकिशन, कुमारी, इंद्राणी, माया साहू। मगरलोट से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र, हियांश चंदन। धरसीवा बस स्टैंड से छेदुलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरैशी। कर्मा चौक से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साह।
0: रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश, कलिंद्री लहरे। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, लखनलाल देवांगन। सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। ग्राम भानपुरी मुसरा से आत्माराम यादव, सुखदेव, विदेशी, होमेश्वर, मनेश्वर, लाच्छी, तुलसी यादव। सहसपुर लोहरा दनिया खुर्द जिला कवर्धा से मुनीराम संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। ग्राम अमलीडीह कवर्धा से संतोष राजपूत, हेम प्रभा, पूर्वी, गौरव राजपूत।
8: जिला मोहला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभारानी, निखिल कुमार, नैतिक कुमार, पुष्पांजलि, स्वप्निल कुमार निषाद। ग्राम बंगला मटिया बालो से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, आशुमाला, आशुतोष अंगारे। जालबांधा से पारख दास साहू, किरण, सोनू, रेशमा, गुनीता साहू। ग्राम सलोनी से प्रियांशु, गौरव साहू। दुर्ग से सूरजभान साहू, कमलाबाई साहू। राजनांदगांव से देव

0: करण साहू, हेमा वेदांत, वैभव साहू, बेरला से दिनेश दिवांगन, सृजन रुपेश राजपूत,
1: ग्राम महीदही से हेमलता साहू, देव निशु, विभू साहू, ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता, गजेंद्र गुप्ता, जिला राजनांदगांव से तारा चंदू साहू, ओम माही, धर्मेंद्र साहू, दतरेंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरा मीठा, पारस मीठा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्बी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल गोस्वामी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल,
0: गंडे टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, ग्राम पुराना से धर्मेंद्र जंगेल, संत राम लोधी, नागेश्वर जंगेल, साहूकार लोधी, छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, खैरागढ़ से

0: कोहो का भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल।
1: गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन। ग्राम पुराना से धर्मेंद्र जंगेल, संत राम लोधी, नागेश्वर जंगेल, साहूकार लोधी। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा। खैरागढ़ से पूजा जंगेल, बेबी धारणी, रेखा, मास्टर ध्रुव जंगेल। बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा।
0: भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत, भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, अब्दुल मजीद कुरैसी, रेहाना बेगम। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, युवान हाथा, तनु तानिया, नित्या रजक। जवाहरलाल नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कामड़े।
1: तो ये थे साथियों पांच सही जवाब लिख भेजने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम। चलिए आपको बताते हैं चार सही जवाब लिख भेजने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम। दुर्गापारा संतोषी नगर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू, कान्हा यादव। कोरासी से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता, दीपिका साहू। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत वर्मा। रोहासी पलारी से श्यामलाल, युवराज साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, मुरली, नीरा, निधि, निखिल, यश, प्रयाण वर्मा। इसी के साथ चलिए अब आपको बताते हैं अंक 101 का हमारा पहला प्रश्न।
0: पहला प्रश्न है दोस्तों, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है।
0: तीसरा प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है।
1: हमारा चौथा प्रश्न, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है।
0: और हमारा पांचवा प्रश्न है साथियों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है।
1: तो दोस्तों इन पांचों प्रश्नों के साथ चलिए अब नोट कर लीजिए हमारा पता, जिसमें आप हमें इन सवालों के जवाब लिखकर भेजेंगे। तो हमारा पता है क्रम सवालों के आईने में युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निर्देशक, आकाशवाणी रायपुर, पिन है 492001।
0: हमारी ईमेल आईडी है साथियों aiorouth9@gmail.com। क्रम सवालों के आईने का सब्जेक्ट है Y12, इसे लगाना ना भूलें।
1: हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा दोस्तों, जल्दी से हमें पत्रों और ईमेल के द्वारा अपने सही जवाब लिख भेजिए।
0: फिलहाल के लिए क्रम सवालों के आईने में आपका और हमारा सफर बस यहीं तक।
1: सिद्धांत, जरा सोच कर देखो, अगर सुबह सुबह तुम्हारी बकवास सुनने वाला कोई ना हो या रात 2 बजे फोन करके गपशप मारने वाला कोई ना हो तो जिंदगी कैसी होगी।
0: हाँ,
1: एकदम बोरिंग है ना।
0: हाँ हाँ राजलक्ष्मी, बिल्कुल, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो आपके हर एक चीज से वाकिफ होते हैं और फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं।
1: और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जिंदगी के इस कॉकटेल में दोस्ती सबसे कड़क मसाला है।
0: तो राजलक्ष्मी, उन यारों के लिए जो आपकी परवाह करते हैं और जिनके लिए आप इस दुनिया की परवाह नहीं करते, उन दोस्तों के लिए सुनाते हैं क्रम फिल्मी संगीत में ये प्यारा सा गीत।

नीरज सेठ और कविता श्रीधर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कॉकटेल का ये प्यारा सा गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत दिया था प्रीतम ने। इसी के साथ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं क्रम फिल्मी संगीत की ये अंतिम प्रस्तुति।

0: निखिल डिसूजा की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म क्रूक का ये प्यारा सा गीत। गीतकार थे कुंवर जुनेजा और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। दोस्तों इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता देते हैं आपको कल के आकर्षण। कल की युवाणी सजेगी हिंदी में, जिसमें आप सुनेंगे हेलो युवाणी और क्रम दृष्टिकोण। इसी के साथ दीजिए आपकी दोस्त राजलक्ष्मी
1: और सिद्धांत शुक्ला को
0: इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की

0: 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। NTA ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। NTA ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में IPL क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। इसमें आज आप सुनेंगे बालोद जिले की चिट्ठी। आलेख है जयप्रकाश सिन्हा का।
2: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बालोद जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत बालोद जिले में 1 मई से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान प्रगणक लोगों के घर घर जाकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जिला कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने मकान सूचीकरण का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करने वाले 50 प्रगणकों को संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये भविष्य की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण का आधार है। श्रोताओं, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में भी 1 मई से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 7 मई को गुरूर विकासखंड के पलारी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 256 में से 73 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को ध्वनि श्रवण यंत्र और छड़ी का वितरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को निक्षय पोषण आहार और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं अर्जुनी गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में अर्जुनी क्लस्टर में शामिल 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत उपाध्यक्ष

0: अध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने ग्रामीणों को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने बीते 2 मई को बालोद जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं ग्राम सिवनी में संयुक्त जिला कार्यालय के पास निर्माणाधीन जिला और सत्र न्यायालय के भवन में अधिवक्ता कक्ष के दायरे को बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। श्रोताओं, जिले के डोंडी, भरीटोला और कुआगोदी लघु वनोपज सहकारी समिति में 4 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। जोनल अधिकारी और रेंजर जीवनलाल भोंडेकर ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 प्रति मानक बोरा मजदूरी निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने संग्राहकों से कहा है कि वे 50-50 पत्तों के बंडल बनाकर तेंदुपत्ता फड़ों में जमा करें। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बालोद जिले के छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 10वीं में करीब 66% और 12वीं में 77% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अर्जुंदा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र जीत गजेंद्र ने 95% अंक हासिल कर जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उमरादाह स्थित ब्लेज अकेडमी की छात्रा वंशिका शर्मा 10वीं की परीक्षा में 97.17% अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रही हैं। जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिला स्तरीय टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं के अलावा उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। श्रोताओं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद जिले की हिमांशी साहू ने राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। हिमांशी कन्नेवाड़ा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। जिला कलेक्टर ने इस उपलब्धि पर जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हिमांशी को सम्मानित किया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे बालोद जिले की चिट्ठी। आलेख था जयप्रकाश सिन्हा का। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। केंद्रीय गृह मंत्री ह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करिन और केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करिन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडीह ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। मंदिर में 9 मई ले ही 3 दिनी होतात्मक महारुद्र यज्ञ के आयोजन करे जावत है, जेमा लगभग 1,25,000 आहुति चढ़ाए जावत है। ये महायज्ञ अभी के वैश्विक परिस्थिति में शांति और मानुष कल्याण बर करे जावत है। अमृत पर्व के मुख्य आकर्षण काली 11 मई के होही, जब मंदिर के शिखर में प्रधानमंत्री डहर ले 11 पवित्र तीरथ ले लाए गए जल ले कुंभाभिषेक करे जाही। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरा देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाए जावत है। एकरे अंतर्गत काली 11 मई के बालोद जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा बताएं कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में होवैया ये कार्यक्रम श्रद्धा संस्कृति और हमर देश के विरासत के सुघर संगम देखे बर मिली। उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बलरामपुर जिला के ऐतिहासिक स्थल डीपाडी सामंत सरना में घलो काली स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। एक कार्यक्रम

0: नवा पीढ़ी में सांस्कृतिक जन जागरूकता और स्वाभिमान के भावना ला मजबूत करही। प्रदेश में होइया नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई बर नामांकन के कारज काली 11 मई ले शुरू होही, जेन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र मन के जांच 19 मई के करे जाही। उम्मीदवार मन 21 मई तक अपन नाम वापस ले सकी। वोटिंग ह एके चरण में 1 जून के होही, जेखर परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। सुरैया मल्ला बता दन कि नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 पद समेत कुल 82 पद पर चुनाव होही। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1126 समेत पूरा 1228 पद पर चुनाव होही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे के देश के तैयारी के समीक्षा बैठका करीन है। नई दिल्ली में आज एक बैठका में श्री शाह सरकारी एजेंसी मन के तैयारी के आकलन करीन, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, संसाधन के तैनाती और एजेंसी मन के बीच तालमेल के समीक्षा करीन। गृहमंत्री ह अवैया समय पर करे जावत बाढ़ निवारण उपाय के प्रगति के घलो समीक्षा करीन, जेमा जरूरी ढांचागत परियोजना के बचाव, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठका में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान ल रोके बर निर्माण, जरूरी राहत सामान और इलाज के तैयारी बर पर्याप्त भंडारण ल पक्का करे ऊपर गोट बात करेगी। प्रदेश में अभी आयोजित होवत सुशासन तिहार के तहत जगह जगह समाधान शिविर लगा के लोगन के समस्या ल मौका में ही निराकृत करे जावत है। इही कड़ी में काली 11 मई सोमवार के रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाही। एमा बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1 बजे तक आवेदन झोंके जाही। छत्तीसगढ़ में आने आने न्यायालय में काली लोक अदालत के आयोजन करेगी। एदारी के लोक अदालत में 7,92,000 ले ज्यादा मामला के आपसी समझौता ले निराकरण करेगी। उन्हें 52,14,00,000 रुपया ले ज्यादा के राशि के अवार्ड पारित होइस। लोक अदालत के शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा मुंगेली जिला न्यायालय ले करीन। ए मौका में प्रदेश के सबो जिला वर्चुअल माध्यम ले जुड़े रहीस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हा गर्मी के छुट्टी में देश के सबो स्कूल मन में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर के आयोजन करी। एक हफ्ता के एक शिविर भारतीय भाषा मन में गोटबात के तरीका सीखे, शब्द ल जाने, अपन परिचय देना, असल जिंदगी के बातचीत और संस्कृति के बड़े ऊपर केंद्रित होही। एकर उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण ल बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो बाचे समाचार कोती। केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेता मन के घोषणा कर दे है। देश भर ले चुने गए 42 ठन पंचायत ल ए इनाम दे जाही। पंचायती राज मंत्रालय ह बताई से कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 3 जून के नई दिल्ली में रखे जाही। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के बगीचा तहसील के सरडी ग्राम पंचायत ल स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में तीसरैया स्थान मिले है। मंत्रालय है बताइस कि विजेता पंचायत मन ल श्रेणी और स्तर के आधार में 50,00,000 रुपया ले लेके 5,00,00,000 रुपया तक के वित्तीय प्रोत्साहन मिली। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दे जावत है। धमतरी जिला के भटगांव है जल्दी राज्य के पहली अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनैया है। कलेक्टर के पहल में यहां रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करे जाही। ए केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और तुरते रोग निदान के सुविधा मिली। खास खास नस्ल के छेरी ल बचाए और बढ़ाए बर घलो काम करे जाही। किसनहा और युवा मन बर प्रशिक्षण के व्यवस्था होही। पहली चरण में 10 ले 12

0: स्थानीय युवा मन ल रोजगार मिलही अउ पशु सखी मन ल तकनीकी प्रशिक्षण दे के ओमन ल आत्मनिर्भर बनाए ऊपर विशेष जोर दे जाही। बिलासपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ह शक्ति जिला के चंद्रपुर थाना में पदस्थ ASI SN मिश्रा ल 20,000 रुपया के घूस लेवत रंगे हाथ पकड़े हे। आरोप है कि ASI ह बालपुर के रहिया एक झन मनखे ल कड़ा कार्रवाई ले बचाए बर 40,000 रुपया के रिश्वत के मांग करे रहीस। आज मदर्स डे में रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ह महिला बंदी मन बर वीडियो कॉलिंग के सुविधा शुरू करे हे। ए सुविधा ले अब महिला बंदी मन अपन परिवार और वकील ले सीधा वीडियो कॉलिंग ले गोट बात कर सकी। वीडियो कॉलिंग सुविधा बर जेल विभाग और BSNL के बीच अनुबंध हो है। उहें आज जेल परिसर में होए निश्चय कार्यक्रम में कौशल विकास के प्रशिक्षण पूरा करैया 38 महिला बंदी मन ला प्रमाण पत्र दे गईस। संगे संग जेल में अपन महतारी संग रहत 14 जन लइका ला विभाग कोती ले खास उपहार घलो दे गईस। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ह प्रदेश के जम्मो महतारी मन ला मातृ दिवस के शुभकामना दिन हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेले जाही। ये मैच संझा 7:30 बजे ले शुरू हुई। उन्हें 13 मई बुधवार के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होही। दोनों IPL मैच पर प्रशासन है सुरक्षा के कड़ा तैयारी करे है। अब जानथन मौसम के हाल। मौसम विभाग ह काली 11 मई के प्रदेश के एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना जताए है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गर्रा चले और गाज गिरे के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा के एक चक्रीय चक्रवाती घेरा है मन्नार के खाड़ी और ओखर ले लगे श्रीलंका के ऊपर फैले है। एकर अलावा एक ठन निम्न दाब के क्षेत्र ह दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी के ऊपर अवैया 48 घंटा में बने के संभावना है। एकरे असर ले काली प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का वर्षा हो सकत है। आखिरी में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग ली। केंद्रीय गृहमंत्री ह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करिन और केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करिन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडी ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्या वार्ताः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपादलस्य 6 नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। तमिलनाडुराज्ये TVK दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्रीपदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सहैव नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंता विश्वास शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अपि च शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासां परियोजनानां उद्देश्यः संपर्क सुदृढीकरणं कार्यक्षमतायाः उन्नयनं सुरक्षावर्धनं तथा जनानां कृते उत्तमयात्रानुभवस्य प्रदानेन सह सम्बद्धः अस्ति। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रे आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे तेलंगाना राज्यस्य राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तथा अन्ये वरिष्ठ नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण गृहीतानां उपाय

0: कानून की बात कार्यक्रम के आज के इस नवीन अंक में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती मनीषा ठाकुर जी। आप जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में सिस्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ होकर न्यायदान का कार्य कर रही हैं। मैडम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार, सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम आपसे सर्वप्रथम यह जानना चाहेंगे कि उत्तराधिकार से आशय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, कृपया सविस्तार बताएं।
1: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के परिपेक्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, अधिकार और दायित्व उसके उत्तराधिकारियों को मिलने की प्रक्रिया को उत्तराधिकार कहते हैं
0: जी।
1: यह अधिनियम हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख पर लागू होता है। हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को समान, न्याय संगत और व्यवस्थित बनाना इसका उद्देश्य है। यह

0: अधिनियम 17 जून 1956 को लागू हुआ था।
1: जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार के नियम किस तरह से लागू होते हैं, विशेष रूप से अधिनियम में हुए नवीन संशोधन के परिपेक्ष में कृपया हमें बतावें।
0: यह मानवीय स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में संपत्ति बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन, घर या व्यापार हो जो उसके पिता या दादा से उसे वारिसान हक में मिली हो तो ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने अपने स्वयं के आय परिश्रम से कोई अचल संपत्ति अर्जित किया हो तो उस संपत्ति को उसकी स्वअर्जित संपत्ति कहा जाता है।
1: जी।
0: यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का निपटारा उसके वसीयत के अनुसार किया जाता है। आगे श्रोतागण जानना चाहेंगे कि वसीयत क्या है, तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण के बारे में निर्देश देता है। वसीयत रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है तथा दो गवाहों से प्रमाणीकृत कराया जाना भी आवश्यक है।
1: जी हाँ।
0: अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी व्यक्ति को उसके पिता, दादा या परदादा से जो संपत्ति वारिसान हक में मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके पैतृक संपत्ति का वितरण या विभाजन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत दिए गए नियमों के अनुसार होता है।
1: जी।
0: यहाँ पर उल्लेखनीय है कि महिलाओं व पुरुषों की संपत्ति का वितरण अलग अलग नियमों के अंतर्गत होता है। हिंदू नारी की दशा में अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत उसकी संपत्ति का वितरण होगा। जैसे यदि उसकी निर्वसती मृत्यु होती है तब अधिनियम की धारा 15 के अनुसार पहले क्रम पर उसके पुत्र, पुत्री, पति वारिस होते हैं, दूसरे क्रम पर उसके पति के वारिस आते हैं, तीसरे क्रम पर माता पिता को और चौथे क्रम पर पिता के वारिसों को और अंत में उसके माता के वारिसों को संपत्ति वितरित या न्यायगत होती है।
1: जी हाँ।
0: यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हिंदू नारी की संपत्ति जिसे उसने चाहे जिस प्रकार से भी अर्जित की हो, जैसे विरासतन हक में, विभाजन में, भरण पोषण के बकाया के रूप में, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, दान पत्र या अपने कौशल या परिश्रम से क्रय की हो, स्त्री धन के रूप में मानी जाएगी और उक्त संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है जिसे वह किसी को भी दान, विक्रय या वसीयत कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: यदि कोई पुरुष की निर्वसती मृत्यु होती है तब उसकी संपत्ति का वितरण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत दिए गए नियमों के अंतर्गत होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया। हिंदू सक्सेशन संशोधित अधिनियम 2005 समझने के लिए हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को समझना होगा। धारा 6 हिंदुओं के सहदायिक संपत्ति के हित, अधिकार और वितरण या न्यायगमन संबंधी नियम है। इसमें सहदायिक संपत्तियों में हिंदुओं के अधिकार, हित का वितरण और या न्यायगमन किया जाता है।
1: जी।
0: इस धारा के तहत पूर्व में सहदायिक संपत्ति पर जन्म से केवल पुत्र को ही अधिकार या दायित्व दिया गया था। इस धारा की विशेषता को समझने से पहले मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व की स्थिति पर प्रकाश डालना चाहती हूँ।
1: जी हाँ।
0: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व ओल्ड हिंदू विधि लागू था जिसमें यदि किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसके सहदायिक संपत्ति को उसके पुरुष वारिसों में ही वितरित किया जाता था। दूसरे शब्दों में केवल पुरुष वारिसों को उसकी सहदायिकी या पैतृक संपत्ति पर हक अधिकार मिलता था। इस प्रकार उस व्यक्ति की विधवा को उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था।
1: जी।
0: बाद में हिंदू महिला का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1938 लाया गया। हिंदू महिला का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1938 के तहत विधवा को अपने पति की संपत्ति पर भरण पोषण का अधिकार मिला, जिसके तहत वह सिर्फ जीवन पर्यंत उस संपत्ति पर अपना तथा अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती थी। इस अधिनियम में कुछ कमियां थी। विधवा अपने पति की संपत्ति पर अपना खर्चा चला सकती थी पर उसे बेच नहीं सकती थी। इसके बाद आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस अधिनियम में भी कुछ कमियां थी जिसे दूर करने के लिए बाद में लाया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसके द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में व्यापक बदलाव हुए। सहदायिक संपत्ति में पुत्रियों को भी सहदायिकी माना जाने लगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में जो दिशा निर्देश दिए थे उसके बाद धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में व्यापक बदलाव किए गए। इस बदलाव के बाद

0: बेटी को भी सहदायिक संपत्ति पर पुत्र के समान जन्म से अधिकार दिया गया। इसके लिए पिता का जीवित होना अब आवश्यक नहीं रहा। यदि बेटी की शादी हो जाए तब भी उसका यह अधिकार समाप्त नहीं होता है।
1: जी हाँ,
0: अधिनियम 2005 20 दिसंबर 2004 से पहले जिस संपत्ति का विभाजन हो चुका है उस पर लागू नहीं होता है। अब इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। जैसे किसी रजिस्टर्ड विभाजन पत्र के जरिए संपत्ति का विभाजन 2004 के पूर्व हो गया है, उस समय पुत्री को सहदायिक नहीं माना गया था, इसीलिए 2005 के संशोधन का लाभ पुत्री को नहीं मिलेगा। अर्थात 2005 के पूर्व पुत्री संपत्ति में बंटवारा नहीं मांग सकती थी। पिता की मृत्यु पर उसे अपने पिता के अंश में से ही शेष वारिसों के साथ हिस्सा मिलता था, जैसे पत्नी पुत्र माता के साथ पुत्री को अंश मिलता था। इस प्रकार 2005 के संशोधन के पूर्व पुत्री को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर पिता की मृत्यु पर ही अंश मिलता था, किंतु 2005 के बाद पुत्री को सहदायिक संपत्ति पर पिता के पुत्र के साथ बराबर बराबर हक प्राप्त होने लगा। वह अपने मैके के सहदायिक संपत्ति पर बंटवारा भी मांग सकती है। इस प्रकार यह संशोधन केवल कानूनी बदलाव नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक समानता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
1: बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपके द्वारा हम सबको प्राप्त हो रही है। उत्तराधिकार से संबंधित तकनीकी पहलुओं और क्लिष्ट विधिक प्रावधानों के बारे में हमें कृपया विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करें।
0: जैसे अधिनियम में एक शब्द बहुत यूज होता है, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। कोपार्शनरी प्रॉपर्टी या सहदायिक संपत्ति पैतृक संपत्ति को ही कहा जाता है, किंतु वो संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है।
1: जी,
0: समानता पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि पार्टीशन के बाद हिस्सा अलग हो जाता है तो व्यक्ति अपने हिस्से को वसीयत कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का कोई वारिस न हो तो उसकी पूरी संपत्ति शासन को चली जाती है। दत्तक संतान को भी जैविक संतान के समान प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, किंतु अवैध संतान को केवल अपने पिता के स्वर्जित संपत्ति में ही सीमित अधिकार मिलता है।
1: जी।
0: इसी प्रकार वारिस आते हैं जो किसी निर्वसती की मृत्यु पर उसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, उन्हें वारिस कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वारिसों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्लास वन के हेयर्स, इसमें पत्नी पुत्र पुत्री माता मृत संतान के बच्चे आते हैं। दूसरा है क्लास टू के हेयर्स, इसमें पिता भाई बहन आते हैं। तीसरा है गोत्रज और चौथा है बंधु।
1: हम यह भी आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ तकनीकी अवधारणाएं हमको सुनने में मिलती हैं, जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, सपिंड, सहगोत्र, बंधु एवं निषेध प्रावधान। इसके बारे में भी सरल शब्दों में हमें बताएं।
0: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जिसे मृतक के वारिसान न्यायालय के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसमें मृतक के कर्ज व प्रतिभूतियां उनके वारिसों को प्राप्त होती है।
1: जी।
0: इसी प्रकार प्रोबेट होता है, ये भी एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें यह साबित होता है कि वसीयत वैध है और उसे लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार गोत्रज पिता से जुड़े रिश्तेदारों को कहते हैं, जैसे पिता के भाई का पुत्र गोत्रज कहलाता है। इसी प्रकार आता है बंधु। बंधु माता से जुड़े रिश्तेदार को भी कहते हैं और पिता से जुड़े रिश्तेदारों को भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मामा का पुत्र बंधु कहा जाता है। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति संपत्ति से वंचित हो सकते हैं जो हत्यारा हो या जिसने अपना धर्म बदल लिया हो।
1: जी।
0: उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है।
1: बहुत ही सरल शब्दों में अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में हमें आपसे यह बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो रही है। हिंदू व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबी व्यक्तियों के संबंध में उत्तराधिकार विधि के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं?
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत बहुत धार्मिक देश है। यहाँ कई प्रकार के पर्सनल लॉ प्रचलन में है, जिसमे मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन पर्सनल लॉ मुख्य हैं। मुस्लिम विधि की बात करें तो मुस्लिम विधि केवल मुसलमानों पर लागू होती है, इसके अधिकांश भाग अनकोडिफाइड हैं। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है, उसके जीवित रहते उत्पन्न नहीं होता है।
1: जी।
0: संपत्ति का बंटवारा कुरान और शरीयत के नियमों के अनुसार होता है। वारिसों के हिस्से पहले से ही निर्धारित होते हैं। व्यक्ति की मृत्यु पर पहले उसके कफन दफन का खर्च, यदि उसके कोई पूर्व कर्ज हो या उसने कोई वसीयत किया हो तो उसका एक तिहाई भाग पहले उसकी संपत्ति से निकाल लिया जाता है, फिर शेष भाग

0: का बंटवारा होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल एक तिहाई भाग ही वसीयत कर सकता है। मुस्लिम विधि में वसीयत लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है तथा उसे पंजीयन कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल वसीयत स्पष्ट होनी चाहिए। एक तिहाई से ऊपर की वसीयत किए जाने पर सभी वारिसों की सहमति आवश्यक है
1: जी।
0: मुस्लिम विधि में हिंदुओं के समान ज्वाइंट फैमिली की कोई उपधारणा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वतंत्र मालिक होता है। परिवार के सदस्यों का उसकी संपत्ति पर जन्म से कोई अधिकार नहीं होता है। मृत्यु पर ही वारिसों को अधिकार मिलता है। इसी प्रकार क्रिश्चियन लॉ में व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा वसीयत के अनुसार कर सकता है। इसमें व्यक्ति को विल करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। मुस्लिम विधि के समान फिक्स्ड शेयर नहीं होते हैं तथा भारत में क्रिश्चियन उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा नियंत्रित होता है
1: जी।
0: बिना वसीयत किए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी विधवा को एक तिहाई तथा उसकी संतानों को दो तिहाई संपत्ति वितरित होती है।
1: ये आपके द्वारा हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य जो धर्मावलंबी व्यक्ति हैं उनके बारे में भी उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान बताए गए। आपके द्वारा इस गूढ़ विषय के संबंध में बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सबको प्राप्त हो रही है। कार्यक्रम के अंत में इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, हम वह जानना चाहेंगे।
0: उत्तराधिकार अधिनियम केवल नियमों का संग्रह नहीं है बल्कि यह पारिवारिक संरचना, संपत्ति का अधिकार और सामाजिक न्याय का संतुलित तंत्र है
1: जी।
0: यह अधिनियम केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं करता बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करता है। उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिविल मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। आगामी नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर व समस्त तालुका व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्पेशल लोक अदालत 18 जुलाई 2026 व 21 नवंबर 2026 को भी आयोजित किया जाएगा।
1: आप अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए इन जानकारियों के साथ आकाशवाणी बिलासपुर में आई और यह ज्ञानवर्धक जानकारी हम सबको प्रदान की है। हम आकाशवाणी परिवार और हमारे श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आपका और आपकी पूरी आकाशवाणी टीम का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद।
2: कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी। विशेषज्ञ थीं सुश्री मनीषा ठाकुर, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर। भेंटकर्ता थे श्री विवेक पांडे, अधिवक्ता। प्रस्तुतकर्ता थीं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: खो गया इंतजाम।
6: किसका?
7: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: दीदी नौकरी लग गई।
9: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
8: हाँ दी नया मोबाइल।
9: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
8: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
9: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
8: पर दीप
9: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
8: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
9: अच्छा।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: तीनों कॉलेज में

0: फीस तो देखो।
1: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
1: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप

0: कहता है
1: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। ये महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण कल 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल डीपाडीह सामंत सरना में भी कल स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश में तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी बंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल हैं। बैठक में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान को रोकने के लिए निर्माण कार्यक्रमों और आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियों के पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से अब महिला बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से सीधे वीडियो कॉल के जरिए संवाद कर सकेंगी। वीडियो कॉलिंग सुविधा के लिए जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच अनुबंध हुआ।

0: है। वहीं आज जेल परिसर में हुए निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा करने वाली 38 महिला बंदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे 14 बच्चों को विभाग की ओर से विशेष उपहार वितरित किए गए। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की समस्त माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यह पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले के चंद्रपुर थाना में पदस्थ ASI SN मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ASI ने बालपुर निवासी एक व्यक्ति से कड़ी कार्रवाई से बचाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वहीं कोरबा जिले में SSCL कुसमुंडा के CMPF विभाग में पदस्थ लिपिक मनोहर लाल कौशिक को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के दल ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लिपिक ने एक खदान कर्मी से उसके PF के 5 लाख रुपए निकालने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। धमतरी जिले का भटगांव जल्द ही राज्य का पहला अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनने जा रहा है। कलेक्टर की पहल पर यहां रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और त्वरित रोग निदान की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्नत नस्लों के संरक्षण और प्रजनन पर भी काम किया जाएगा। किसानों और युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। प्रथम चरण में 10 से 12 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पशु सखियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल 11 मई को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का एक चक्री चक्रवाती घेरा मन्नार की खाड़ी और उससे लगे श्रीलंका के ऊपर विस्तारित है। इसके अलावा एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 48 घंटे में बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य युवक झुलस गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने रायपुर मंडल के बिलासपुर रायपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल संरक्षा, परिचालन, कार्यप्रणाली, स्टेशन

0: डेवलपमेंट, अमृत भारत स्टेशन परियोजना और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। रायपुर पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14.5 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसी जिले के पचधारी पिकनिक स्पॉट में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: का
8: स्वागत है। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
8: तेरी वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
11: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
11: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
11: चलो,
10: कहाँ
11: एडमिशन कराने?
8: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
12: ब्रो, ये फटा है।
13: सुन, कते फते है पुराने नोट को?
14: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
13: वाओ, नया नोट मिलेगा?
15: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
14: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो कूल रहो।
16: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए रास फिल्म का ये गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 12 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा पहला फ़ोन नंबर है 4003482, हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 4003483 और हमारा तीसरा फ़ोन नंबर है 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2000

26 को 11:30 से लेकर 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 में किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अक्सर फिल्म का ये गीत हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। समीर का लिखा गीत है, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कमाल खान की आवाज में द डर्टी पिक्चर फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं रजत अरोरा, संगीतकार हैं विशाल शेखर।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: लगाए रहीन कतकुन मन हर रवि के धान लगाए रहीन और अब बारी है ओला बेच के अपन अधूरा काम ला पूरा करेगी।
1: बिल्कुल सही कहा था पूजा। देखो उन्हारी के बाद कतको झन किसान मन तो उड़द भी लगा है।
0: हाँ,
1: गर्मी
0: फसल
1: माने के मन तीन फसल ले हुआ थे तो ज्यादा लाभ कमाना है तो तीन फसल धान जाना गलो जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया
1: है ना। लेकिन जैसे कहे ना कि अनाज किसान भाई मन तीर आते तो कुछ दिन रख के बाजार के में भाव पता करते कहूँ भाव बने मिला था अभी तुरते बेचते और कतको झन का रखे जगह नहीं रहा है भंडारण के जगह नहीं है या फिर पानी बरसात मौसम में देखते हुए तुरते ब्यारा ब्यारा हुआ अपन फसल ल बेच देते तो कतको झन मन थोकिन जुगाड़ करते कि भाई बाद में हमन बेचबो ज्यादा फायदा होगी
0: मिले के बाद।
1: लेकिन कोनो भी अनाज हो सीधा सीधा बेचबे ना तो उतका फायदा नहीं मिले जितना मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: कहूँ हमन अपने अनाज से ज्यादा फायदा कमाना चाहथन तो किसान भाई मन प्रसंस्करण रहन जाल पड़े।
0: बिल्कुल सही कहा था भैया। और अभी दलहन के फसल के जैसे हमन गोट करन ना तो ओला सीधा सीधा कच्चा फसल ला बाजार में बेचबो ना तो हमला बने भाव नहीं मिल पाए और यही चला दाल बना के या फिर आटा बना के या कुछ दूसर जिनिस बना के बेचबो ना तो ज्यादा लाभ हो।
1: देख पूजा का कोनो भी अनाज हो है ना ओला खड़ी बेचबे तो जो फायदा है वो अच्छा ढंग के नहीं मिल पाए बल्कि आने आने उत्पाद तैयार कर बे तब अच्छा फायदा होता है। एक मतलब ये है कि कोनो भी फसल के आने आने उत्पाद तैयार करके उदीम लही हमन प्रसंस्करण कथन एक से भंडारण में सुविधा होते लोगों ला रोजगार मिलते और अनाज के मूल्य घलो ज्यादा बिड़ते संगे संग गुणवत्ता में बढ़ोतरी होते।
0: बिल्कुल भैया जैसे चना के गोट करन हम तो चना ला सीधा सीधा बाजार में बेचबो ना तो लगभग 5500 रुपया प्रति क्विंटल मिल पाही। फिर यही ला अगर दाल बना के बेचबो तो 90 से 100 रुपए तक प्रति किलो भाव मिल ही। कहे के मतलब यही ये है कि चीज वही चाहे प्रसंस्करण ले मूल्य में बढ़ोतरी होती।
1: बिल्कुल सही कहा था सब। देख प्रसंस्करण के लिए नवा शब्द लगते हैं मतलब है ना एक वैज्ञानिक शब्द लगते लेकिन प्रसंस्करण करे के जो तरीका है पारंपरिक तरीका हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मन बहुत पहले करत आते सीमी ज्यादा फर गए नान अच्छा गहात गया मौसम बढ़िया हो गए तो क्या करते हो
0: खोइला बना के रख दे थनोला ताकि जब सब्जी नहीं मिले हरा साग नहीं मिले तब बोला बना ले और अपन उपयोग कर ले
1: खाते घलो बढ़िया।
0: बिल्कुल
1: इसने में बोइल भी दे मर जान झोला धर के बराबर झोला झोला बोइल लावन और पूरा छानी भर टाटी में है ना सुखोक रखन वाला ओकर बाद का करन ढेकी में कूट के बोर मुठिया बना
0: बोर मुठिया बना
1: एक प्रकार के प्रसंस्करण है।
0: बिल्कुल
1: बाद में खाए बार है ना।
0: और जैसे अभी यदि आमा बहुत आवा थे आमा खोइला कर लो कर देते अब जैसे कोनो खट्टा साग रांधे दही मई नहीं तो आमा की खोइलच में रांधे तो ऐसा ढंग के मतलब वो बाद में हमला उपयोग करे में आसानी भी होते और मिठा थे घलो की
1: उसी तिवरा भाजी खोइला हावे पड़े तोला निकाल और बना जो जो दाल भी है ना वो सीधा सीधा प्रसंस्करण ही हर एक प्रकार से। लेकिन देखो अब संभावना तलाश रहे हमारे युवा किसान मन प्रसंस्करण रहा तो छोटे छोटे दाल मिल डाल सकते हैं आस पास के किसान मन से बढ़िया संबंध है तो मतलब जागरूक कर सकते कि भाई हमन सीधा सीधा नहीं बेच के आप हमला बेचो या हमन सब जन सामूहिक रूप से मिलके दाल मिल डालथन और दाल मिल डाले के बाद दाल ओला दलबो हमन बढ़िया अच्छा से छोटे दाल अलग करो बड़े दाल अलग करबो और पैकिंग करबो पैकिंग घलो प्रसंस्करण हर एक ठो अच्छा से पैकिंग कर लेते हैं अपन ब्रांड के नाम दे दे हो सकते कुछ हो गए तो अच्छा से ब्रांड के नाम दे दे और जितका भी तोर पास दलहन फसल है वो दलहन फसल ला बढ़िया पैकिंग करके अब आसपास की दुकान में बेच सकते हो ऊपर से आप अच्छा फायदा होगी और हो सके तो फिर ज्यादा बड़े पैमाना हो गए तो आजकल लिखता ना हम शहर में माल मन में सब रखा रहते हैं अलग अलग प्रकार के दालों में रेट लिखा रहते हैं कम करना ज्यादा करना है कम करवा वाला बातें नहीं होंगे। हाँ तो एक ब्रांड बन जाए तो फिर आप लोग बहुत फायदा होगी प्रसंस्करण से
0: और प्रसंस्करण पर तो भैया सरकार घलो बहुत करना योजना चलावा थे कि युवा मन आगे आकर के काम करे एक बार सरकार घरों बहुत योगदान देवा थे वो काम करा थे।
1: जैसे कि एक बात करना लोन के बात करना है ना तो भाई शासन चाहते कि छोटे मोटे उद्योग या आप काम करना चाहते हो तो आपके पास पैसा नहीं है तो शासन हाँ लोन दे के भी वो भी बिना ब्याज के लोन देते अलग अलग प्रकार के योजना है मन के आप चाहो तो अपन आस पास के जो कृषि विस्तार अधिकारी है संपर्क कर सकते हो कि हमन उन पर का योजना है करके या आप कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके शहर में है ना जिला अधिकारी है वहाँ भी जाके आप पता कर सकते हो कि किसान किसान ढंग की योजना छोटे छोटे लघु उद्योग डाले पर हम मिलत करके खासकर महिला समूह है जैसे दोना पत्तल बनाना है कुछ कुछ करना है हुमन भी ये सब काम अपन जो अनाज के प्रसंस्करण के काम है वो कर सकते हैं। अभी दाल बात करें तो बरी बिजौरी बनते
0: हैं। बिल्कुल
1: दाल ज्यादा है आपके यहाँ तो बरी बना

0: राम राम निर्मल भैया।
1: राम राम पूजा संगे संग चौपाल सुनिए जम्मो संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम, राम। भैया हमन अनाज के उत्पादन करथन और ओला बाजार में बेच के अपन खर्चा पानी के व्यवस्था करथन और अभी कतकोन किसान मन ह उन्हारी

0: थे। कतको झन मन उल भजिया बना के बेचते अपन घर के दाल होवत, यहू एक प्रकार के प्रसंस्करण हरे। मनी में ज्यादा आप लाभ मिलते और रोजगार घलो बहुत झन लोग मिलते। देख आप दाल मिल डाले दू चार झन चलैया चाहिए, पैकिंग करे तो पैकिंग करैया चाहिए, फिर पैकिंग कर दे तो बाजार तक ले गईया चाहिए। अब एक जतका फायदा हुई सीधा सीधा आप लोग हुई, बीच में कोनो बिचौलिया नहीं है। तो किसान भाई मन चाहे तो गांव के कुछ किसान मिलके, युवा किसान मिलके, या फिर आसपास के जतका भी किसान है ओला मिला के बढ़िया से प्रसंस्करण हम ध्यान देवे, छोटे मोटे ही सही लेकिन ये शुरू करें तो मला अच्छा फायदा होई। एकरा अलावा एक ठनो बात है बुझा कि कहूँ हमन हा ये अनाज ला जैविक तरीका ले उत्पादन करत हन, तो आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू से लेके कि आप खेती किसे करत हो ओकर पूरा वीडियो फोटो या फिर कोनो कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक के द्वारा कुछ बोले जाते हैं आपके खेत के बारे में, ओकर छोटे छोटे बाइट बना के आप यूट्यूब में डाल सकते हो अपन खुद के चैनल बना के, है ना। और जैविक खेती नाम से चैनल बना हो कहूँ आप ओला लोगों ने देखा थे तो आपके जो खेत के उत्पादन है जो अनाज है ओकर भाव हुआ 2-3 गुना तक ज्यादा मिले। जैसे चावल है तो चावल 100 रुपए किलो से ऊपर मिलते। धमतरी जिला के कुरुद ब्लॉक के कुछ कुछ किसान है ओमन जैविक खेती करते और हर चीज को उत्पादन करते, छोटे से लेके जतका भी खाद धनिया मसाला मिर्चा जो भी है उत्पादन करते होकर वो मन है ना अपन समूह बना ले और समूह बना के जैविक खेती के नाम से अपन उत्पाद बेचते होकर उत्पाद हो दूसरा दूसरा प्रदेश में जाते हैं। मांग अतका है कि उन पूर्ति नहीं कर पाते, यानी 100 रुपए ज्यादा होकर चावल बिकते हैं किलो में। तो आप सोच सकते हो कि हम हाँ जब 20-25-30 रुपए में बेचा था अपन धान ला, वो करो मन चावल ला 100 रुपए से ऊपर में बेचा थे तो डबल फायदा हुआ थे। तो कहे के मतलब है कि किसान भाई मन थो कि न तकनीकी घलो उपयोग करना है, प्रसंस्करण हम ध्यान देते हुए अपन अनाज के उत्पादन ला बढ़ाना तो है ही बल्कि आमदनी ला घलो बढ़ाना है, तो सब चीज जहाँ ध्यान दे पड़ी। और अभी बेरह तो कि संदेश के बाद फिर आगे गुड़ बात करो।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: Oh, lovely. Well done.
1: Business loan approved.
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
8: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: पूजा, ऐसा लगा थी गर्मी बहुत बढ़ गए, लेकिन अब कुछ दिन से देखा था कि सांझ कुन हवा तूफान आते, ओकर बाद कहूँ कहूँ कर बढ़िया पानी गिरते, मौसम ठंडा हो जाते, लेकिन किसान हो नाते सोचा ना मन, हाँ तो अभी धान के फसल खड़े है रबी वाला, तो वो किसान मन चिंतित है, और कतको झन किसान मन तो उड़द लगा है, ज्यादा पानी गिर गए और खेत में भर के पानी है, तो उड़द बड़ा अच्छा बात नहीं है।
11: अच्छा,
10: है ना, तो ये तो किन नुकसान वाला भी बात है, लेकिन कैसे जैसे भी है, कहते ना खेती जुआ हर के खेती अपन खेती, तो भाई सबो परिस्थिति से लड़ते हुए हमारे खेती किसानी करना है, लेकिन हारना नहीं है। क्या पता ये साल तो बढ़िया दलहनी फसल पर मौसम बढ़िया साथ दी से, और लेकिन अभी जैसे धान के बात हुआ थे तो धान घलो बढ़िया ढंग के हो जी, कुछ दिन में बढ़िया धूप रहते तो कर हम लाभ लेके मौसम के हिसाब से झिल्ली वगैरह है ना, पाल है, ये सब की व्यवस्था करके रखबो, और कतको सार्वजनिक जगह बन गए है, तो सब गांव में जगह जगह ढला घलो गए, बाजार चौक ढला गए है ना, और शेड घलो बने बने जगह जगह, तो वो सब शेड के उपयोग करते हुए बारी बारी किसान मन थोड़ी सामंजस्य बिठा ले,

0: कि भाई आज मैं धान काटने के लिए नहीं हूँ, आपके हो गए तो आप 2 दिन सुखा लो यहाँ ला के बढ़िया, तन कल से मैं काटूँ, एक ही दिन कहूँ हम सबो धान ला कटवा दें तो हमारे थोड़ी ना सुविधा भी हो सकते है। यदि हमारे पास जगह है रखे की भंडारण करे की तब तो ठीक है, लेकिन भंडारण करे की जगह नहीं है, हम चाहता कि सार्वजनिक जगह में ही भंडारण करन, सामुदायिक भवन के आसपास जगह है वो में करन, तो बाकी दूसरा करे तो फिर मतलब तकलीफ हुई। ये सब बात के ध्यान रखन तो सबो जन की अपन काम बढ़िया नहीं पटही, और हमन हाँ जो बेमौसम कुछ आते ओकर से बांच सकथन, तो भाई अभी तो किनो एक कनी विराम के बेरा है, ओकर बाद फिर आगू बढ़बो।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: तो पूजा एक और बात तो बहुत अगर कर रहे, लेकिन आगू बढ़े पहले सुनथन सुघर अगन गीत बैतराम साहू के स्वर में।

0: ये सुगर गीत ला स्वर दे रही बेहतर राम साहू और साथी मन हा आओ अब बे रही ये संदेश के
1: दादी कौन सा प्लांट है
2: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
3: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
1: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
3: क्यों
1: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
3: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
5: पूजा ग्रीष्मकालीन सब्जी कहाँ हमन हाँ तो सुरता करते नाना रहे तो गर्मी दिन में का साग भाजी बचू रहे
0: ज्यादा साग भाजी हम छोटे रहें तो भैया रहा चेज भाजी ते हमारी भाजी ते भिंडी लौकी तुमा इसने साग मिला है
5: गर्मी में तो भाजी उगाए लोगन मन हाँ और भाजी उगाए बनना साधन तो रहा नहीं पानी के तो तरियल लान के पानी पलाए मुड़ी मुही के जिन मरार रहा है ते मन टेरा ओटे नरवा मतलब बांधे रहे हो आसपास भाजी उगाए के काम करे मन लेकिन ज्यादातर ना टहाड़ी घुघरी है नहीं
0: उई रहा है खोइलम बनाना है
5: आमा खोइलम बनाना है महीम बनाना है दही बनाना है ये सब चले लेकिन अब सब्जी किसान भाई बहन उगावा थे बारह महीना उगावा थे और हरा हरा साग सब्जी बारह महीना खाए बर मिला थे
0: बिल्कुल भैया
5: तो जब सब्जी उगावे थे गर्मी में तो इसे गर्मी में तो कीड़ा बीमारी कम लगते है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कीड़ा बीमारी लगते है तो ग्रीष्मकालीन सब्जी में कीड़ा बीमारी का लगते है और प्रबंधन किसे करवो आज के सलाह में यही विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जी में कीट प्रबंधन और विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा चौधरी सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र महासमुंद और संगवारी गोट बात करते पूजा चंद्रवंशी
0: संगी हो जब कोनो किसान हा कोनो भी फसल लगाते तब वो चाहते कि ओकर उत्पादन अच्छा हो एकर बर खातु माटी पानी मौसम मेहनत सब जरूरी होते अब ये सब जब बेरा में मिलते ना तब फसल के उत्पादन हा बहुत अच्छा होते फिर कई घाव कई ठन फसल मा कीड़ा बीमारी के प्रकोप घलोक देखे बर मिलते एकर ले कई घाव तो फसल हा पूरा नुकसान हो जाते त इही ला जानबो हम विस्तार ले क्रम आज की सलाह मा विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जी मा कीट प्रबंधन और ये विषय मा जानकारी दे बर आए हमारे स्टूडियो मा हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा चौधरी आप मन सहायक प्राध्यापक हो कीट विज्ञान मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र महासमुंद मा तो डॉक्टर मैडम सबले पहले तो राम राम स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम मा
6: नमस्कार
0: डॉक्टर मैडम सबले पहले आप मन बताते हो कि जैसे हमारे किसान भाई मन गर्मी मा घलो को खेती करते चाहे वो जायद के फसल कहन या साग भाजी के फसल कहन तो हम साग भाजी के फसल के बारे में थोड़ा जानना चाहबो कि ग्रीष्मकालीन सब्जी में कीट के प्रकोप अधिक काबर होते
6: ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है 30 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जो कीटों के प्रजनन के लिए बहुत अनुकूल है कम आर्द्रता और तेज धूप के कारण जो पौधे हैं वो तनाव में आ जाते हैं जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कमजोर पड़ जाती है जैसे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ती है वैसे ही कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में हम कैसे कीटों का प्रबंधन करें कैसे उनको आने से रोके और अगर आ जाए तो कैसे हम उनका प्रबंधन करें
0: डॉक्टर मैडम आपने बताया हो कि कौन से ताप में कीड़ा की बीमारी जेकर प्रकोप ज्यादा होते तो ओला कैसे हम प्रबंधित करन है ना तो ये ला विस्तार बताते हो कि कीट के प्रबंधन कैसे करन सब्जी में
6: ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जो कीट का प्रबंधन होता है उसके लिए हम समेकित कीट प्रबंधन अपनाते हैं अब ये समेकित कीट प्रबंधन क्या होता है इसमें हम बहुत सारे जो मेथड्स है उनको एक साथ उपयोग करते हैं जैसे कि हम फसल की गहरी जो मिट्टी की जुताई चालू करते हैं गहरी जुताई की जाती है जिससे कि

0: तो कीटों के बहुत सारे जो अवस्थाएं होती है, जैसे कि अंडे की अवस्था होती है, प्यूपा की अवस्था होती है, ये सारी अवस्थाएं जो है इनएक्टिव है, मतलब वो पड़ी रहती हैं। तो ये सारी जब हम गहरी जुताई करते हैं तो ये मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो पहला चीज तो है हम गहरी जुताई करेंगे, दूसरा चीज ये है कि समय पर हम बुआई करें। ज्यादा देर करेंगे तो भी कीटों का प्रबंधन होगा, अगर जल्दी करेंगे तो भी कीटों का जो आक्रमण बढ़ जाएगा। फिर फसल चक्र अपनाना चाहिए, जैसे कि हम सब्जियों की बात कर रहे हैं तो भिंडी जैसे हम लगाना चाहते हैं तो उससे पहले अगर हम कपास लगा लें, और कपास और भिंडी जो है दोनों एक ही कुल के हैं, तो जो कपास में कीड़े आने हैं वो स्वतः ही भिंडी में भी आ जाएंगे। इसलिए हमको फसल चक्र ऐसा अपनाना है कि नॉन होस्ट हो, दोनों जो है एक ही कुल के पौधे हम लोग एक साथ नहीं लगाएंगे या एक के बाद एक भी नहीं लगाएंगे। तो इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, कृषिगत उपाय जो है हमको करने हैं। उसके बाद कुछ ट्रैप आते हैं जिनको निगरानी के लिए या मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाइट ट्रैप होते हैं, प्रकाश प्रपंच कहा जाता है, इन प्रकाश में जो है जो कीट जो है वो आकर्षित होकर आ जाते हैं, तो उससे हम निगरानी कर सकते हैं कि कौन कौन से कीट आ रहे हैं। उसी प्रकार से फिरामोन ट्रैप होता है, फिरामोन जो है एक प्रकार का रसायन है जो मादा कीट जो है निकालती है जिससे नर कीट आकर्षित होते हैं। तो ये जो नर कीट जो है आकर्षित होकर आएंगे तो हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे, और आ गए तो इनको या तो हम मिट्टी का तेल वहां पे रख लेते हैं या कोई कीटनाशक वहां डाल के उनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समेकित कीट प्रबंधन जो है हमको अपनाना चाहिए, और इसके बाद भी अगर हम वो प्रबंधन करने में चूक हो जाए, ये सब ना कर पाए, तब जो है हम कीटनाशक की ओर जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं।
1: मैडम आपने अभी बताया हो कपास और भिंडी की खेती है ना, ये जो कीट आते प्रबंधित किसे करे जाए, तो यही में अपन बताते हो कि भिंडी में कौन कौन से कीट लग सकते हैं।
0: भिंडी में जो है तना छेदक या जिसको हम फल छेदक भी कहते हैं, जब तना जब बनने लगेगा तो तना में जो है वो आक्रमण करता है, और जैसे ही फल लगने लगते हैं तो वो भिंडी के फल में आक्रमण करता है। तो तना छेदक और फल छेदक एक प्रमुख कीट है भिंडी में। उसके बाद माहू आता है, सफेद मक्खी आता है, जैसिड जैसे प्रमुख कीट जो है भिंडी में पाए जाते हैं। और ये जो सफेद मक्खी जैसिड ये सब हैं, ये क्या करते हैं, कोमल भागों के रस को चूस लेते हैं, तो ये इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं भिंडी में।
1: तो भाई ये तो ज्यादा मात्रा में अगर फसल लेवत हैं तो ये तो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये ला प्रबंधित किसे करे जाए।
0: तो इसमें जैसे पहले भी कहा मैंने, भिंडी में जो कीट प्रबंधन के लिए हम लोग समेकित कीट प्रबंधन इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले फिरामोन ट्रैप की जो बात किए थे, 10 से 12 फिरामोन ट्रैप जो है हम लोग लगा सकते हैं प्रति एकड़ में निगरानी करने के लिए, और ये प्रबंधन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आकर्षित होके कीट आएंगे उनमें जो है हम वहां पर कीटनाशक का उपयोग करें तो हमको पौधे में नहीं डालना पड़ेगा, जो ट्रैप है उसी में डालना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है हम जैविक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से जो है प्रति लीटर पानी में घोल के हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड जो है 17.8% SL जो है 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको छिड़काव कर सकते हैं। तना छेदक के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के इसको उपयोग करना चाहिए।
1: माने भिंडी माँ अगर ये रिकीम ले अगर हमन प्रबंधित करन दवाई मन की उपयोग करन या आपन जो तरीका बताओ तेला उपयोग करन, तो भिंडी की फसल हम कीड़ा बीमारी ने बचा सकत हन। यही गर्मी के मौसम में भांटा घलोक लगाए जाते, तो वो भांटा में कौन कौन से कीट लगते हैं, ओकर कीट के प्रबंधन कैसे करन।
0: जो बैंगन है उसमें फिर से तना और फल छेदक लगता है, ये भिंडी से अलग है, ये ल्यूसेनाइट्स ऑर्बोनालिस है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बहुत के जो बैंगन जो है वो आते हैं, उनमें से जो बैंगनी कलर का जो है उनमें जब ये फल छेदक जाता है अंदर तो ये अपने अवशिष्ट पदार्थ से उस छेद को बंद कर देता है, तो जो फल है उसमें वो छेद बाहर से हमको दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हमको पता नहीं चलता कि उस फल के अंदर जो है कीड़ा है, तो इसलिए ये बहुत हानिकारक माना जाता है फल छेदक। तो फल छेदक इसमें मिलता है, फिर माहू है, जैसिड्स है, सफेद मक्खी है, ये सारे जो है बैंगन में प्रकोप करते हैं।
1: तो एकर बर का हमन तरीका अपना सकत हन, कौन प्रकार के रसायन या कौन प्रकार के तरीका अपना करके कीड़ा के प्रबंधन कर सकत हन।
0: सबसे पहले तो हम आने से ही रोक दें, जो हमने कहा कि गहरी जुताई करना चाहिए हमको, कोई भी अवशेष जो है कीटों के वहां पर उपस्थित नहीं रहना चाहिए जिससे कि वो बढ़ जाए। अगर उसके बाद भी आता है तो रसायन के रूप में जो है हम थायोमिथेक्साम

0: का उपयोग जो है कर सकते हैं। थायोमिथाक्साम 25 WG, ये है 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फल छेदक के लिए जो है हम लोग स्पिनोसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डाल के इसको उपयोग किया जा सकता है बैंगन में।
1: इसने मैडम अभी टमाटर घलोक गर्मी में लगाते हैं हमारे बहुत जन किसान भाई मन है, और टमाटर अभी बड़ा अच्छा दाम घलोक देते। टमाटर में कौन कौन से कीट लगते हैं, एकर प्रबंधन कैसे करन?
0: टमाटर का जो फल छेदक है जिसको हम लोग हेलिकोवर्पा कहते हैं,

0: दिखता रहता है। तो
1: हम्म,
0: इस प्रकार से वो छेद करके अंदर के पूरे मटेरियल्स को खाता है। तो ये टमाटर में इसके अलावा जो है सफेद मक्खी, थ्रिप्स और लीफ माइनर जो है, जो सुरंग बनाता है पत्तियों में, ये जो है प्रमुख रूप से टमाटर में आक्रमण करता है।
1: तो एक बार कौन से हम दवाई या कौन सी विधि के उपयोग कर सकत हन एला प्रबंधित करे बर?
0: एक और जो है हम जैविक कीट प्रबंधन का इसमें बताएंगे, एक ट्राइकोग्रामा जो है एक दूसरा कीट होता है जो कि एक लाभदायक कीट है। ये इस लाभदायक कीट का उपयोग उस हानिकारक कीट को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो
1: अच्छा,
0: ये जो ट्राइकोग्रामा कार्ड के रूप में आता है, इन कार्ड में क्या होता है, जो होस्ट इंसेक्ट है यानी जो हम लोग लेबोरेटरी में होस्ट इंसेक्ट डेवलप किए हैं, उसके अंडों पे जो है हम इस ट्राइकोग्रामा के मादा को अंडे देने के लिए उसमें डालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास ट्राइको कार्ड है अवेलेबल, उसमें जो है अंडों में ट्राइकोग्रामा के अंडे अंदर हैं। तो जैसे ही वो हम ट्राइकोग्रामा को खेत में ले जाते हैं, तो जो ट्राइकोग्रामा की जो मादा है वो निकलती है, और निकल के जो है ये जो हानिकारक कीट है हमारा हेलिकोवर्पा, उसके अंडों को ढूंढ के उसको अंडे के ही अवस्था में समाप्त कर देती है। तो इस
1: जी,
0: प्रकार से एक ट्राइकोकार्ड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो एक प्रकार का जैविक कीट प्रबंधन है। और इसके अलावा फिर हम इमिडाक्लोप्रिट या थायोमिथाक्साम, ये जो है हम सफेद मक्खी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक और बताया कीट लीफ माइनर, तो लीफ माइनर के लिए हम लोग इमामेक्टिन बेंजोएट या एबामेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका उपयोग करना चाहिए।
1: तो एमा एक बहुत अच्छा जानकारी आपन दे हो कि जैविक कीट प्रबंधन ये ज्यादा अच्छा है अगर हम ये विधि ला अपना लन, तो कि ज्यादा ज्यादा रसायन के उपयोग नहीं करेल पड़ी। तो डॉक्टर मैडम, एक संगे संग कद्दू वर्गीय फसल घलो कभी हमारे किसान भाई मन बहुत लगाते है ना, तो कद्दू वर्गीय सब्जी जो होते ओमा कौन कौन से कीट लगते?
0: कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसे कि कद्दू खुद आता है, फिर लौकी, करेला, ये सब कद्दू वर्गीय सब्जियों में आते हैं। इनमें जो है मुख्य रूप से एक लाल कद्दू बीटल जिसको हम लोग कहते हैं, वो मुख्य रूप से आता है, जो बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा माहू भी जो है इन कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगता है।
1: तो एकर प्रबंधन कैसे करन?
0: कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक और है फल मक्खी जिसको हम लोग कहते हैं। फल मक्खी को जो है हम लोग आकर्षित करने के लिए मिथाइल यूजिनॉल का ट्रैप लगाते हैं। ये मिथाइल यूजिनॉल जो है एक रसायन है जिससे कि वो फल मक्खी जो है वो आकर्षित हो जाएगी, और आकर्षित होने के बाद फिर हम जो है उसको उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगेन इमिडाक्लोपिड कोई भी जो चूसक कीट हम कहते हैं, जैसे हमने पहले भी इसमें जो सफेद मक्खी है, जैसिड्स है, उनकी बात कर रहे हैं, ये सब चूसक कीट हैं। ये जो है पूरे पौधे का रस चूसकर जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। रस चूस लेते हैं तो पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं, और पत्तियां पीली पड़ती है चूंकि पत्तियां ही पौधों का भोजन बना रही है, तो वो नहीं बनेगा तो फल भी नहीं लगेगा। तो ये सारे चूसक कीट जो है वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो प्लांट है वो पूरा सूख जाता है और फल भी उसमें नहीं लगते। तो इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके लिए जो है हमको स्पिनोसेड, मेलाथियन, ये इमिडाक्लोप्रिड, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एमा आप मन ह बहुत कन जानकारी दे हो कि कद्दू वर्गीय फसल मा कौन कौन से कीट लगते, टमाटर मा और टमाटर मा भाटा मा और भिंडी मा, तो एकर संगे संग अभी मिर्चा के उत्पादन घरों बहुत हुआ थे, तो मिर्चा में कौन कौन से कीट लगते और एकर प्रबंधन कैसे कर जाए यहूर बता देते हो?
0: मिर्च में जो है इसमें भी फल छेदक लगता है हेलिकोवर्पा, जो कि टमाटर में भी लगता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक जैसी जो कीट है जो फसलों में लगते हैं उनको हम एक साथ ना लगाएं। तो मिर्च में जो है ये फल छेदक भी लगता है, और जो भी चूसक कीट है वो फिर से मिर्च में आक्रमण करते हैं।
1: तो एकर प्रबंधन करे बर घलोक का जैसे हम टमाटर में या कद्दू वर्गीय फसल में हमन कीट प्रबंधन करें वैसे कर सकत हन का?
0: हाँ, इसमें भी जो है हमको उसी प्रकार से एक तो समेकित कीट प्रबंधन अपनाना है, जैविक कीट प्रबंधन भी अपनाना है। इसमें भी हम लोग जो है ट्राइकोकार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है जो भी कीटनाशक उपलब्ध है जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया, स्पिनोसेड हो गया, ये सारे जो है कीटनाशक का इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल छेदक के लिए हम लोग मिर्च में फिप्रोनील का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के हमको डाल देना चाहिए।
1: डॉक्टर मैडम, ये तो बहुत अच्छा जानकारी रही से। अब हमर जो किसान भाई मन अभी जो गर्मी में सब्जी लगाए है तेकर मन बर और का जानकारी देना चाहूँ कि ए मन कौन रिकीम ले अलग अलग सब्जी के कीट के प्रबंधन कर सकत है?
0: ये एक तो सब्जियों में कुछ एक ही प्रकार के कीटों की हमने बात की, जैसे कि तना छेदक, तना

0: में छेद करे या फल छेदक हो या फिर जो चूसक कीट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आक्रमण करते हैं। और एक जो हमने टमाटर में भी बात की लीफ माइनर्स की, तो इसमें हम सबको जो है समेकित कीट प्रबंधन ही अपनाना चाहिए। हम पहले ही आने से ही कीटों को रोक लें, गहरी जुताई करके या जो भी अवशेष है उसमें से सारे हटा के वहां से साफ सुथरा करके जो है हम करें, तो जो भी कीट के अवशेष है वो वहां पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और उसके बावजूद आ गए तो सबसे पहले जो है हमको ये देखना चाहिए कि हम जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमने ट्राइकोग्रामा की बात की उसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ और बीटल्स होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, क्रिप्टोलीमस करके एक बीटल होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर हम ना कर पाए तभी जो है हमको रसायन की ओर अग्रसर होना चाहिए, अन्यथा हम कम से कम रसायन का उपयोग करें ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे।
1: मैडम आपन पर्यावरण ला सुरक्षित रखत कैसे हम कीट प्रबंधन करन ये विषय में बड़ सुघर जानकारी देव, तो अतिक विस्तार ले जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: संगवारी अभी सुनो अपन आज की सलाह, एम विषय रही से ग्रीष्मकालीन सब्जी में कीट प्रबंधन। विशेषज्ञ रहीन डॉक्टर ऋचा चौधरी और भेंट करते रहीन पूजा चंद्रवंशी।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ
5: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले?
5: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया है। जाओ भाई।
7: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
2: पूजा अब इतना सूचना संगवारी मन पर। संगवारी हो अवैया मंगलवार 12 मई 2026 के प्रसारित हो या हलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हो ही गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हो डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। आप अपन जिज्ञासा और शंका समाधान पाए बर हमला फोन कर सकत हो। हमारा फोन नंबर है 4003482, दूसरा नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के HD कोड है 0771। कार्यक्रम के रिगार्डिंग 12 मई 2026 के बिहनिया 11:30 लेके 12 बजे के बीच करे जाही। अब ये कार्यक्रम के प्रसारण वही दिन यानी मंगलवार के संझा 7:30 में करे जाही। हम अल्लाह आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही सूचना यही में सिरावत है।
1: ओ भैया अब भी रहे कृषक प्रश्न मंच के, माने आज के प्रश्न पूछे के, तो संगवारी मल्ला बता देता हमार आज के प्रश्न है ग्रीष्मकालीन सब्जी मा कीट प्रबंधन कैसे कर सकत हन। प्रश्न एक गांव फिर दोहरा देता हूँ। प्रश्न है ग्रीष्मकालीन सब्जी मा कीट प्रबंधन कैसे कर सकत हन।
2: पूजा कहूँ संगवारी मन आज के हमारे कार्यक्रम में सुने हुई ध्यान लगा के तब भाई जवाब तुरते भेज सकते हैं। अब ये प्रश्न के जवाब भेजे बर हमार ईमेल पता अपन लिख लो संगवारी हो। हमारा ईमेल पता है raiajkeprasna23@gmail.com, यानी कि राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। और पूजा ये संगवारी मन ईमेल के माध्यम ले भेजी है ना, तो ओकर बर झटकुन हो जाए, टाइम ज्यादा नहीं लगे।
1: और एक संग बता देते संगवारी मन ला पाछू हफ्ता पूछे गए प्रश्न ओकर सही जवाब। और हमारे पाछू हफ्ता के प्रश्न रही से अभी के समय में खरीफ फसल के तैयारी बर किसान भाई मन ला सबले पहली का काम करना चाहिए, तो एक सही जवाब है माटी के परीक्षण, खेत के गहरी जुताई।
2: हाँ और ये प्रश्न के सही जवाब पर हमारे तीर ईमेल भेजे है संगवारी मन लोरमी ग्राम चचड़ील कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मधनपुर कवर्धाले है श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू ग्राम बठेना पाटन जिला दुरुगले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति मुरली नीरा वर्मा निधि निखिल वर्मा यश प्रयान शिवम वर्मा आर्यनगर कोहका भेलैले उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष अवनंदनी जंघेल धमधा ग्राम सुखरी कराले अमित जंघेल शकुन आरुषि ओशिका अंजलि जंघेल ग्राम प्रथा टोला अम्बागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिरोचनी तुसारनी और खुमेंद्र मसिया। तो सही जवाब भेजा जम्मो संगवारी मल हमारे को तिले कोरी कोरी बधाई। तो आज के ये जो प्रश्न है कृषक प्रश्न मंच वो यही मेर सिरावत है। और देख पूजा।

0: कतको अकन बात ऐसे होते जेला गुठियाना जरूरी होते,
1: बिल्कुल भी
0: जैसे कि अभी गर्मी के मौसम में हालांकि सांसन को पानी घलो गिरते कहूँ कहूँ डहान, फिर भी हमारे आसपास पशुधन घूमत रहते जिन्हा कोनो बांधे नहीं होला, है ना, खुल्ला खुल्ला, या फिर कभी कभी जंगली जानवर मन घलो आ जाते भटक के गाँव डहार, चिड़ै चिरगुन है, इसे समाचार में देखे बार सुने बार पढ़े बार मिलते कि गर्मी कारण चिड़ई मन की मौत हुआ थे या फिर पशुधन प्यास में तड़पा थे। तो भाई मनुष्य होए के नाते हम सब के फर्ज है, हालांकि अभी हमारे क्षेत्र में हमन बात करें धमतरी जिला, रायपुर जिला, महासमुंद के आसपास के जिला, तो नहर पानी ढीला है, खेत डहान जावत है और दरिया मन भरा थे, लेकिन जैन क्षेत्र में ऐसा पानी की सुविधा नहीं है, जैन डहान तालाब में सूख गए हैं या फिर पानी की कमी हो गई है, ऐसा क्षेत्र के हमारे किसान भाई मन से निवेदन है कि भैया अपने चिड़ै चिरगुन भर पशुधन भर पानी की व्यवस्था करे के प्रयास करो, ग्राम पंचायत ला बोल के पानी की व्यवस्था करे के प्रयास करो। देखो यही बात संग हुआ था जाए के बेरा, तो जाए के बता दें काली कार्यक्रम
1: काली गोट बात संग सुनू क्रम आज की सलामा भेंट वार्ता। आगामी खरीफ फसल धान के लिए वैकल्पिक खाद, नील हरित काई, जैव उर्वरकों और नैनो उर्वरक का उपयोग कैसे करें, ये विषय में जानकारी दी ही श्रीमती गोपिका गवेल जी हा। तो एक संग अब हो गए हमारे जाए के बेरा, तब देव विदा, पूजा चंद्रवंशी
0: और निर्मल साहूला, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए बॉर्डर फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है अन्नू मलिक ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में

0: दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेब्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेब्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तक सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे।

कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 होने को हैं। स्वर धरोहर, ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: कार्यक्रम स्वर धरोहर।
2: हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी।
3: ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन बहुत ही छुटपने से जब से मैंने होश संभाला है, कुछ लोगों ने मुझसे गाना शुरू किया कि मेरी आवाज़ अच्छी है,
4: इसमें तो कोई शक भी नहीं।
3: बस उसी वक्त से फिर मैंने गाने की कोशिश शुरू कर दी और घर में अपने भाई बहनों के साथ, मेरे भाई बहनों की भी आवाज़ें अच्छी हैं, वैसे तो हम लोग म्यूजिकल फैमिली से तो नहीं है लेकिन आवाज़ें सबकी इत्तेफाक से अच्छी हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे, तब से ही मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया। और उसके बाद जब जरा स्कूल में आया और थोड़ा होश संभाला तो सैगल साहब को सुना मैंने। सैगल साहब जैसा गाने वाला तो मेरे ख्याल में ना पैदा हुआ है ना पैदा हो सकेगा। उनका मैं बेहद मद्दा हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं गा बजा रहा हूँ।
2: उन्होंने पंडित SCR भट्ट से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और गजल गायन से अपने करियर की शुरुआत की।
3: उसको तालीम तो नहीं कहा जा सकता है, गंडा बांध के जो एक तरीका होता है वो तो नहीं किया मैंने, लेकिन हमारे लखनऊ में बहुत मशहूर कॉलेज है, मैरिस म्यूजिक कॉलेज जिसको कहते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा,
4: भातखंडे।
3: जी हाँ, भातखंडे।
4: जी,
3: तो उसमें मैंने 3 सीखा है।
1: 16 की आयु में उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ पर गाना शुरू किया। 1941 में हिज मास्टर्स वॉइस यानी HMV ने उनका पहला डिस्क जारी किया।
3: तो वहाँ से फिर 1941 में कुछ HMV के लोग आए थे कि जो नए आर्टिस्टों की तलाश में थे, तो हमारे यहाँ के एक ग्रामोफोन कंपनी के डीलर्स थे, उन्होंने उनको बताया था कि एक नए सिंगर यहाँ पे, खैर अच्छा नाम हो रहा है उनका, उनका नाम है तलत महमूद। तो HMV वाले मुझसे मिले आकर और उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 का। लखनऊ में पढ़ रहा था तो कुछ मुझे बताया लोगों ने कि भाई HMV से कुछ लोग आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, तो खैर मैं उनसे बातचीत की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तय हुआ कि मैं कलकत्ते जाकर 3 रिकॉर्ड करूंगा।
4: तो उस वक्त कलकत्ता जाना क्या मजबूरी थी, कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी?
3: जी नहीं, और कहीं नहीं हो सकती थी।
4: अच्छा अच्छा।
3: कलकत्ते में डमडम ये जगह है जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आज भी वहीं पे हो रही है रिकॉर्डिंग, तो ये एक जमाने से चला आ रहा है वहाँ पे।
4: अच्छा अच्छा।
3: तो मैं वहाँ पे तकरीबन 1941 में शुरू में ही गया वहाँ और 3 मैंने रिकॉर्ड किए। सबसे पहला जो गीत था मेरा वो उसके बोल हैं, सब दिन एक समान
4: जी,
3: वो बहुत अच्छा मकबूल हुआ।
5: सब

0: आकाशवाणी से अपने जुड़ाव के विषय में बताते हुए तलत महमूद ने कहा था,
1: ऑल इंडिया रेडियो ने भी मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। 1947 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर चंद गालिब और इकबाल की गजलें पेश की थी जो बहुत पसंद की गई। तो सच पूछिए तो वैसे रेडियो ही से मैंने अपनी जिंदगी का आगाज किया है।
2: तलत महमूद लखनऊ से कलकत्ता आ गए और वहाँ उन्हें काफी सफलता मिली। उन्होंने करीब 16 फिल्मों में अभिनय किया। तपन कुमार के नाम से बांग्ला गीत भी रिकॉर्ड किए।
1: वैसे तो आप ये ख्याल कीजिए कि मैंने तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम जुबानें गाए हैं
3: जी,
1: सिवाय तमिल के सब जुबानें गाए मैंने। बंगाली में जुबान बहुत से गाने किए
3: जी,
1: और वो बहुत ही पॉपुलर हुए, जैसे कि मेरे हिंदी गाने पॉपुलर हुए
3: जी,
1: उसी तरीके से बंगला चले।
3: अच्छा, तो बंगला गानों में नामकरण आपका कुछ और हो गया था क्या?
1: वो थोड़ा सा कुछ उन्होंने अपने उस वक्त को देखते हुए तपन कुमार मुझे नाम दिया था।
3: तपन कुमार
1: जी हाँ।
3: अच्छा अच्छा,
1: अब उसके बाद तो फिर लोगों को पता चल गया तो तपन कुमार के सामने ब्रैकेट में तलत महमूद आने लगा।
3: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन शुरू में थोड़ा सा बिजनेस ट्रिक की वजह से उन्होंने ये चीज की थी।
2: 1949 में वो कलकत्ता से मुंबई पहुंचे। संगीत निदेशक अनिल बिस्वास ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म आरजू में अवसर दिया।
0: उनका गाया गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल बहुत लोकप्रिय हुआ और उन्हें पहचान दिलाई।
2: अनिल बिस्वास के साथ अपने अनुभव को तलत महमूद ने इन शब्दों में व्यक्त किया।
1: 1949 में मैं कलकत्ते से बम्बई आ गया और हालांकि मेरे सभी गाने सब म्यूजिक डायरेक्टर ने सुने थे, मेरे काम और आवाज़ से वाकिफ थे, लेकिन जिसके पास भी मैं गया उन्होंने यही कहा कि भाई फिल्म का तो आपको एक्सपीरियंस है नहीं। मुझे ताज्जुब भी होता था और अफसोस भी, लेकिन इसी दौरान में अनिल बिस्वास साहब का एक पैगाम मुझे मिला कि तुम आओ, तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करना है। मैं अनिल से मिला, पूछा कि आपने मेरे माइक्रोफोन के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं और सीधा गाने रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्हें भाई कि तुम्हारे 300-400 रिकॉर्ड जो हैं वो क्या ये साबित नहीं करते हैं कि तुम गाने वाले हो और तुमको माइक का एक्सपीरियंस है। मैं अनिल दा का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने पहला गाना फिल्म आरजू के लिए मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड किया।

0: तलत महमूद ने संगीत निर्देशक मदन मोहन के साथ भी अनेक गीत रिकॉर्ड किए। मदन मोहन को याद करते हुए उन्होंने कहा था,
1: मेरी मुलाकात मदन मोहन से लखनऊ में हुई और हमारी काफ़ी दोस्ती बढ़ी और ये इकरार हुआ था कि जब भी कभी मैं बॉम्बे आऊँगा तो मदन के साथ काम करूँगा। लेकिन और इतफाक़ से कुछ ज़्यादातर पिक्चरें उनके साथ चली और बहुत अच्छे अच्छे गाने चले उनके मदन के, और आखिर में जहाँ नारा में उनके साथ मैंने काम किया।

0: बाद उन्होंने शाम गम की कसम, तस्वीर बनाता हूँ जैसे गीत गाए।
1: इन गीतों ने उन्हें रोमांटिक और करुण भावनाओं का प्रतीक बना दिया।
0: 1950 और 60 के दशक में तलत महमूद गजल गायकी के लिए पहली पहचान माने जाते थे।
2: जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ी सी तब्दीली मैंने कोशिश की थी कि लाऊं उसको, और हल्का रंग दिया था मैंने,
3: आसान बनाया।
2: जी हाँ, मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिर वही सिलसिला शुरू हो गया कि वो अपने यानी एक एक घंटे में, दो दो घंटे में एक एक मिसरा गाया जाता है गजल का। आजकल फिर वही सिलसिला शुरू हो गया और मेरे ख्याल में पता नहीं इसका खत्म कहाँ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
3: तो यानी गजल में आप ये तान और अलाप है इसका इस्तेमाल जो है वो जायज नहीं समझते?
2: नहीं, एक हद तक जायज है, जहाँ तक कि अशार को नुकसान न पहुंचे, उसके मीटर को, बहर को नुकसान न पहुंचे और अल्फाज खराब ना हो। अल्फाज तक खराब कर देते हैं लोग आजकल, मुश्किल है ना। एक मिसरा आपको आधे घंटे में सुनाया जाए तो आप क्या समझें कि उसके बाद दूसरा मिसरा भी उसी आधे घंटे में, तो बेचारा शायर भी बेकार, इतनी उसने मेहनत की और सुनने वाला तो परेशान है कि क्या कह रहे हैं और क्या शायर ने क्या कहा है, तो ये तो परेशानी हो जाती है।
0: मोहम्मद रफी और किशोर के साथ वो फिल्मी पार्श्व गायन में छाए हुए थे। उन्होंने 1940 से 1980 के बीच 800 से अधिक गीत गाए।

0: श्रोताओ, एक प्रसंग ये भी है कि जब मुकेश आर्थिक संकट में थे तब तलत महमूद ने उन्हें मधुमती फिल्म के गीत को गाने का अवसर दिया।
1: ये उनकी उदारता और सहृदयता का उदाहरण है।
2: मैं अपने बहुत अजीज दोस्त मुकेश के बारे में चंद बातें आपको सुनाऊं। हम दोस्त होने के साथ साथ हमराज भी थे और ख़ास तौर से प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन की वजह से हम दोनों में बहुत कुर्बत हो गई थी, क्योंकि हमारे साथ तमाम इंडस्ट्री के मसाइल थे। उनका हल ढूंढना, फंड वगैरह जमा करना, मेंबर्स बनाना, प्रोड्यूसर से झगड़े करना, उनके झगड़ों को तय करना, गरज के हज़ार बलाएँ थी हमारे सर पर। मगर साहब कमाल है, मुकेश जैसा खुश अखलाक और हंसमुख दोस्त चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। कभी उसने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, बल्कि हमेशा मुझको समझाया करता था कि भाई ये चीज़ें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे ख्याल में किताब लिख सकता हूँ।
3: तलत महमूद सबसे अधिक प्रभावित थे गायक कुंदन लाल सहगल से।
4: एक तो उनके गाने की सॉफ्टनेस, दूसरे उनके जज्बात, जो पैथोस और अल्फाज की अदायगी, ये सब चीज़ें। अब आप देखिए उनके जो पुराने गाने हैं, सोजा राजकुमारी सोजा, या ये कि काह करूं कि जाऊं, इस किस्म के जो गाने हैं उससे मालूम था जैसे कि वाकई दिल निकाल के रख दिया है उन्होंने। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बचपने में ही उनका मैं बहुत ही शौक से गाना सुनता था।
2: मेरा कॉन्ट्रैक्ट न्यू थिएटर्स में था 1945-46 में। मेरी मुलाकात सहगल साहब के साथ हुई और वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन है कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि सहगल साहब से मिलूं। उनके गाने जब भी सुनता था मैं तो एक अजीब किस्म का असर मेरे पर होता था, क्योंकि मैं ये अभी तक ऐसा महसूस करता हूं कि सहगल साहब गाते नहीं थे बल्कि फरिश्तों के तरीके से कुछ ख़ास उनको अल्लाह ने एक सिफत दी थी, उनके गले में एक नूर दिया था कि जो आपको मोह लिया करता था। और जब मैं न्यू थिएटर्स में काम करना शुरू किया है तो उनकी पिक्चर माई सिस्टर बन रही थी। मुझे ख्याल भी नहीं था कि ज़िंदगी में उनसे इतनी कुर्बत हो जाएगी और एक साथ इतना वक्त गुजार सकूँगा। माई सिस्टर फिल्म का ये गाना मेरी मौजूदगी में ही रिकॉर्ड हुआ था, दो नैना मतवारे तिहारे, और रिकॉर्डिंग के वक्त जो समा था वो मैं अल्फाज में तो नहीं बयान कर सकता हूँ।
1: तलत महमूद ने मदन मोहन, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे संगीतकारों के साथ काम किया।
0: उनकी आवाज में प्राकृतिक वाइब्रेटो था जो श्रोताओं को तुरंत बांध लेता था।
1: लता मंगेशकर के साथ उनके युगल गीत बेहद लोकप्रिय हुए। उन्होंने सुरैया, नूतन, माला सिन्हा और श्यामा जैसी अभिनेत्रियों के साथ अभिनय भी किया।
0: दिले नादां, सोने की चिड़िया और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों में वे नजर आए।
1: हालांकि अभिनय में वो उतने सफल नहीं रहे, पर उनकी गायकी ने उन्हें अमर बना दिया।
4: और अदाकारी से मुझे सख्त नफरत रही हमेशा।
5: अच्छा।
4: हालांकि मैंने काफी पिक्चर में काम किया है
5: जी।
4: अब बेहद तो कैमरा कॉन्शियस किस्म का आर्टिस्ट था मैं। या आप देखिए जो पिक्चर है मेरी कभी रिलीज हो तो मुझे सख्त तरीन नफरत रही।
5: नहीं, आपको तो साहब रही होगी लेकिन हमें तो देख कैसा नहीं लगा।
4: नहीं, मैं आपको, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस किस्म का आदमी हूँ। तो वहाँ भी मैं गानी चाहता था और यहाँ भी गानी चाहता था, लेकिन बीच में मुझे पकड़ कर ढकेल दिया दिले नादान और एक गाँव की कहानी वगैरह वगैरह में
5: जी,
4: तो मजबूरन करना पड़ा, वरना हमेशा से मैं गानी ही चाहता था।
0: श्रोताओ, वे पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति दी, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में और अमेरिका के ब्रॉडवे में।
1: 1982

0: 92 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: उनकी जीवनी तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी 28 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुई, जिसने उनकी शताब्दी वर्षगांठ पर नई पीढ़ी को उनसे जोड़ा।
0: श्रोताओ, उन्होंने 1980 के दशक तक गाना जारी रखा।
1: 9 मई 1998 को मुंबई में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
0: उनकी बेटी सबीना और परिवार आज भी उनकी विरासत को संजोए हुए हैं।
1: आज भी उनके गीत रेडियो और मंचों पर गाए जाते हैं और वे भारतीय संगीत इतिहास के अमर नक्षत्र हैं। तो श्रोताओ, अब मैं आशुतोष
0: और मैं श्वेता आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।
1: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का, तकनीकी सहयोग दिया था आकाश ने।
0: कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता कल से गांधीनगर में शुरू होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 4 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जबकि शहबाज अहमद और दिग्विजय राठी ने लखनऊ के लिए 2-2 विकेट लिए। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे। लखनऊ के लिए जॉश इंग्लिश ने 33 गेंदों में 85 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से जेमी ओवर्टन ने 3 विकेट लिए। वहीं रायपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक मुंबई ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। तो पहले मैच की बात की जाए, चेन्नई वापस लगता है कमबैक के मूड में नजर आ रही है। विजय,
1: हाँ जी, इसमें अगर आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखिए, चेन्नई की खासियत है कि जब आपको लगता है कि ये टीम गई, वो एक कुछ ऐसा पलटती है टूर्नामेंट का रास्ता कि कंटेंडर हो जाती है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है और उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं, और ख़ास करके उर्विल जैसे अगर खिलाड़ी हैं उनके पास जो मतलब किसी भी क्षण अपने दम पे मैच बदल सकते हैं, तो चेन्नई को किसी कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, आपने उर्विल का जिक्र किया और आज के मैच के स्टार कह सकते हैं, युवा खिलाड़ी है, लेकिन जो छक्के लगाए हैं आज, जो गेंद को बाउंड्री पार फेंका है, क्या कहेंगे इस तारीफ के लिए, इस खिलाड़ी के लिए।
1: एक टाइम था जब मैं 14-15 साल का था, मैं सलीम दुर्रानी जी आते थे तो देखने जाता था, एक छक्का देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो एक ही खिलाड़ी 8-8 छक्के मार रहा है। आप आज गेम बदल गया है, उनका टेक्निक बदल गया है, और उर्विल जो है वो मारते दम से हैं। मैं हाँ, क्योंकि गुजरात में और बड़ौदा में उनका बहुत रेपुटेशन है बड़े बड़े छक्के मारने का, और आज दिखाई दिया उन्होंने बड़े स्टेज पे कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो।
0: जी बिल्कुल, अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर दूसरे मुकाबले की बात कर ली जाए जो इस समय खेला जा रहा है, जहाँ आरसीबी और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ इस

0: प्रतियोगिता में बचा नहीं है, टीम 9वें स्थान पर है। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो टॉप चार में बने रहना इस समय आईपीएल का सबसे बड़ा कंपटीशन है। रोज टेबल बदलती है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, चौथे नंबर पर है आरसीबी, कितना सेफ महसूस कर रही होगी अपने आप को।
1: आरसीबी का सबसे मेन ये है कि उनको ना वो कॉन्फिडेंस है अब कि जो है वो डेफिनेटली प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, और उनके पास वो क्षमता भी है, खिलाड़ी भी हैं। ये फैक्ट है कि विराट के होने से टीम को बहुत फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक मुंबई की बात है, वो तो बिल्कुल फिसलते चले गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो हम कह सकते हैं कि वो तो आउट ऑफ रेकनिंग है। और वही हाल लखनऊ का है, उन लखनऊ का भी कोई टैक्टिक्स समझ में नहीं आते हैं। और ख़ास करके शक्ति आज जब हमने देखा, कप्तानी भी कोई मतलब थोड़ी निराशाजनक थी।
0: जी बिल्कुल, एक जो आपकी अंक तालिका में स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन में नज़र आती है, आपके डगआउट में नज़र आती है, और ऐसा ही शायद इन टीमों के साथ भी देखने को मिल रहा है। और अब क्रिकेट के बाद बात करते हैं उन निशानों की जिन्होंने भारत के लिए आज पदकों की बारिश की। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
2: कुमारी ऑन द लाइन, कुमारी इनटू द नाइन, एंड दैट इज अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया हियर इन शंघाई।
3: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आज फाइनल मुकाबले में शानदार खेल कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। भारतीय तिकड़ी ने उतार चढ़ाव भरे फाइनल मुकाबले में शूट ऑफ में चीन को 5-4 से हराकर 2021 के बाद तीरंदाजी विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 4 सेट के मुकाबले के बराबरी पर समाप्त होने के बाद मैच शूट ऑफ में चला गया। निर्णायक क्षण में जब दबाव चरम पर था, तब अनुभवी दीपिका कुमारी ने दबाव के बीच इस यादगार जीत को पक्का करने की जिम्मेदारी संभाली और शूट ऑफ के आखिरी तीर पर महत्वपूर्ण 9 अंक हासिल किए। विश्व कप में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले कल प्रवीण जाधव ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के पदकों का खाता खोला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम को बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: विजय, अगर ये कहा जाए कि तीरंदाजी में विश्व कप के पहले चरण में और दूसरे चरण में भारत की साख बचाती हुई नजर आई। भारत की बेटियां पहली बार भी एक ही पदक था जो मेक्सिको में खेला गया पहला चरण, और आज दीपिका का वो 9 पॉइंटर, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे, क्योंकि जो सेमीफाइनल में इस टीम ने करिश्मा किया शायद उसको मेजबान चीन को हरा करके आज दोहराया है।
1: हाँ, जो आप बता रहे थे कि कोरिया को हराया, कोरिया और चाइना को एक ही टूर्नामेंट में बैक टू बैक आपने हरा के रिकव, मैं कहूँगा मुझे सबसे बड़ी इस जीत में ये अच्छा लगा कि दीपिका जो है उनका जो टेम्परामेंट है वो उन्होंने दिखाया यहाँ पे। और कितना प्रेशर होगा आप समझिए, उनको पता है कि इतने 9 पॉइंट लेने हैं इस शॉट में, और उन्होंने लिए वहाँ से जो है, और वो भी शूट ऑफ बहुत कठिन होता है शक्ति। और यहाँ पे मैं कहूँगा दीपिका के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि पीछे जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की है। और एशियन गेम्स वाले ईयर में, इस साल एशियन गेम्स भी हैं, तो इसमें आप आर्चरी से बड़ी उम्मीदें हैं।
0: जी बिल्कुल, आर्चरी से उम्मीदें होंगी जहाँ पे एशियन गेम्स भी हैं, और कुछ वर्ष बाद जब ओलंपिक में उतरेंगे तो दीपिका शायद उस मेडल की कसक को भी पूरा करने में सफल साबित हों इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए।
1: हाँ, दीपिका से उम्मीद है क्योंकि वो उस लायक हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल की आर्चर हैं, और ऐसा कुछ कमाल करेंगी तो उनके लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए भी अच्छा है।
0: जी बिल्कुल। और अब तीरंदाजी के बाद बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने एकदम सटीक लगाए। दूसरे स्थान पर रही जहां इटली के साथ ये टीम थी, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन में हम इटली से पीछे थे इसलिए इस बार ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, और चीनी ताइपे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इटली ने रजत पदक जीता। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि ये स्पर्धा अब ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है, तो ऐसे में हमारी दावेदारी जो है नज़र सब खेलों की, खिलाड़ियों की ओलंपिक जैसे आयोजनों पे होती है, तो एक अच्छा संकेत कि खिलाड़ी आ रहे हैं और मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, पहला मेडल है इस जोड़ी का।
1: जी हाँ, और अगर आप देखिए ये भी वही स्पोर्ट है जिसमें भारत ने हमेशा अच्छा किया है, और विश्व स्तर पर कहें या एशियन स्तर पर कहें अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लगातार आपको टैलेंट मिलता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल, अब तक इंडिविजुअल्स में हम देखते थे कि लगातार भारत के मेडल्स आ रहे थे ISSF की प्रतियोगिता।

0: दांव में, लेकिन अब मिक्स्ड में और टीम लेवल पे भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज वीर चोटरानी का मुकाबला मिस्र के मुस्तफ़ा असल से होगा, जो कि विश्व नंबर एक खिलाड़ी हैं वर्तमान में। वीर चोटरानी ने पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को हराया था, और अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन और सेंथिल कुमार का सफ़र भी समाप्त हो चुका है इस अभियान, इस प्रतियोगिता से, और अभय सिंह भी बाहर हो चुके हैं। तो एकमात्र चुनौती है, और उम्मीद होगी विजय की आज कुछ बेहतर करें और अगले दौर में पहुँचें।
1: हाँ, उन पर उम्मीदें तो रहेंगी, क्योंकि अभय को जो है आप हरा के आगे पहुँचे हैं, और चोटरानी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है मंझे खिलाड़ी नहीं है, पर यही है कि जब तक आप एक खिताब नहीं जीतेंगे आप उस रेकनिंग में नहीं आते हैं।
0: जी बिल्कुल, अपनी पहचान बनाने के लिए वो खिताब की दरकार होगी। अभय को हरा करके हौसला मिला होगा और उम्मीद होगी कि खिताब की दौड़ में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरुपमा देवी, लवप्रीत सिंह, बेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: काफी दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई भारतीय टीम है, लेकिन शायद एक खिलाड़ी की कमी इस टीम को खले। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, इसके पहले गुजरात में अच्छा प्रदर्शन दिया है, लेकिन भारत को शायद उनकी कमी खलती भी नजर आएगी।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका इश्यू है इंजरी, वो बार बार चोटिल हो जाती हैं, तो उससे वो उनके प्रिपरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब आपके दिमाग में बैठ जाए कि चोटिल होने का डर, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस भी लड़खड़ाती है।
0: जी बिल्कुल, और अगर इस आयोजन से इतर एक बात और भी देखा जाए इस पहलू की, गुजरात मेज़बानी कर रहा है, 44 साल में पहली बार भारत के पास मेज़बानी होगी, और गुजरात यहाँ से हर प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता अपनी उस सभ्यता को भी साबित करना चाहेगा, क्योंकि अब आपको राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े आयोजन की मेज़बानी करनी है। कितना बड़ा एक अवसर, या फिर कह सकते हैं कि एक वार्म अप की तरह ये आयोजन होने वाले हैं इस प्रदेश के लिए।
1: बिल्कुल, वार्म अप आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप देखें भारत जब मेज़बानी करता है ना, सबसे आगे ही रहता है, कभी कमियां नहीं रहती है। इंटरनेशनल लेवल के बहुत बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं, और गुजरात तो बहुत बड़ा हब उभर के आ रहा है। अगर आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है तैयारी होगी, और आगे आप ओलंपिक का दावा कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपको मिला तो वो भी सब कहते हैं कि बेस्ट होगा गुजरात उसको होस्ट करने के लिए। सो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन है।
0: जी बिल्कुल, एक तैयारियों के रूप में इसको आंका जा सकता है, जो कि गुजरात ही दावेदारी कर रहा है ओलंपिक के लिए, तो कितना तैयार है 2036 की इस दौड़ के लिए या आजमाने के लिए, इस प्रकार के तमाम जो टूर्नामेंट हैं आपके लिए काफ़ी सहायता करते हुए नजर आएंगे। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। दीक्षा मलिक ने कहा कि हर इंसान को संडे ऑन साइकिल का हिस्सा बनना चाहिए।
3: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं साइकिलिंग करते हुए।
0: तो एक अभियान जो धीरे धीरे पूरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है विजय, रोज संडे के दिन लोग अपनी छुट्टी के सुबह के आलस को त्याग करके उतरते हैं, साइकिल चलाते हैं, और एक फिटनेस का संदेश और साथ ही साथ एक संदेश एक अच्छे पर्यावरण के लिए।
1: बहुत ही लोकप्रिय भी है, और आप देखिए दिल्ली में बहुत सारे अब साइकिलिंग क्लब्स उभर के आए हैं, वो इस कारण से कि सबको लगता है कि एक संडे के दिन कम से कम आप सुबह जाके

0: साइकिलिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और एक पार्टिसिपेशन होता है, मास पार्टिसिपेशन, जहाँ पे नए नए दोस्त आप बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेंचर है
1: जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की, जहाँ पे इंडियन सुपर लीग में इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नई एफसी के बीच मुकाबला जारी है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-0 की बढ़त बना ली है और इसके पहले केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन क्लब को 3-1 से हराया है। तो फुटबॉल भी भारत में, अगर लीग खेलों की बात की जाए, आईपीएल ने एक पूरी नज़ीर पेश की हमारे सामने कि किस तरह लीगों में आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मौजूद है, एक अच्छा पूल मिलता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। फुटबॉल में ये लीग काफ़ी सार्थक साबित होती हुई नज़र आ रही है अब तक।
0: जी हाँ, और ये तो फुटबॉल का साल है, अब सारी नज़रें एक महीने में अमेरिका की तरफ होंगी जब वर्ल्ड कप, विश्व कप फुटबॉल होगा। और ये आपने बात कही, आईपीएल है या आईसीएल, आईएसएल है, ये सब टूर्नामेंट्स, ये लीग बहुत बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको एक बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को एक अच्छा पूल प्रदान करने में काफ़ी सहायक साबित होती हैं। चलते चलते एक बार स्कोर बोर्ड पर वापस नज़र घुमा लेते हैं, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, मुंबई इंडियंस ने इस समय 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं और तिलक वर्मा 33 गेंदों में 43 रन बना करके अभी भी डटे हुए हैं, तो टीम के लिए एक छोर से छोर भी संभाले हुए हैं और रन की गति को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी

जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन

0: पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल

0: सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना

0: विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision,

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आरटी परमन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है सनी।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लेकिन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के

0: अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए डिस्को डांसर फिल्म का गीत बप्पी लहरी की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है बप्पी लहरी ने।

सत्यमेव जयते। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत बप्पी लहरी की आवाज़ में। गीतकार हैं फारुख कैसर और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में माशूक फिल्म का ये गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है श्याम सुरिंदर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री
0: कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन की क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: Vidwan D. Srinivas, a trailblazing Carnatic musician from Telangana, was born into a musical lineage. He began the art of Veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas ne apne Veena Vadan ki shuruaat Raag Gola mein Mysur Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain, jo Adi Taal mein nibadh hai.
1: Vidwan D. Srinivas begins his Veena recital with a composition of Mysur Vasudevachar in the Raag Gola set to Adi Taal.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was Taniyavartanam played on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant.
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11

0: बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: वैष्णवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: year. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं।